FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की पंचमी तिथि, तदनुसार 26 जुलाई 2026। इस समय पूर्वाह्न के 8:55 होने को हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आज सुबह 9:10 पर आप सुन सकेंगे दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान और 9:20 से कार्यक्रम वंदना।

9:45 से आप सुन सकेंगे कस्टमाइज्ड स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस।

ठीक 10 बजे से हम आपको सुनवाएंगे गाने पुराने ज़माने के, और 10:30 से गाने नए तराने नए।

शाम के 7:30 बजे आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत और रात्रि 8 बजे से हम आपको सुनवाएंगे लोक गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबंद।

FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कारगिल विजय दिवस पर आज देश शहीदों को नमन कर रहा है। प्रदेश में हो रहे हैं कई कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। राज्य में सहकार वन परियोजना की शुरुआत। जयपुर के जामडोली में 64 एकड़ भूमि पर होगा सहकार वन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। कारगिल विजय दिवस पर आज देश शहीदों को नमन कर रहा है। इस अवसर पर 1999 के कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 1999 में कारगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। इधर प्रदेश में भी कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर कई संगठनों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित शौर्य संध्या में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि हमारे वीरों ने यह सिद्ध किया कि जिस देश की सेना का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा हो, उस देश को कोई झुका नहीं सकता। ऑपरेशन विजय केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, वो सभी भारतीयों के स्वाभिमान की विजय थी। एक रिपोर्ट।
1: ने दुर्गम हिमालयी चोटियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को

0: खदेड़कर देश की अखंडता की रक्षा की थी। इस अभियान में 527 वीर सैनिक शहीद हुए और 1300 से अधिक जवान घायल हुए। इनमें राजस्थान के स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, कैप्टन अमित भारद्वाज सहित प्रदेश के कुल 58 वीर सपूतों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। इस मौके पर आज प्रदेश के सभी जिलों में श्रद्धांजलि सभाएं, तिरंगा यात्राएं, रक्तदान शिविर, वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पहले कल राजधानी जयपुर में शौर्य संध्या और 78वीं सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया। सप्तशक्ति कमान की ओर से करगिल के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 15 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 85 दिनों तक लड़ी गई यह लड़ाई भारतीयों के स्वाभिमान की विजय थी। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि यह विजय केवल सैन्य सफलता नहीं है, बल्कि राष्ट्र के साहस, एकता और आत्मविश्वास की विजय का प्रतीक है। इधर लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया गया। समाचार कक्ष से मैं डॉक्टर ज्योति पारीक।
1: केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामलात, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वे नई जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
2: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
1: गौरतलब है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे युवा प्रदर्शनकारियों के आंदोलन के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे 400 से अधिक युवा प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। केंद्र सरकार लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। यह विधेयक कल के लिए लोकसभा कार्यसूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। गौरतलब है कि 24 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामले में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य में सहकारिता के माध्यम से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए सहकार वन परियोजना की शुरुआत हुई। जयपुर के जामडोली में क्षेत्र में 64 एकड़ भूमि पर सहकार वन विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने कल अरावली की तलहटी में स्थित सुमेल गाँव में पौधारोपण कर इस परियोजना की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री मोहोल ने बताया कि सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन के लिए सहकार वन विकसित किए जा रहे हैं। इसे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए देशी वनस्पतियों की प्रजातियों के पौधों को लगाया जा रहा है, ताकि न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता हो। यह पार्क बायोडायवर्सिटी और पारिवारिक मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि जगतपुरा स्थित शूटिंग रेंज में शूटिंग एकेडमी शुरू करने की संभावनाओं की तलाश की जा रही है। श्री राठौड़ कल जगतपुरा स्थित शूटिंग रेंज में नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में बोल रहे थे। उन्होंने इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए शूटिंग रेंज की सराहना की है।
3: आमतौर पर साधारण भाषा में बोलते थे जिसका दिन है वो जीतेगा, लेकिन अगर चैंपियन की भाषा में बोले तो जिस दिन रिजल्ट प्रोड्यूस करना है उस दिन अपना परफॉर्मेंस हाई करना वो चैंपियन कहलाता है। देश की सबसे शानदार आर्चरी रेंज जगतपुरा की शूटिंग, राजस्थान सरकार आर्चरी फेडरेशन को पूरा मदद करने को तैयार है। ये आर्चरी की शूटिंग एकेडमी आर्चरी फेडरेशन और राजस्थान सरकार में एक एमओयू करिए और 75% खर्चा राजस्थान सरकार करेगी, आप 25% करिए ताकि आपका उसमें अधिकार रहे और आप एक शानदार शूटिंग एकेडमी यहाँ पर चलवाइए और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करें।
1: श्री राठौड़ ने कल प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में विजयी रहे निशानेबाजों को पदक प्रदान किए। 29 जुलाई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश भर से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राजधानी जयपुर में शहर के तीन प्रमुख मार्गों पर जेडीए वेस्ट टू आर्ट थीम पर आधारित स्वागत द्वार विकसित करेगा। लगभग 5,36,00,000 रुपए की लागत वाली इस परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इन स्वागत द्वारों के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं और अतिथि सत्कार की भावना को कलात्मक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। परियोजना के तहत पहला स्वागत द्वार दिल्ली कुंडा मोड़ से आमेर जाने वाले मार्ग पर बनाया जाएगा, जिसकी थीम खम्मा घणी होगी। यह द्वार राजस्थान की आत्मीयता और अतिथि सत्कार की परंपरा का प्रतीक बनेगा। दूसरा स्वागत द्वार घाट की घुणी टोल प्लाजा पर तैयार होगा, जिसे पारंपरिक लहरिया डिजाइन की थीम पर विकसित किया जाएगा। और तीसरा स्वागत द्वार गंगा मार्ग पर प्रस्तावित न्यू जयपुर के सामने बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे आज आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कारगिल विजय दिवस पर आज देश शहीदों को नमन कर रहा है। प्रदेश में हो रहे हैं कई कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। राज्य में सहकार वन परियोजना की शुरुआत। जयपुर के जामडोली में 64 एकड़ भूमि पर विकसित होगा सहकार वन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

निषाद राज को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री राम ने उन्हें अपने घर लौट जाने को सहमत किया और आप लक्ष्मण तथा सीता समेत गहन वन की ओर चले। राह में उन्हें अनेक वनवासी मिलते हैं, जिन्हें दोनों भाइयों के रूप स्वरूप में राज चिन्ह देखकर बड़ा सोच होता है। ऐसे राजसी लक्षणों वाले कुमार तापस वेश में वन में पैदल चले जा रहे हैं, ये देख वनवासियों को ज्योतिष शास्त्र भी असत्य प्रतीत होता है। वनवासी उन्हें रास्ता दिखाने बताने को अनायास ही प्रेरित हो जाते हैं। आज्ञा चाहते हैं कि जहां तक उन्हें जाना है वहां तक पहुंचाकर उन्हें प्रणाम

कर भी वापस लौट आएंगी। श्री राम, लक्ष्मण और सीता की आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं। कृपा सिंधु उनसे विनय भरे वचन बोलकर उन्हें लौटा देते हैं, किंतु वन में यहां वहां बसे गांव और पूर्वों के बालक, वृद्ध, नर नारी, किशोर किशोरियां बार बार उनके दर्शनों को दौड़ते आते हैं और नाना प्रकार से उनकी सहायता कर अपना प्रेम दर्शाते थकते नहीं।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस कान FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदना।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: अभी आप सुन रहे थे वंदना FM बैंड 103.7 MHz पर। श्रोताओं लीजिए सुनिए कस्टमाइज्ड स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस।
1: Talk on environmental justice, public participation and legal remedies by Shubhrajit Goswami, Program Officer, Center for Science and Environment, and Smita Harshal Salve, Senior Legal Consultant, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: Community, jab koi problem se joojhte hain, ye ho sake ki ek kharab air quality ho, या तो उनका पानी का समस्या हो, वो पहले ही तो कोर्ट नहीं जा पाता है। कोर्ट फाइनल स्टेज पे आता है एंड कोर्ट इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि कोर्ट पे एक चीज़ मिलता है जो बहुत बड़े शब्द है हमारा देश में, दैट इज़ जस्टिस। अब इन्वायरमेंट दिन पे दिन जिस तरीके से हमें अदर जस्टिस के साथ साथ कोई क्रिमिनल जस्टिस हो गया, कोई दूसरा जस्टिस भी हो गया, दिन पे दिन हमारा पर्यावरण पे जो प्रेशर है, हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा हो गया, क्लाइमेट चेंज के द्वारा हो गया, जो पर्यावरण पर प्रेशर आते जा रहे हैं, उस पर जो कम्युनिटी पर्यावरण के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड होते हैं। अब एक कोई गांव के एक कम्युनिटी, उसका पानी का तालाब पे जितना डिपेंडेंस है, एक शहर का आदमी का उतना डिपेंडेंस है नहीं। एक जंगल पे एक आदिवासी कम्युनिटी का कोई इंसान पे, इसका फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे जितना डिपेंडेंस है हमारा उतना नहीं है, वी गेट इट इन सुपर मार्केट। तो ये जो ग्रास रूट कम्युनिटी है, लीगल रेमिडीज की जरूरत उनसे सबसे ज़्यादा है। हमारा बात करने के लिए शहर पे सारे इश्यूज के लिए जर्नलिस्ट है, मीडिया है, इस पर बात उठाते हैं, उनका बात पहुंचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना सारे नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हमारे देश पे है, वेटलैंड से लेके जंगल से लेके कोस्टल एरिया से लेके सारे कुछ चीज़ों पर एक रेमिडीज मिलने का ऑप्शन, एक एवेन्यू हमारे देश पे लीगल पॉलिसी के द्वारा खुला गया है। पर जो सबसे इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है वो लीगल पॉलिसीज को कैसे कम्युनिटी एक क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सके। हर प्रॉब्लम के लिए उनके उनको उनका ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कोर्ट पे जा पाए, वह उनका ये आधार ना हो, पर जिन जिन के लिए किस किस इशूज पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके चलते मैं तीन चीज़ों का बात करूँगा। एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिस।

0: नोटिफिकेशन, उसके साथ हम एक सीआरजेड नोटिफिकेशन का भी एक बात करेंगे ईस्टर्न इंडिया पे, बंगाल के सुंदरबन के एरिया पे सीआरजेड एक केस कैसे एनजीटी का कोई जजमेंट कुछ बढ़िया परिवर्तन ग्राउंड पे ला सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड तीसरा हम ये भी बात करेंगे कि ये कम्युनिटी कैसे ये एयर क्वालिटी जैसे बड़े इश्यूज पे पार्टिसिपेट कर सकता है विद द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉ वी है। तो पहले हम शुरू करते हैं ईआई नोटिफिकेशन के बारे में। ईआई नोटिफिकेशन पे जो है इट्स बेस्ड ऑन अ इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल एंड एज वेल एज इज वाइडली डिस्कस्ड इन आवर कोर्ट, जो हमारा कोर्ट पे भी डिस्कस किया गया है, दैट इज अ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। सो वी देयर इज अ प्रोवर्ब कॉल्ड प्रिकॉशन इज लाइक यू नो इट्स बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो दैट्स द आइडिया दैट वी शुड टेक सम प्रिकॉशन बिफोर वी आर कमिंग अप विद सम एक्टिविटी विच इज इम्पैक्टिंग द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कमिंग अप विद अ इंडस्ट्री which is taking such and such ground water, such and such cutting such that amount of forest, what will be the impact of that project on the local people, local environment, that need to be assessed before the project is constructed. This is the provision which is this precautionary principle is the provision which creates our law, that is the environmental impact notification. It's a notification under Environmental Protection Act. So in that there is a provision of public consultation.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: है तो टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है.
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: Now, as a group of organized, a community, how they can participate in that area? So there are multiple instances in different countries, in our countries, in different states. For different projects, there are public consultation held with the help of State Pollution Control Board and the local official DM. And there is in the our law gives that and gives the provision that this consultation when this is happening, it should be widely circulated. ये हमारा जो local news media हो उससे ज़्यादा जो हमारा अलग जो national media हो सारे उसका जो local language है उस पर वो project के बारे में बात करके ये एक announcement होना है. एंड उसके बेसिस पे एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा ग्रास रूट का जो कम्युनिटी जो इम्पेक्टेड कम्युनिटी है प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली है उनका प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा एक अच्छे से डिस्कशन के तौर पे हमारे एक सॉल्यूशन या कोई एग्जिस्टिंग मिटिगेशन मेजर्स एक्स्ट्रा जो लेना चाहिए उनका बातें एक डॉक्यूमेंट करके लीगल तरीका से एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए और इसका क्लियरेंस तभी मिले जब ये सब चीज़ लीगली किया गया. उसके बाद ये चीज़ जो ये जो प्रोविजन है ये हमें बहुत एक कम्युनिटी कोई भी एरिया पे बहुत एम्पावर करते हैं उनके उनका प्रोजेक्ट का उस पर इम्पैक्ट जो है उस पर बात करने के लिए उनका जो इश्यूज है उन पर बात करने के लिए उनका जॉब के रिक्वायरमेंट के से लेके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तक का बात करने के लिए सबसे ज़्यादा एक स्कोप हमें देता है. एक केस एक दिन हमारा उधर आए हैं जिसपे एक जो फिशर कम्युनिटी सुंदरबन पे है वो लोग आके बोले कि उनका मैंग्रोव एक जंगल का मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे कोई एक कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े एक होटल बन गए तो उनको बाकी जगह पे उनने गया है उनको उतना रेमेडीज नहीं मिले तो उनको कोर्ट के पास जाना है. तो हम लोग उनको मैं एज अ डॉक्यूमेंट के तौर के उस वहाँ पे जाके देखा कि एक बहुत कंस्ट्रक्शन 23 एकड़ सब एरिया पे बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है वहाँ पे मैंग्रोव काटा जा रहा है एंड वहाँ पे जो स्कोप है उस पर वहाँ पे एक बड़ा होटल बन रहा है. तो हम लोग उसका लोकेशन लिए हैं उसको एक जो टूल है GIS बोल के एक टूल होता है उससे हम लोग देखे कि उसका क्या परिवर्तन पहले क्या वहाँ पे मैंग्रोव हुआ करता था. उसके बाद ये CRZ नोटिफिकेशन के तहत एक CZMP मैप बोल के एक मैप बनता है जो मैप को हमने वो लोकेशन पे सुपर इम्पोज करके देखा कि वो मैप पे वो एरिया मैंग्रोव एरिया बोल के डिमार्केटेड है.

0: नहीं बनाया जा सकता है, इसका एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। ये जस्टिस हमें कोर्ट से मिलता है जिसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है एंड इनका इम्पैक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है। एनवायरमेंटल इज वी रेड इन क्लास 8 बुक दैट एनवायरमेंटल इज एवरीथिंग अराउंड अस, इट इम्पैक्ट्स मोस्ट द पब्लिक एवरी वन एंड व्हाट इज नीडेड इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल जस्टिस वी शुड टॉक अबाउट स्ट्रेंथनिंग the ground where the public is actually staying. Certainly rules and regulations are made in the top tier, but the implementation and the capacity to implement these environmental regulations is extremely crucial, so that the every regional pollution control board officials are capable enough to implement the law which is made in the high house in Delhi. So that's how we can achieve truth, environmental justice when it's top down rather than it's a bottoms up approach. It should be there.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: So, initiatives government ne kya liye? 2018 mein Parivesh Portal, the Ministry of Environment ne introduce kiya hai, NIC ke saath, jisme ek comprehensive legal window, single window diya gaya hai for addressing the applications. कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग जो कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी मॉनिटर होता है, इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस, सारे कुछ इसी पे मॉनिटर होते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन इंट्रोड्यूस किया गया 2006 की EIA नोटिफिकेशन में। कोई भी इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करनी है तो वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है वो कहीं पर कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या, वो चेक करने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है। पब्लिक हियरिंग पहले हुआ करता था, 1997 में अमेंडमेंट आया था जो कि रिटेन किया गया, लेकिन पब्लिक हियरिंग की जगह पे पब्लिक कंसल्टेशन 2006 नोटिफिकेशन में आया। नेशनल एनकैप जो एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है, जहाँ पे पोल्यूशन का इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी सिटीज़ के लिए एनकैप का प्रोविजन बनाया गया है। एंड फिर मिशन लाइफ है जो कि आप सारे ही जानते हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मूवमेंट है। एंड कैंपा कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है जो कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं उनसे जो ट्रीज कटिंग के लिए बाद में जो फंड्स में रेज होते हैं वो मैनेज करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना इस अथॉरिटी का काम है। अब एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनका काम सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है कि उन्होंने पॉलिसीज़ बना दी और क्लियरेंसेस दे दी, उसके बाद मेन काम उनका होता है कि एनवायरमेंट वो प्रॉपरली जो कंडीशंस इम्पोज की थी उसका कंप्लायंस ठीक से हो रहा है या नहीं है इसका मॉनिटरिंग करना। उसके लिए रीजनल ऑफिसेस होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के, वो उनका इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो ग्रांट के बाद जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होते हैं एवरी सिक्स मंथ्स उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, कंप्लायंस रिपोर्ट। उस कंप्लायंस रिपोर्ट का इंस्पेक्शन रीजनल ऑफिसर्स के हमारे ऑफिसर्स करते हैं, स्टेट लेवल पे सीआ करती है एंड सीपीसीबी भी, एसपीसीबी भी करते हैं। अगर उसका मॉनिटरिंग होने के बाद कुछ वॉयलेशन पाया जाता है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शो कॉज, गिविंग शो कॉज नोटिस, फिर उनका क्लोजर करना या फिर कॉम्पनसेशन लगाना या फिर रेस्टोरेशन के ऑर्डर्स देना। एंड इसके बाद अगर ये सारा होने के बाद ये प्रॉपरली सेटल नहीं हुआ तो फिर मामला एनजीटी में जा सकता है। अगर कोई एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्टली एनजीटी में अप्रोच कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर किया है, एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे नाम का एक केस हुआ था जिसके तहत सुमोटो कॉग्निजेंस लेने का, मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल

आपसे किसी न्यूज़पेपर पे पढ़ा हुआ आर्टिकल वगैरह पे खुद केस इनिशिएट करते हैं। इसके अलावा जो कोई प्रोजेक्ट प्रपोनेंट जिनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिजेक्ट हुआ है या फिर रिवोक हुआ है किसी कारणों की वजह से, कंप्लायंस ठीक से नहीं हुआ, वो लोग भी अपील फाइल कर सकते हैं एनजीटी में अंडर सेक्शन 60। सिटीजन्स जिनको डायरेक्ट एनजीटी में एक्सेस नहीं है, वो नहीं जा पाए, तो वो डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी पहले लिख सकते हैं, जैसे कि सीपीसी भी है, एसपीसी भी है, सीआर को या फिर डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को भी लिख सकते हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: You had been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies by Shubhrajit Goswami, Program Officer, Center for Science and Environment, and Smita Harshal Salve, Senior Legal Consultant, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: अभी आप सुन रहे थे कस्टमाइज्ड स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए गाने पुराने जमाने के।

0: हीरो फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मनहर की, गाने पुराने ज़माने के। जारी है इस अंतराल के बाद।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले
3: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

मोहम्मद अज़ीज़ और अलका याग्निक की आवाज़ों में अजूबा फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

किशोर कुमार की आवाज़ में सौतन फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा सावन कुमार ने। अगला गीत सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, अवतार फिल्म से, आनंद बख्शी के लिखे गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अवतार फिल्म का यह गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए बड़े दिलवाला फिल्म से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने ज़माने के, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे गाने नए, तराने नए।

सरवर खान और सरताज खान की आवाज़ों में दंगल फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए ऐश किंग और सचिन जिगर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है स्त्री।

सचिन जिगर और ऐश किंग की आवाज़ों में स्त्री फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। प्रस्तुत है अगला गीत अरिजीत सिंह और शाशा तिरुपति की आवाज़ों में हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म से।

अरिजीत सिंह और शाशा तिरुपति की आवाज़ों में हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए केके की आवाज़ में, फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान।

केके की आवाज़ में बजरंगी भाईजान फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। शान की आवाज़ में अगला गीत सुनिए, प्रेम रतन धन पायो फिल्म से।

प्रेम रतन धन पायो फिल्म के इस गीत के साथ गाने नए ज़माने के का सफ़र अभी ही समाप्त होता है। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र की जनता से संवाद, पहले हिंदी में तत्पश्चात संस्कृत अनुवाद। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है लाइव रेडियो लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस न्यूज पॉडकास्ट्स साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।

0: चलो।
1: कहाँ?
0: एडमिशन कराने। आता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है, वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के

रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से घाट निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को
अपनी प्रतिभा दिखा

जाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छंटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी
तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें। एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है। इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास
हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है,
तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: This is Akashvani, the news read by
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र की जनता से संवाद FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं क्रांति फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। संतोष आनंद की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए
4: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

हकीकत फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। ये उपकार फिल्म का गाना है, मुकेश की आवाज। कमर जलालाबादी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। वर्मा मलिक के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई बाहों में खिली कलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो।
1: हाँ।
0: सावधान रहना।
1: क्यों, क्या हुआ, कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
0: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा।
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है
1: तो?
0: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
2: सखी सहेली।

0: अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: दिन का एक बजने वाला है। अब आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है और हर भारतीय को गर्व से भर देता है। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देशवासियों से अपील की कि वे एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लें।
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
1: श्री मोदी ने वन साइड वन नेशन वन सैल्यूट के संदेश के साथ इस वर्ष हुए शौर्य विजय यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि देश के लिए किए गए बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। उन्होंने हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल स्वदेशी युद्धपोत महेंद्र गिरी की चर्चा की। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक बताया। श्री मोदी ने लंबी दूरी के पिनाका रॉकेट और कुश मिसाइल के सफल परीक्षण पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही पिछले रविवार को विक्रम वन के सफल प्रक्षेपण को सभी देशवासियों के लिए एक गौरवशाली पल बताया। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान से वर्षा जल संचयन, भू जल पुनर्भरण और जलाशयों तथा बागानों के जीर्णोद्धार को नई गति मिल रही है। श्री मोदी ने देशवासियों से आसपास की तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लेने की अपील की ताकि एक एक बूंद जल को बचाया जा सके।
2: 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन

0: और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से घाट निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं।
1: मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से पीओपी से बनी मूर्तियों के बजाय मिट्टी से बनी भगवान गणेश की मूर्तियों की पूजा करने की भी अपील की। साथ ही 7 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक बताते हुए लोगों से हथकरघा शिल्प को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने खेल और खिलाड़ियों की चर्चा करते हुए कहा कि हाल के समय में भारत के युवाओं ने खेलों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में शिक्षक की भूमिका उनके दिल के सबसे करीब थी। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। यह दिन सभी मार्गदर्शकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। अपने संबोधन के समापन में श्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर वीर सैनिकों और शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाने की अपील की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के सांगानेर में आदिवासी महिलाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 136वें एपिसोड को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आमजन की प्रेरक कहानियों के माध्यम से समाज को सकारात्मक दिशा देने और जनभागीदारी की भावना को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

साथ साथ फिल्म की ये गजल थी, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें थी, जावेद अख्तर के बोल थे, और हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, दीप्ति नवल, फारूक शेख। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया, सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपकी इबारत की पहली पंक्ति में बिल्कुल सही वर्णन, प्यार में धूप छांव होती है, परंतु प्यार करने वालों को भी तो वृक्ष की तरह खुद धूप सहते हुए अपने साथी को छांव देना चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है, भाई एक नहीं अनेक श्रोताओं ने लिखा है, जो राह चुनी तूने और मेले से जुड़े हुए बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिखा है, और दुनिया का मेला, मेले में लड़की, और दुनिया ये मेला है, और मेले पर तो बहुत सारे गाने भेजे हमारे श्रोताओं ने, जो फिल्म गुप्त का है उदित नारायण की आवाज़ में, दुनिया हसीनों का मेला। एक श्रोता ने लिखा है कि तुमको देखा तो ख्याला सिर्फ एक प्रेम गीत नहीं है, बल्कि ये जिंदगी के यथार्थ और मोहब्बत के सुकून का अनूठा संगम है। ये गाना सिखाता है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि जीवन में सच्चा हम सफर हो तो जिंदगी की धूप भी घने साय में बदला जा सकता है। जरा बताइए कि अब कौन सा वाला गाना हो सकता है, क्योंकि जो हाय रे वो दिन क्यों ना आए, कि गाना आया आपके जहन में क्या? अगर इसके अलावा कोई गाना आया हो तो बताइए। हम फिलहाल यही गाना सुनवाते हैं, फिल्म अनुराधा। आपको बूझना है कौन हीरोइन कौन हीरो, और साथ में गीतकार संगीतकार का नाम अगर पता है तो वो भी बताइए। फिल्म अनुराधा। और मेले से जुड़ी हुई याद भी साझा कीजिए।

ये जो गाना था इसका शब्द बाकायदा जो इबारत है इबारत की शुरुआत में ही आ जाता है, लेकिन इस गाने का जिक्र बहुत कम मिला। हालांकि बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं और अनगिनत गाने लिख रहे हैं, कहीं धूप तो कहीं छाँव, सुख दुख दोनों रहते जिसके जीवन है वो नाम, कहीं धूप तो कहीं छाँव, कवि प्रदीप की रचना है। और ये बहुत सारे श्रोताओं ने गाने के बोल लिखे हैं, जिंदगी के मेले कभी कम ना होंगे, फिल्म मेला। और एक श्रोता ने लिखा है कि तुमको देखा तो ख्याल आया, फिल्म साथ साथ का एकालजयी गीत सुनाया आपने, और अनगिनत श्रोताओं की अनगिनत टिप्पणियां आई हैं और हम आपको बारी बारी से सुनवाते चलेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन के वो दिन भी क्या दिन थे, भाई बहनों के साथ खंडवा के बीच लगने वाले नाम सप्ताह के मेले में जाना, झूले झूलना, वो चहल पहल और फिर वही परंपरा अपने बच्चों के साथ दोहराना, ये अनुभव दिल के बहुत करीब होता है। वक्त कितनी तेजी से बदल जाता है, लेकिन शहर और वहां के मेले से जुड़ा लगाव कभी कम नहीं होता। एक श्रोता ने और लिखा है कि मेले का जिक्र हुआ तो अभी हमारे शहर में मेला लगा हुआ है और ये गाना, ये बात सुनकर हमें याद आ गया। तो जरा बताइए कि मेले वाली कौन सी याद इस वक्त आपके जहन में आई है, मेले में कौन सी चीज आप जाकर खरीदा करते थे, क्या वो मेले में जाकर वो जो बुढ़िया के बाल है वो याद आया कि वो खरीदते थे, और खिलौने मिट्टी के लकड़ी के बहुत सारे खिलौने खरीद कर ले आते थे वो याद आया, और फिर जो सस्ते दामों पर किताबें मिलती थी क्या वो भी याद आया, और वो भी याद आया कि कभी अपने पिता की उंगली थामकर, माँ की उंगली थामकर मेले में आप घुमा करते थे, और कभी उंगली छूट गई तो कितनी घबराहट होती थी, ऐसे लगता था अब क्या होगा, अरे कहाँ गए, बस रोना आता था, कभी ऐसा भी हुआ। मेले में जाने के बाद तो अनगिनत अनुभव हैं, तो उनमें से कुछ अनुभव आप साझा कीजिए। फिलहाल चलिए मेले का ही गाना सुनवा देते हैं, ये रहा ये गाना। अगर हाँ आपके जहन में और कोई गाना आ रहा है तो जरूर बताइएगा, अगर आपने टिप्पणियां भेजी तो एक गाना मेले का और सुनवाएंगे।

मेला फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज थी, शकील बदायूनी के बोल थे। और इससे पहले हमने अनुराधा फिल्म का गाना सुनवाया था, लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना, रविशंकर का संगीत था। और कलाकारों के नाम भी हमने पूछे थे, लीला नायडू और बलराज साहनी। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल पूरी और सही जानकारी लिख भेजी है। और ये जो मेले वाला गाना था, इससे जुड़ी हुई भी बातें बहुत सारे श्रोता हमें लिख भेजे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में दशहरे का मेला जाते थे और वो मजा आज के बच्चे नहीं जान सकते हैं, और मेले से खिलौने खरीदा करते थे, एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनुराधा फिल्म का कालजयी गाना और सुनहरे पलों की याद और वर्तमान के अकेलेपन की एक बेहद खूबसूरत और दर्द भरी अभिव्यक्ति है। दरअसल जब बात मेले की चली है तो हम भीड़ भरे मेले में होते हैं कई बार, तब भी अकेलेपन का एहसास होता है, उस एहसास को भी आप साझा कर सकते हैं। एक आज के जमाने में खास तौर से यह एहसास हर किसी के दिल में होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि लता जी की आवाज जो हाय रे वो दिन क्यों ना आए, दिल की अतल गहराइयों में उतर जाती है। और बहुत सारे श्रोताओं ने जो हमने सवाल पूछा था उसका जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1968 में उज्जैन कुंभ मेला संतों की भीड़ भरी रैली में माता जी का हाथ छूट गया, शाम को जाकर पुनः उसी जगह माता जी और अन्य सदस्यों से मुलाकात हुई, राहत की सांस ली। एक श्रोता ने लिखा है कि बालपन में तो मेला देखने बहुत जाते थे, कुल्फी चाट पानी के बताशे खूब खाते थे और खिलौने खरीदने के लिए पैसे पहले से बचाने लगते थे। विजयदशमी पर तो मेला लगता ही था, उसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती। क्या बात है भाई, पानी वाले जो बताशे जिसे पानी पूरी भी कहा जाता है, और मेले में झूले झूलने का मजा भी होता था, एक श्रोता ने लिखा है। और मेले में जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता था जो अनुभव, वो था जो हिंडोला, जो बड़ा वाला हिंडोला गोल गोल चलता है, तो जब ऊपर की ओर जाता था हिंडोला तब तो ठीक, जब नीचे की ओर आता था तब कैसा एहसास होता था, ऐसा लगता था कि दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं और बिल्कुल दिल मुंह में चला आया है ऐसे। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी चलने का नाम है, कभी सुख है कभी दुख है, राह में कांटे भी मिलेंगे फूल भी मिलेंगे, प्यार बेवफाई सपने को सच भी करना है, ख्वाब देखना उसे पूरा करने की चाह, तभी पूरा होगा जब हौसला हो। अब ये महल फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है गीतकार और संगीतकार का नाम। हमने जो इबारत लिखी थी उस इबारत में कौन सा ये शब्द आ रहा है, जरा बताइए गाने में कौन कौन से शब्द हैं। गीतकार संगीतकार का नाम पूछिए।

महल फिल्म का गाना किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने संगीतकार का नाम गलत लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेले में बंदूक से निशाना लगाना अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गंगा दशहरे के मेले में मिट्टी के बर्तन लाते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में नवरात्रि के मेले में जाता था तो मुझे किसी भी रखी वस्तु पर लकड़ी की रिंग डालना अच्छा लगता। उसमें जिस वस्तु पर रिंग गिरेगी वो वस्तु अपनी हो जाती थी, लेकिन मुझे कभी कोई वस्तु मिली नहीं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में जाकर दादाजी के साथ चुटहिया जलेबी खाना याद आ गया। क्या बात है भाई, वो जलेबी कहीं कहीं कभी कभी मिलती है, हर जगह नहीं मिलती। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल्ली के लाल किले के मैदान में मेला लगता रहता है और विभिन्न प्रकार के झूले लगते हैं। मैं जब भी मेला जाता हूँ सबसे पहले ऊंचाई वाला झूला जरूर झूलता हूँ, जिसे जॉइंट हील कहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेले में मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने वाले बर्तन जरूर मैं खरीदती थी और वो कपड़ों वाली गुड़िया भी। फिर हम अपने छोटे से घरौंदे में गुड़ियों के साथ खाना पकाते, शादी ब्याह करते। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेले में एक छोटा सा प्लास्टिक का गिलास, कीमत हर माल 6 आना का खरीदा। उसमें पानी भरने पर अंदर फिल्मी हीरो हीरोइन की फोटो दिखाई देते थे, उसे स्कूल के साथियों को दिखाते थे। क्या बात है भाई, गजब के अनुभव हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में लगने वाले ऊंचे झूले पर आज तक हम नहीं बैठ पाए। और गानों के बोल बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बलिया में ददरी मेला लगता है, हर साल कार्तिक पूर्णिमा से वो मेला शुरू हो जाता है और 1 महीना चलता है। उस मेले में गुड़ की जलेबी और गांव की महीन कारीगरी डलिया सूप और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। शादी के बाद मेरठ में नौचंदी मेला लगता है जो रात के टाइम लगता है और पूरी रात चलता है। इस मेले में नौटंकी भी आप देख सकते हैं और संगीत भी सुन सकते हैं। सचमुच एक जमाना था जब मेले में नौटंकी भी खेली जाती थी, तो नौटंकी देखने के लिए अलग से घर वालों से परमिशन लेना पड़ता था। आपके साथ भी ऐसा हुआ? एक श्रोता ने लिखा है कि 90 के दशक में हमारे इंदौर शहर के गांधी हॉल में सावन का मेला लगता था और उस मेले में हर सोमवार को बहुत भीड़ होती थी। इस मेले की सबसे बड़ी खासियत पीपल के पेड़ पर रस्सी पर बंधा हुआ पटिया लगा हुआ झूला हुआ करता था। अब बहुत सारे श्रोताओं ने शब्द लिखे हैं, सपने, वादा, वफा, कांटे, दुनिया, दिन वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है, प्रेम की भावना को इस सतर्क दृष्टि से जीना कि वो अंततः सुखद होगी या दुखद। प्रेम है, प्रेम है ही नहीं, क्योंकि प्रेम सिर्फ प्रेम होता है। टूटने बिखरने की पीड़ा, धोखे का दर्द और प्रेम की राह पर आने वाले धूप छांव, इन सब से इतर वो जब होता है तो बस होता है। आप चाहें न चाहें वो आपके साथ हो लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें जीवन की सच्चाई समझ आने लगती है। शांत स्वभाव यूं ही नहीं हो जाता, परिस्थिति और जीवन की समझ आपको राख में परिवर्तित करके आपके मन को ठंडा रखती है। प्रेम और जीवन का कोई बदलाव फिर आप पर असर नहीं करता, आप हर समय चुपचाप चलना सीख जाते हैं। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, बूझिए कौन है हीरो और बूझिए गीतकार का नाम। हीरो का नाम फटाफट बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। फिल्म है दिल ने पुकारा।

दिल ने पुकारा। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। रचना थी इंदिवर की, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इसका जवाब हमारे श्रोताओं ने सही दिया और कलाकार का नाम भी बिल्कुल सही लिखा है, शशि कपूर। हालांकि इस गाने में वफा शब्द आता है जो हमारी इबारत में है, लेकिन असल में तो है बेवफाई का गाना। तो आपको अभी कौन सा गाना सुनना है? इस समय आपके जहन में कौन सा शब्द और कौन सा गाना गूंज रहा है? हम जो सुनवाने जा रहे हैं यही या कोई और, जरा ये बताइएगा। और जो अभी गाना सुनवाएंगे उससे जुड़े हुए कौन से गाने आपके जहन में कौन थे ये भी बताइएगा। फिलहाल आपने क्या लिखा है जरा हम बता दें। जिंदगी किसी किताब की तरह नहीं, एक हम सफर की तरह होती है। हर दिन एक नया पन्ना नहीं, एक नया एहसास देती है। जो उसकी हर बात को दिल से सुन ले, उसके सफर में शिकायतें कम और मुस्कानें ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन अगर बात बेवफाई की हो तो फिर शिकायतें ही शिकायतें। जरा सुनिए ये गाना और बताइए इस समय आपके जहन में कौन से गाने आ रहे हैं जिसमें वफा शब्द हो और बेवफाई भी हो। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, हीरो हीरोइन का नाम बूझना है और गीतकार का नाम।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गुलजार के बोल थे, खयाम का संगीत था। और अब मेले का जिक्र चला तो हमारे बहुत सारे श्रोता, यूं कहें कि सभी श्रोता मेले में चले गए हैं और मेले से निकल नहीं पा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। चलिए हम भी गुम हो जाते हैं उसी मेले में। अब एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेले में जाना, जलेबी खाना, मिट्टी की गोलक, लकड़ी का घोड़ा बचपन में लेना नहीं भूलता था। एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, लिखा है कि हामिद का चिमटा याद आया, दादी की कहानियां याद आई। तो अब हामिद के चिमटे से मुझे प्रेमचंद की कहानी याद आई, तो जरा आप बताइए कि ये जो हामिद का चिमटा, हामिद चिमटा ले जाते हैं अपने दादी के लिए, सारे बच्चे बहुत सारे खिलौने खरीदते हैं मेले में जाकर, और ईद का त्यौहार है और हामिद अपना जो पैसा बचाता है और अंत में दादी के लिए चिमटा खरीदता है और अपने दोस्तों में बहुत पुल बांधता है, डींग हाँकता है, देखो मैं तो कितनी अलग तरह की चीज़ खरीदता हूँ। तो पहले सारे बच्चे उपहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, लेकिन बाद में उस चिमटे के लिए ललक दिखती है बच्चों में। तो बहरहाल अब आप जरा बताइए, थोड़ी सी कहानी भी मैंने बता दी, तो कौन सी कहानी है? अब आपको कहानी का शीर्षक पूछना है। हाँ, हमें आपके जवाब का जल्द इंतजार रहेगा। अगर आपने पढ़ी होगी कहानी तो जरूर बता सकते हैं। और अब एक श्रोता लिख रहे हैं कि बाजार का मेला और जीवन के मेले में बहुत अंतर है। दुख सुख मान अपमान सभी तरह के अनुभव होते हैं, लेकिन ये जीवन है। दरअसल ये दुनिया भी तो एक मेला है। इस मेले में हम सब कहीं कई बार गुम हो जाते हैं, बस उसी मेले से निकल बाहर आते हैं और अपनी राह चुनते हैं। राह चुनने के लिए कई बार अवरोध भी पैदा होता है। तो आप ये भी बताते चलिए हमें कि क्या कभी आपने कोई राह चुनी मंजिल के लिए और किसी अवरोध का, किसी स्पीड ब्रेकर का सामना करना पड़ा? मतलब बहुत सारे टोक टाक घर वालों ने वो मंजिल जाने पर, मंजिल तक पहुंचने पर ब्रेक लगा दिया हो और कहा हो कि नहीं, इस रास्ते से आप नहीं चलेंगे। तो ये बताते चलिए। और मुझे लगता है कि इस बात से जुड़ा हुआ कोई गाना आपके जहन में आ रहा होगा, जो हमारी इबारत में है शब्द, तो वो भी आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गोराई बीच के पास, जहां विविध भारती मुंबई रेडियो स्टेशन है, उसके पास एसएल वर्ल्ड है, कहीं पर बहुत सारे राइड्स हैं, उनमें से रेनबो में बैठे थे। जब ऊपर जाते तब तो ठीक था, लेकिन जब नीचे सीधा उल्टा आता था तो सांस फूल जाती थी। तब 55 राइड थी उसमें और उनमें से 50 राइड्स में हम सब बैठे थे, लेकिन उसके बाद जाने का नाम नहीं लिया। अब तो बहुत सारे राइड्स हैं और ऐसे राइड्स हैं कि जिसमें जो ट्रेन की शक्ल में जो चलती है तो फिर ऐसी चीख सुनाई पड़ती है कि आप एकदम डर से कांप जाएं। बहरहाल अपने अपने अनुभव, लेकिन वो जो असली मेला लगता था, खुले मैदान में बहुत सारी चीजें होती थी, बहुत सारे लोग मिलते थे और एक दूसरे से सुख दुख साझा करते थे, उस मेले की बात ही अलग है। अब कहाँ है वो मेला? एक श्रोता ने लिखा है कि मैं 6 वर्ष का था तो पिताजी की उंगली पकड़कर चला जा रहा था। एक छोटा पड़ा हड्डी का टुकड़ा उठा लिया, भीड़ में पिताजी ने अपने कंधे पर बिठा लिया। उस 5 इंच के टुकड़े से मैं अपने पिता के सिर पर टक टक बजाता जा रहा था। उन्हें बुरा लगा तो उन्होंने नीचे उतार दिया और फिर उन्होंने मुझे नीचे उतार दिया और थोड़ी देर के लिए बहुत नाराज हो गए। ऐसी तमाम बातें श्रोता याद कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अब तो 24 घंटे मेला मोबाइल में लगा रहता है, सभी तरह के तमाशे और सभी तरह की खरीदारी हो सकती है। तो ऐसे में कौन सा वाला मेला आपको अच्छा लगता है, वो वाला मेला, बचपन वाला ये, या फिर मोबाइल वाला मेला? एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में लगने वाले ऊंचे झूले पर आज तक नहीं बैठे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि अभी बिहार में राजगीर में अधिक मास का मेला लगा था जो 1 महीने तक चला। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के मेले, दिवाली के मेले, दशहरे का मेला और भी बहुत सारे मेले देखे बचपन में। गुड्डे गुड़िया, चरखी फिरकी आदि, मिट्टी के, लकड़ी के खिलौने, गुल्लक आदि खरीदते थे, पर अब तो भीड़ भाड़ से भी डर लगता है। अब भीड़ भाड़ का भरोसा भी नहीं रहा कि कब कौन आपके पैर कुचल के आगे बढ़ जाए, क्योंकि अब वो संवेदना कम हो रही है लोगों में। इस संवेदना को बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? बहरहाल बात हमने पूछी थी आपसे कि
जब आप कोई राह चुनते हैं तो उस राह पे चलते हुए क्या कभी कोई अवरोध पैदा किया किसी ने, आपके परिवार ने, समाज ने, ये बताइए। और साथ में ऐसा ही एक गाना और बताइए जो इस गाने से मेल खाता हो। और हाँ, एक सवाल और था, हामिद का चिमटा दादी के लिए प्रेमचंद की लिखी ये कौन सी कहानी है? फिल्म तपस्या है, आपको पूछना है साथ में हीरो हीरोइन का नाम। बहुत सारे सवाल हैं एक साथ, देखते हैं कौन कौन से सवालों के जवाब आप दे पाते हैं।

0: उस राह पे राह ही चलते जाना रे तपस्या फिल्म का गाना था और हमने पूछा था कौन है हीरो हीरोइन। सभी श्रोताओं ने सही और त्वरित जवाब दिया, राखी और परीक्षित साहनी। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए सिटी से बाहर जाना था लेकिन दादा दादी ने रोक लिया, यही पढ़ाई करो, बाहर नहीं जाने मिला। और एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी एक सफर है जिसमें विभिन्न पड़ाव आते हैं, उन पड़ावों से गुजरते हुए कई मुकाम आते हैं, आज के सफर में वही यादों का सफर है। एक श्रोता ने लिखा है कि रिटायर्ड होने के बाद जब गुजरी जिंदगी का हिसाब देखता हूं तो पता चलता है कितनी कठिन थी ये जिंदगी, लेकिन पत्नी का साथ और ईश्वर के आशीर्वाद से आरामदायक रही जिंदगी। और अब जो हमने सवाल पूछा था उसकी बारी है, हामिद का चिमटा दादी के लिए जो लाना होता है वो किस कहानी का शीर्षक है, मतलब कहानी का शीर्षक हमने पूछा था, प्रेमचंद की लिखी कहानी। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ईदगाह। और हमें लगता है बचपन में सभी ने ये कहानी पढ़ी होगी और पढ़ने की शुरुआत ईदगाह से होती है और बहुत सारे पाठ्यक्रम में भी शामिल थी ये तो कहानी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ईदगाह की कहानी हमारे हिंदी की किताब में होती थी। हामिद की माँ हाथ रोटी सेकते हाथ जलता जल जाता था, 3 रुपए का चिमटा खरीद लाए थे। दरअसल हामिद की माँ नहीं, हामिद की दादी थी। हामिद के माता पिता बचपन में ही नहीं रहे और इस वजह से दादी ने पाला था और बहुत गरीबी में पाला था। और दादी का भी उसमें बहुत, दादी की संवेदना है कि वो हामिद को ईद के दिन क्या तोहफा दें, क्या लाएं और हामिद के लिए ईद किस तरह से खुशगवार हो। यहाँ दादी सोच रही होती है और हामिद अपनी दादी के लिए चिंतित होता है कि दादी का हाथ जलता। बहरहाल एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम कोई साधारण भावना नहीं बल्कि आत्म अन्वेषण की एक गंभीर और दीर्घ यात्रा है। प्रेम अपने भीतर अनेक विरोधाभासों को समेटे रहता है जो अपने स्वरूप को प्रकट भी करते हैं। प्रेम अपार आनंद का स्रोत होने के साथ ही विरह और पीड़ा का अनुभव भी कराता है। दरअसल प्रेम में फूल होते हैं तो कांटे भी होते हैं और फूल के साथ कांटों का साथ होना बहुत स्वाभाविक है। और जो सबसे अच्छा सुंदर फूल लगता है उसमें तो कांटे ही रहते हैं, गुलाब का फूल। ऐसे और कौन से फूल हैं जिनमें कांटे होते हैं, बता सकते हैं आप? फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना।
1: फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली।
0: फिल्म का नाम जरा बताइए।

अनोखी रात फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज़, कैफी आजमी के बोल रोशन का संगीत था और सभी श्रोताओं ने बगैर पूछे ही बताया है, परीक्षित साहनी जाहिदा सही बताया है, फिल्म थी अनोखी रात। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ, यहाँ कुंभ मेला लगता है तो बड़ा आनंद आता है। बहुत सारे श्रोताओं ने प्रयागराज कुंभ मेले की बात लिखी है और एक श्रोता ने लिखा है कि सपने ही सपने कब हुए अपने, आँख खुली और टूट गए, नींद के सपने हकीकत में बहुत अंतर होता है, कई बार सपने बुनने में आनंद भी आता है और सपने जब दो लोग मिलकर साथ साथ पूरे करते हैं तो उस सपने की बात ही अलग होती है। जरा बताइए कौन है वो दो लोग जो मिलकर सपने बुन रहे हैं, फिल्म लव स्टोरी, हीरो हीरोइन का नाम आपको बूझना है। लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें, हीरो हीरोइन का नाम बताइए जल्द।

फूलों के शहर में घर अपना, भाई सपने वाला ये गाना था। बहुत सारे सपने अधूरे वाले गाने भी हैं और हमारी भारत में सपना शब्द था। लव स्टोरी फिल्म का गाना लता मंगेशकर, अमित कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल। और पूछा था हमने हीरो हीरोइन का नाम, सभी ने फौरन बताया कुमार गौरव, विजेता पंडित। एक श्रोता ने ये भी लिख डाला है कि प्रमुख कांटे वाले फूलों के नाम भी बता दिए, गुलाब है, बोगनविलिया है और बहुत सारे नाम इन्होंने लिख भेजे हैं। और लाल, गुलाबी, पीले रंग के छोटे आकर्षक फूल खिलते हैं और ऐसे कैक्टस फ्लावर्स, पौधे की पूरी सतह पर कांटे होते हैं। लेकिन अब वक्त नहीं कि हम पूरी टिप्पणी इनकी पढ़ें। हम शुक्रिया अदा करते हैं इस जानकारी के लिए। अब इतना बता दें, आज का सुरीला सफर का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। बस आज का सफर इतना ही।

श्रोताओं नमस्कार। आज है कारगिल विजय दिवस। आप सभी को कारगिल विजय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और आज की त्रिवेणी इसी विषय पर। 26 जुलाई भारत के इतिहास का बहुत बड़ा गौरवशाली दिन है। 1999 में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की और दुनिया के समक्ष अपनी वीरता, साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। इसी ऐतिहासिक जीत की स्मृति में हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। कारगिल युद्ध मई से जुलाई तक चला, सन 1999 में, लगभग 60 दिनों तक। ये 60 दिन हमारी सेना ने पूरी वीरता के साथ, पूरे संघर्ष के साथ युद्ध किया। पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों ने कारगिल, द्रास, बटालिक और टोलोलिंग की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा लिया था। ये कब्जा हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता था, क्योंकि इन क्षेत्रों का सामरिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण था। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर इन क्षेत्रों से निगरानी रखी जा सकती थी और यह सिद्ध हो सकता था घातक भारत की राजधानी के लिए भी।

परेशान है तू। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय और भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के माध्यम से दुर्गम पहाड़ों, शून्य से नीचे तापमान और अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। टाइगर हिल जैसी महत्वपूर्ण चोटियों पर पुनः तिरंगा फहराकर हमारे वीर जवानों ने विजय का इतिहास रचा। इस युद्ध में भारत के 527 वीर सैनिक शहीद हुए। कैप्टन विक्रम वत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार जैसे वीरों ने असाधारण साहस का परिचय दिया। कैप्टन विक्रम वत्रा का नारा ये दिल मांगे मोर आज भी भारतीयों के हृदय में जोश भर देता है। हम सभी इन वीरों की वीरता को प्रणाम करते हैं। 527 वीरों के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

कारगिल विजय केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि यह भारत की एकता, दृढ़ इच्छा शक्ति और सैनिकों के अदम्य साहस की विजय थी। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षित सीमाओं को और शांतिपूर्ण जीवन के पीछे हमारे सैनिकों का त्याग और बलिदान है। आइए इस अवसर पर हम उन सभी वीरों को श्रद्धापूर्वक नमन करें। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सम्मान को बनाए रखने का संकल्प लें। सरहद पर खड़े हुए प्रत्येक वीर को हम सभी धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कुछ ये कि सरहद पर खड़े सैनिक केवल भूमि की रक्षा नहीं करते, वे करोड़ों भारतीयों के सपनों, विश्वास और भविष्य की भी रक्षा करते हैं। सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि और हमारी रक्षा में अडिग अचल खड़े हुए प्रत्येक जल थल नभ के सैनिक को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।

कारगिल विजय दिवस के इस उपलक्ष्य में आप सभी को पुनः एक बार शुभकामनाएं। आज की त्रिवेणी में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, विधि जैन को नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश

0: उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
0: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देशभर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
1: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
0: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प

0: और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था, जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रह्लाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 9 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए हैं। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयीय दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डूरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता से।

आकाशदीप फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। फिल्म है जब जब फूल खिले, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

0: कोहरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक राज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था।

भीगी रात फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। छोटी छोटी बातें ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। रचना है शैलेंद्र की।

छोटी छोटी बातें, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम मन चाहेगी।

ए पीरजादा मेहरुद्दीन कैशरद्दीन और नजमुद्दीन, भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, श्रीमती प्रमिला ज्योति श्याम कुंवर और इनके अन्य साथी। इसी गाने की फरमाइश आई थी वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे की ओर से।

आप सुन रहे थे धरती फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। रचना थी हसरत जयपुरी की और इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश भेजी थी आप सभी श्रोताओं ने। शालर पहलगाम कश्मीर से।

आपकी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की और फरमाइश थी आप सभी श्रोताओं की। मानेवाड़ा रोड से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता मनोहर, लक्ष्मण देवुलकर और इनके परिजन। और इसी गाने की फरमाइश आई थी आप सभी की ओर से गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार की ओर से, और रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिवंगर गद्रे, राजेश शुभांगी और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई थी जबलपुर बरगी नगर से। चलिए अब सुने अगला गीत ये।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये था सूरज फिल्म का गाना। रचना थी हसर जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फरमाइश थी आप सभी की कमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार और इनके साथी। और इसी गाने की फरमाइश थी नेकी राम बांसीवाल, जॉनी बांसीवाल, धनराज बांसीवाल की, श्री गंगानगर से, धमणी मानोरा से पेंटर तुलसी राम डेरे, मायावती डेरे, पेंटर संदेश डेरे, आदेश, किरण प्रज्वल और अनुत डेरे की फरमाइश थी। सुनिए अगला गाना, ये अपनी ही फरमाइश पर।

0: कतियापारा जूना विलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश देवांगन, आशीष रवि शनी कान्हा और आदित्य, इसी गाने की फरमाइश भेजी थी आप सभी ने। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत और प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरमीत, गुरुशब्द, राहुल, यहीं से मतलब जिला अंबाला से।
1: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और फिल्म थी गीत। गीत को सुनना चाहा था आप सभी श्रोताओं ने। कर्नाटक चिन्ना तिरुपति से प्रकाश श्यामला अश्विनी रमेश आनंद अन्वित और इनके परिजन, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से प्रमिला श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर, अशोक श्याम कुंवर, दीपक और आस

महबूबा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन, पसंदकर्ता हमारे ये श्रोता थे छत्तीसगढ़ बोर तालाब से शत्रुघ्न लाल यादव, गौतम यादव, संगीता यादव और सचित यादव, अलीवाड़ा तामिया छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से देवी राम इनावती, दामिनी इनावती।

तुमसे अच्छा कौन है इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। रचना थी हजरत जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फरमाइश भेजी थी इस गाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने। गांव कोटगा, बहादुर जिला, मंदसौर, मध्य प्रदेश।

देश से तूफान पटेल, टीना डांगी और लक्षित डांगी ने। इसी गाने की फरमाइश आई थी आप सभी की ओर से राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, सुनील प्रसाद और इनके परिवार की ओर से। चांदनी चौक गवई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविंद्र रौनक सेन और इनके साथियों की ओर से आई थी फरमाइश। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

नाट्य तरंग। आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक वो आएगी। इसके लेखक हैं तस्वीर आबिदी, निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। तो आइए सुनते हैं नाटक वो आएगी।

0: जो जो बच्चे कुछ कहना चाह रही है।
1: इतनी जोर से कॉफी हाउस में नहीं हंसा जाता।
0: वही नहीं हंसा जाता।
2: जोर से नहीं हंसा जाता।
0: सही बात है।
3: इस कॉफी हाउस के गोशे की भैंस पर ये तीन अजनबी, तीन दिमाग, तीन अलग अलग विचार रखने वाले तीन इंसान एक साथ इस तरह घुल मिल कर बातें कर रहे हैं, क्या ये एक इत्तेफाक है या ये तीनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं? जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, एक ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते हैं। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा।

0: आज भाई भाई का दुश्मन क्यों? क्या ये मोहब्बत फिर लौट कर नहीं आएगी?
1: वो आएगी।
2: ये कौन है?
1: वो आएगी।
2: आखिर ऐसे क्यों घूमता है?
1: वो आएगी। वो आएगी। वो आएगी। वो आएगी। वो आएगी।
3: काफी साहब,
4: मेरी दोस्त, तुम किस सोच में पड़ गए? क्या मनोविज्ञान के किसी चैप्टर में खो गए?
5: कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो आएगी। महानगरीय शोर शराबे के सीने को छीनती हुई ये आवाज तुमने सुनी?
4: हाँ, मैंने भी सुनी।
5: आखिर वो किसको बुलाता है?
4: देखो दोस्त, मैं तुम्हारी तरह फलसफी तो हूं नहीं।
6: हाँ भाई, एक सियासी आदमी फलसफी हो भी कैसे सकता है?
4: मेरा नजरिया है कि वो यकीन की उस रोशनी की तरफ इशारा कर रहा है जिसकी हर किरण प्रेम का पैगाम है। वो सत्य है जिसकी गगन

0: पंचमी इमारतें ऋषियों मुनियों और महात्माओं के उपदेशों के आधार पर खड़ी है।
1: हो सकता है मेरे दोस्त तुम्हारा नजरिया तुम्हारे विचार सही हो, लेकिन सच पूछो तो ये एक विज्ञान का दौर है। अब हम जमीन की बातें कम और आकाश की ज्यादा कर रहे हैं। जरा सोचो, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने ऐसे ऐसे रहस्यों को उद्घाटित किया है
0: जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते।
2: हाँ, ये तो है।
1: आइए मैं आपको उस जगह ले चलूं जहां इस कहानी ने जन्म लिया।

0: बस करो सुधीर।
1: सुहेल डियर, काफी अरसे के बाद हम एक दूसरे से मिले हैं, और वो भी एक अजीब बात के सिलसिले में। खैर छोड़ो, फिर किसी वक्त बताऊंगा। तुम अपनी सुनाओ, शादी वादी भी की? अरे हाँ, ठीक याद आया, तरन्नुम और तुम्हारे डैडी।
0: तुमने बहुत से सवालत कर डाले।
2: कोई डॉक्टर नहीं।

0: गॉड, बेचारा, देखो कितनी बुरी तरह जख्मी हुआ है। एक इंसान के खून की
1: कहानी इसी सड़क पर खत्म हो जाती है जहां से
0: कहानी। ओह, मगर तुम इधर कहां जा रहे हो? क्या घर?
1: हाँ।
0: क्यों?
1: कुछ नहीं।
0: ओह, तो तुम काफी सीरियस हो रहे हो, इसकी वजह
1: है मेरे दोस्त।
0: तो क्या तुम मुझको नहीं बताओगे?
1: जरूर बताऊंगा। सो गया मेरे बचपन का दोस्त, बिल्कुल नहीं बदला। और मैं कितना बदल गया हूं। उफ, कितना थक गया हूं मैं। जीने की तमन्ना नहीं, अभी तो मुझे फौजिया की निशानी, मेरी अपनी बच्ची फौजी की परवरिश करना है। कितनी शरीर है। कौन? ओह, कुछ नहीं, मेरा वहम। आज मुझे फौजिया की याद फिर सता रही है। फौजिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम्हारी और फरुख की मोहब्बत कितनी सच्ची थी। कौन? कुछ भी तो नहीं। आज कितना डर लग रहा है मुझे, अंधेरा भी तो छाया है। मेरी पूरी जिंदगी ही तारीख हो चुकी है। मैं पापी जो हूं, आज मेरा शरीर खुद मुझसे नफरत करने लगा है। मैंने सुलह भी तो की है अपनी फौजिया पर।

0: शायद जिंदगी भर अब मैं इन गुनाहों की आग में सुलगता रहूं। फौजिया, मेरी फौजिया, मुझे माफ कर दे। और फर्रुख, हो सके तो तू भी इस गुनहगार को बख्श दे। फौजिया, फौजिया, माफ कर दे मेरी फौजिया, वो पागल है। तू आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी।
1: सुहेल, सुहेल, होश में आओ, ये क्या?
0: मुझे मुझे माफ कर दे फौजिया, तुझे अपनी निशानी की कसम।
1: होश में आओ सुहेल, क्या बात है? बोलो बोलो, कौन फौजिया, कैसी निशानी?
0: माफ करना सुधीर, मुझे डर लग रहा है।
1: क्या बात है, क्यों डर रहे हो? फौजिया कौन है?
0: कुछ नहीं सुधीर, बस डर, बस
1: नहीं, नहीं नहीं, छुपा नहीं सकते। बताओ क्या बात है, तुम शाम से ही उदास हो। तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ, शायद मैं तुम्हारे।
0: शुक्रिया सुधीर, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, हमदर्द हो। मैं तुम्हें बताऊंगा, सब कुछ बताकर अपना गम हल्का करूंगा।
1: शायद उस पागल के एक्सीडेंट ने तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है, तुम उसी वक्त से उदास।
0: हां सुधीर, वो पागल, उसकी आवाज एक अरसे से मेरा पीछा कर रही है।
1: मैं समझा नहीं, वो पागल, आवाज?
0: हाँ, हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
1: पहेलियां ना बुझाओ सुहेल, तुम्हारी उदासी, फौजिया, निशानी, आवाज।
0: तुम्हारा हर सवाल एक ही कहानी की कड़ियां है मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी की कहानी।
1: ओह, ये तुम हो जिसकी जिंदगी कहानियों से दूर थी।
0: हाँ, कभी थी और अब एक दर्दनाक कहानी, मगर दूसरों से कहता रहा कि मेरी जिंदगी अब भी कहानियों से दूर है,
1: और खुद को धोखा देता रहा। मगर क्यों?
0: ताकि तुम्हारा समाज, तुम खुद मुझसे नफरत।
1: मगर
0: इसलिए सब कुछ छुपाता रहा, लेकिन आज।
2: सुहेल साहब, आप बहुत आगे बढ़ आए हैं। कई बार चाहा कि आपको रोकूं और साफ साफ कह दूं, धोखे में ना रखो।
0: फौजिया।
2: हाँ सुहेल साहब, मुझे नहीं मालूम था कि आप एक छोटी सी मुलाकात को इतनी अहमियत देंगे, वरना मैं आगे बढ़ने से आपको रोक देती। खुदा के लिए, खुदा के लिए, आप जहाँ हैं वहीं से लौट जाइए प्लीज।
0: मगर क्यों?
2: इसलिए कि आप मेरे लिए सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, और फर्रुख मेरी जिंदगी।

तो फौजिया फर्रुख से मोहब्बत करती है और मैं इस आग में जल रहा हूं। कब तक मैं अपने को इस कमरे में बंद रखूंगा, फौजिया को भुलाने की कोशिश करता रहूंगा? लेकिन क्यों, क्या ये मेरे साथ धोखा नहीं? सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार वही है जिसमें बलिदान का जज्बा हो, अपना स्वार्थ ना हो। फर्रुख और

0: फौजिया
1: और मैं अपनी मोहब्बत
0: एक अंधी मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत, कुछ भी हो, मेरी मोहब्बत अंधी ही क्यों ना हो, लेकिन मैं हर हालत में फौजिया को हासिल करके रहूंगा और मैं अपनी राह में आने वाले हर कांटे को हटा दूंगा।
2: रुक जा अपने नापाक इरादों से बाजा, वरना पछताएगा, जिंदगी दूभर हो जाएगी। रुक जा बाजा, रुक जा।

0: तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हारी जान।
1: सोहेल साहब, आप?
0: हाँ मैं, और अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो मैं।
1: तो आप मुझे अपने रास्ते से हटाकर फौजिया को अपना लेंगे? क्यों?
0: हाँ,
1: फिर भी आप फौजिया को अपना ना सकेंगे
0: तो तुम नहीं मानोगे। तो लो,
2: मैं
0: तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
2: मुझे
0: नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं तेरी जान ले लूंगा, तेरी जान ले लूंगा। एक अंधी मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत, कुछ भी हो। फौजी,
3: आप मुझे फौजी कहकर ना पुकारा कीजिए।
0: मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि फर्रुख भी तुम्हें इसी नाम से पुकारता था।
3: मैं फर्रुख को भूल चुकी हूँ और अब आपकी बीवी हूँ।
0: फौजी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी करके तुम्हारी और फर्रुख दोनों की जिंदगियों में घुल लगा दिया है। फौजिया, आगे खोलो फौजिया।
3: अरे, ये तो बेहोश हो गई।
0: फौजिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जब से तुमने इस नन्ही सी जान को जन्म दिया, तुम्हारी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। मैंने दो जिंदगियों को तबाह किया। मैं कभी चैन नहीं पा सकता। नीलम, मेरी फौजिया को क्या हो गया है?
3: बस करो सुहैल, जो तुमने किया, हे भगवान इसे बचा ले। मेरी अजीज सहेली, मेरी बहन, होश में आ। देख देख, मैं हूँ नीलम। लो ये दवा पी लो।
4: कौन? नीलम?
3: हाँ फौजिया, मैं नीलम। और ये देखो तुम्हारी नन्ही फौजी, इसे गले लगा लो।
4: मेरी बच्ची, वो सोहेल कहाँ है?
0: मैं तुम्हारे पास हूँ फौजिया। मैं
4: मेरा आखिरी सलाम
0: फौजी।
4: हो सके तो मुझे माफ कर दो।
0: नहीं फौजी,
4: मैं तुम सबसे दूर, बहुत दूर जा रही हूँ। नीलम, नीलम, मेरी बच्ची, मेरी फौजी, अपनी अमानत, मैं तुम्हें सौंप रही हूँ।
0: फौजी, फौजी, फौजी।

0: की ये कहानी आज भी तीन सीनों में दफन है। फौजिया आज इस दुनिया में नहीं, फर्रुख पागल है और नीलम एक देवी जो आज भी वचन निभा रही है और मेरी फौजी की परवरिश कर रही है।
1: फर्रुख का क्या हुआ सुहेल?
0: फर्रुख, सुधीर, जब फौजिया का जनाजा घर से जा रहा था तो मैंने देखा।
1: क्या?
0: मैंने देखा सुधीर, जनाजे के सबसे पीछे वो फर्रुख था।
1: फर्रुख? वो हाँ, पागल?
0: हाँ सुधीर, वो चुपचाप जनाजे के पीछे चला रहा था। वो कब्रिस्तान तक गया, लगता था वो पागल नहीं है, वो रो भी नहीं रहा था, बस उसकी हालत बता रही थी कि वो पागल है। लेकिन जब फौजिया की लाश कब्र में उतारी गई और मिट्टी डाली जाने लगी तो वो कुछ कहता हुआ भाग रहा था।
2: अभी
0: औसी मेरी बच्ची,
2: अभी आप रो क्यों रहे हैं?

0: जाइए ना, हम आपको बहुत चाहते हैं।
1: मेरी प्यारी बच्ची।
0: अब तो नहीं रोइएगा अभी।
1: नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। सुधीर, यही है मेरी बेटी फौजी। तुम्हारी आंटी कहाँ है बेटी?
2: मैं यहाँ हूँ सुहेल भाई।
1: अरे नीलम, आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो
3: आप? नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी?
2: जी, मैं नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी। मिस्टर सुधीर, आप यहां कैसे?
3: जी वो
1: खूब। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो?
2: नहीं सुहेल भाई, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले, सिर्फ तस्वीरों की मुलाकात।
3: वो इत्तफाक से। नीलम जी, मैं सुहेल का दोस्त हूँ।
1: और अब ये तस्वीरें हकीकत के रूप में एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। अब क्या इरादे हैं?
2: सुहेल भाई, मैं अपने इरादों पर अटल हूँ।
3: इरादों?
2: जी, फौजी जो मेरी अजीज सहेली की निशानी है, अब मेरी जिंदगी, इसकी परवरिश, मेरे सपने और इरादे।
3: आपसे इस अचानक मुलाकात से पहले मैं फौजी को सुहेल से मांग चुका हूं, मगर सुहेल ने कहा था कि फौजी पर मुझसे ज्यादा नीलम का हक है, यानी आपका।
2: हाँ सुधीर साहब, फौजी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। जब उसे मैंने अपनी बहन फौजिया की मौत के बाद अपनी गोद में लिया, तो मैं उसकी मां तो नहीं।
1: मां की ममता से इसकी झोली भरती।
3: फौजी के लिए अगर आज मैं आपके सामने अपना हाथ।
2: फौजी मेरी जिंदगी है।
3: नीलम जी,
2: ये नामुमकिन है मिस्टर सुधीर।
3: नीलम जी, फौजी मेरी भी है।
2: जी नहीं, सिर्फ मेरी।
0: अरे अरे, अंकल और आंटी तो लड़ने लगे अभी।
1: हाँ बेटी, मेरी समझ में।
0: आप रोइए नहीं अभी, मैं समझाती हूँ। आंटी आप और अंकल आप दोनों इधर खड़े हो जाइए।
3: खड़े हो जाइए?
0: बोलिए नहीं, बस खड़े हो जाइए।
2: नहीं फौजी, ये तुम
0: एक साथ खड़े हो जाइए, नहीं तो मैं रोने लगूंगी।
3: अच्छा अच्छा, लो हम खड़े हो गए।
0: हाँ बस, अब मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ। ऐसे अभी, अब मैं कैसी लग रही हूँ?
1: बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी।
0: तो अभी हम लोग ऐसे ही रहेंगे। अब आप खुश
1: फौजी?
2: मेरी बच्ची।

0: प्यार मोहब्बत और कर्तव्यों के इन्हीं पाकीज़ा जज्बात की नींव पर ही मानवता की इमारतें खड़ी हैं।
1: जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, एक ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते हैं। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है, जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था, जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा।

0: क्या ये मोहब्बत फिर लौट कर नहीं आएगी?
1: वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी।
0: आओ लौट चले फिर उसी जगह जहां से हम चले थे।

0: अभी आप सुन रहे थे तस्वीर आबिदी का लिखा ये नाटक वो आएगी। इसका निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरी कड़ी।
1: थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपकी शादी वाला जो किस्सा है वो सुनना चाहते हैं।
2: नहीं, शादी वाले किस्से में ऐसा कोई खास वो नहीं था जो मैंने सोचा कि मुझे हमेशा की तरह नहीं अच्छा कमाने वाला पति ढूंढ के उसके साथ एक साहिबा बन के नहीं जिंदगी बितानी, मुझे अपना काम करना है, मुझे ऐसा कोई चाहिए जो जिसके साथ काम करने में मजा आए। और ऐसा मिल गया दोस्त, ऐसा मिल गया साथी अरुण। और फिर माँ को मेरी बिल्कुल नहीं पसंद था रिश्ता, फिर बाद में वो ठिकाने आ गई बहुत। अप्पा तो उन्होंने साथ दिया क्योंकि उन्होंने देख लिया कि मैं बिल्कुल अड़ गई हूँ, तो उन्होंने साथ दिया, लेकिन माँ नहीं आई थी। लेकिन अरुण ने और मैंने शादी की और हम दोनों का तो पक्का था कि नाटक करने हैं जिंदगी भर। फिर टेलीविजन की नई नई शुरुआत हो रही थी, टेलीविजन नाटक फिल्म अगर हो पाई तो, तब तो वो एक सपना था सुनहरा, लेकिन ये हमने किया। और फिर अरुण भी एक साल बाद मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गए। और अरुण को तो 3 साल अलकाजी मिले क्योंकि तब तक वो 3 साल का कोर्स हुआ था और अलकाजी साहब फिर आगे वहां रुके, तो मैं तो निकल गई। और फिर क्या हुआ कि हमने नाट्यद्वयी करके एक अपनी संस्था शुरू की और हम एमेटर तौर पर नाटक दिल्ली में करने लगे। पहले तो हमने बहुत सारे मराठी जितने भी थे मराठी नाटक खेल डाले, है ना, मेरे अपने भी थे उसमें, पुल देशपांडे के थे, फिर वासना कांड महेश इलकुंजवार का था, फिर ऐसे बहुत जितने भी हाथ लगे वो ड्रामे किए। और क्या होने लगा कि 2-4 शोज के बाद ये पता चलता था कि पहले तो हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल, और फिर बाद में धीरे धीरे धीरे, क्योंकि दिल्ली में मराठी थे कितने, जितने थे वो 3-4 शोज में खत्म होते थे आके, फिर वो खाली हॉल। फिर हमने सोचा कि ये बात सही नहीं है, इतनी मेहनत करो और ये फिर इकोनॉमिक्स नहीं बैठ रहा इसका, तो क्या किया जाए क्या किया जाए। फिर एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी कि क्यों नहीं अच्छे अच्छे लायक मराठी नाटक चुन के उनको हिंदी में पेश किए जाए,
1: वाह वाह,
2: है ना। तब हमने किया सखाराम बाइंडर, किया ये किया वो किया, और सखाराम बाइंडर के चक्कर में मुझे जेल जाने की नौबत आई थी। वो किस्सा आपको जरूर सुनाती हूँ।
1: जी जी।
2: उन दिनों क्या था कि वो नाटक ऐसा ये बिल्कुल नहीं था व्यावसायिक तौर पे, हाँ प्रोफेशनल नाटक था ही नहीं, तो लोग फिर करते थे और ऐसी कुछ एक संस्था थी जहां से परमिशन लेनी पड़ती नाटक खेलना अगर आपको हो, और उनको पटाना होता था कि भाई हमारा बहुत नेक ये उद्देश्य है फलां ढिमका वगैरह वगैरह, फिर वो परमिशन आपको देते थे, फिर आप टिकट लगा के नाटक कर सकते थे। तो हमने ये सखाराम बाइंडर का सोचा करने का, और कास्ट भी बहुत बढ़िया मिल गई हमको, वो लक्ष्मी के रोल के लिए सुधा चोपड़ा और चंपा के रोल के लिए सुषमा सेठ जैसे कलाकार मिले, अरुण तो सखाराम बाइंडर के रोल में वगैरह, और मैं डायरेक्टर, तो और विजय तेंदुलकर तो बहुत अच्छे दोस्त थे तो उन्होंने बड़े खुशी खुशी हमको परमिशन दे दी। तो ये शो, लेकिन ये हमने इनको लिखा कि हमको ये शो करना है, उनसे जवाब ही ना आए, वो कोई दखल ही ना दे। एक बार हुआ, दो बार हम पहुंचे वहां, फोन किए, ये किया वो किया, कुछ नहीं, वहां तक कि उनके चपरासी भी रुक के हमसे बात करने को राजी नहीं थे। तो अब क्या करें क्या करें, हम बहुत घबराए, और थिएटर के डेट्स ले चुके थे और सबके डेट्स ले

0: चुके थे और वो सब पास आ रहा था, हाँ हवे की तरह। बहुत कोशिश की, कुछ नहीं बात बनी। तो फिर किसी ने ये सलाह दी कि देखो और लोग भी ये करते हैं, तुम लोग निमंत्रण छापो, हाँ, कि आपको ये बुलाया है मुफ्त में, और फिर वो निमंत्रण बेचो, ओके, 10 रुपए में, 25 रुपए में, जो भी तब होगा। तो हमने कहा हाँ ये अच्छी तरकीब है। तो हमने वैसे निमंत्रण छापे, उनको बेचे, और सखाराम बाइंडर की तब बहुत हवा थी क्योंकि बम्बई में तो तूफान मच चुका था सखाराम बाइंडर को लेके। तो दिल्ली में भी फिर लोग, और फिर हमारा ग्रुप भी नाट्यद्वयी अब तक बहुत लोकप्रिय हो चुका था। तो फिर देखते ही देखते सब हमारी निमंत्रण ही कहो बिक गई। और फिर जिस दिन खेल था, हमें कुछ नहीं बताया, वो उनके लोग चुपचाप आके देख रहे थे। और बाहर भी हमने कुछ बेचने के लिए, हम बिल्कुल मतलब उसमें हमें लगा ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये तरीका दूसरा था ही नहीं। उन्होंने दरवाजे बंद किए थे, अब हम क्या करें। फिर उन्होंने वो लिए, एक दो उन खरीदे हमारे निमंत्रण, और फिर हमारे घर 2-3 दिन बाद उनके लोग आए कि आपको कानूनन ये करेंगे क्योंकि आपने ये बहुत गुनाह किया है, आपने टिकट, ये गुना तो था ही, हाँ। तो हमने कहा फिर क्या करें, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नहीं नहीं वो तो वो सुनने वाले थोड़ी थे। तो और जैसा मैंने कहा, उनके चपरासी भी रुक के देखने को तैयार नहीं थे हमारी तरफ, बहुत हम गिर गिर आए, ये किया वो किया, उनको प्रूफ्स दिया कि हम फलां दिन को हम आपके अप दफ्तर में आए थे, धमकाने दिन, ये देखो हमने ये इस तारीख को भेजा है लेटर, सब हमारे पास था, वो सुनने को तैयार नहीं। फिर किसी ने कहा क्या करोगे तुम, तो सचमुच जेल जाने की नौबत आ गई। मतलब दिस इज हाउ वी ऑपरेट, विच इज सो सैड।
1: जी, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं।
0: जरूर जरूर।
2: दीवाना,
1: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी,
1: दो दीवाने शहर में।

0: तो वो पूरे नाटकों का दौर चलता रहा।
1: हाँ जी
0: और दिल्ली में आपने बहुत सारे नाटक
1: हाँ, एक
0: लगातार किए।
1: पंजाबी में भी किया
0: जी
1: जी, पंजाबी में किया, वेंकटेश माडगुलकर का नाटक था तू वेड़ा कुम्भार। हाँ, उसका चक्का चलता है, सुरेंद्र गुलाटी ने उसका ट्रांसलेशन किया, बखूबी ट्रांसलेशन किया। और मजे की बात यह कि वो मराठी नाटक पंजाबी भूमि में इतना मजे से बैठ गया और उग गया कि क्या बताऊं मैं। बहुत ही मतलब लगा कि ये पंजाब में ही ये नाटक का निर्माण हुआ है।
0: टूर भी
1: हाँ,
0: किया था उसको लेके?
1: नहीं टूर नहीं किया,
0: सिर्फ दिल्ली में किया?
1: दिल्ली में किया। हाँ, और लेकिन मजे की बात होती, पंजाबी तो मुझे आती नहीं बोलनी, समझ में तो आती है दिल्ली रहो तो हर चौथे पांचवे दिन एक बहुत ही हमारे कलाकार, और कलाकार भी बहुत गजब के थे, कुलभूषण खरबंदा, श्याम अरोरा, सुधा चोपड़ा, कीमती आनंद, ऐसे बहुत होनहार कलाकार थे। और पांच छह दिन बाद उनमें कलाकारों में एक झगड़ा होता था, और झगड़ा वो ऐसा मतलब छप्पर उड़ा देने वाला, जा तू तू मैं तू की कह रहा है शाम, वो तो चुप रहा है वगैरह
0: अरे
1: वगैरह वगैरह।
0: बाप रे।
1: और क्यों ये झगड़ा होता था कि एक था जलंधर का, एक था पटियाला का, एक था
0: पगवाड़ा
1: चंडीगढ़
0: का,
1: का,
0: चंडीगढ़
1: हाँ
0: का।
1: वगैरह वगैरह, हर अलग अलग जगहों से थे और हर एक की बोली थोड़ी सी अलग थी। तो ये कहता नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे कहते, दूसरे कहते नहीं ना जी ना तू की कह रहा है हाँ वगैरह वगैरह का। मैं चुप कोने में बैठी सुनती थी, और जब वो अपना शांत हो जाता था, ये 10-15 मिनट झगड़ के फिर शांत हो जाते थे, एक की जीत होती थी, नाटक रिहर्सल फिर आगे चालू। पर वो इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल जैसे
0: लेकिन लैंग्वेज का एक पुल भी पार किया,
1: जी
0: मराठी नाटक पंजाबी में
1: जी
0: होने
1: जी
0: लगा।
1: हाँ।
0: यहां से दूरदर्शन का सीन कैसे आया?
1: दूरदर्शन, अब मुझे याद याददाश्त में मेरी वक्त के बारे में बहुत गड़बड़ है, मतलब क्या पहले क्या बाद में ये सही ढंग से याद नहीं आता, लेकिन
0: जहां तक मुझे याद है आप
1: उसमें
0: आकाशवाणी भवन गई थीं।
1: हाँ नहीं वो बहुत पहले गई थी, जब मेरा कोई ताल्लुक नहीं था टेलीविजन से या कुछ भी, तब मैं सिर्फ नाटक वगैरह करती थी दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद। हाँ, एकदम वहां से मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंची एज अ टीचर,
0: जी
1: प्रोफेसर ऑफ स्पीच एंड ड्रामा,
0: डिक्शन। जी
1: हाँ
0: जी
1: हाँ डिक्शन एंड ड्रामा। हाँ, तो वो एक साल ही मैंने वहाँ पढ़ाया, और मेरे ये सुन के आपको आपके होश उड़ जाएंगे शायद, मेरे स्टूडेंट्स की नामावली सुन के,
0: बड़े दिग्गज लोग।
1: एब्सोल्युटली जलाल आगा,
0: ओहो,
1: साधु मेहर जो नेशनल अवार्ड विनर
0: श्याम
1: था
0: बेनेगल
1: श्याम
0: के एक्टर,
1: बेनेगल की फिल्म में, रेहाना सुल्तान दस्तक
0: दस्तक
1: की
0: फिल्म।
1: हीरोइन, फिर राकेश पांडे
0: जी,
1: जो भोजपुरी का अमिताभ बच्चन
0: उनको लेके
1: भोजपुरी
0: एक फिल्म
1: सिनेमा का,
0: लॉन्च हुई थी संगत,
1: किसकी
0: राकेश पांडे को लेके कुछ कुछ फिल्में
1: हाँ
0: लॉन्च हुई थी, पर उनका ज्यादा नाम नहीं हुआ।
1: नहीं उस भोजपुर में बहुत नाम, वो उसमें थे ना बाशु चैटर्जी की फिल्म थी ना सारा आकाश,
0: उसमें थे
1: उसका हीरो था
0: जी,
1: हाँ राकेश,
0: बाद में
1: वेरी
0: वासुदा ने
1: वेरी
0: एक
1: नाइस
0: फिल्म लॉन्च की थी संगत, उसमें भी
1: अच्छा,
0: वो हीरो थे पर वो बनी
1: वो
0: नहीं।
1: नहीं नहीं वो उसका ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर वो भोजपुर की तरफ मुड़ गए और भोजपुर में बहुत नाम कमाया राकेश ने, यहाँ तक कि मुझे एक बार फिर बहुत सालों बाद, हम दोनों जूरी में थे, मैं चेयरपर्सन थी उस साल जूरी में और राकेश एक मेंबर थे जूरी, तो तब हमारी बड़ी प्यार से फिर इतने सालों बाद मिले, और किसी ने मुझे कहा कि राकेश अब भोजपुरी का अमिताभ
0: स्टार बन
1: बच्चन
0: गए।
1: है वगैरह वगैरह, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के, अभी मोटे वोटे हुए थे तब,
0: जी
1: दुबला
0: जी
1: पतला था जब मेरे क्लास में था, तो ऐसे इन लोगों को सिखाया पढ़ाया,
0: शैलेंद्र
1: बहुत
0: सिंह
1: मजा
0: वगैरह
1: आया।
0: भी थे?
1: नहीं नहीं मेरे
0: अच्छा,
1: क्लास में नहीं थी ना, तो ये हुआ। और हाँ, जब मैं थी अगेन इश्तहार टेलीविजन तब शुरू हो गया, और हाँ उसके पहले आपने कहा कि कब आकाशवाणी भवन गई थी, तो जब मैं गई थी जब वो सब बन रहा था, और तब सिर्फ स्कूलों का टेलीविजन होता था, स्कूल के लेसन होते थे घोंचू तरह के, हाँ बहुत ही ड्राई और बहुत ही मतलब, लेकिन वो रोजाना एक रिहर्सल के तौर पे वो पेश होते थे, तो वो मैं ऐसे ही देखने गई आकाशवाणी भवन, अब याद नहीं क्यों गई कैसे गई, और मुझे किसने कौन मेरे गाइड होंगे, अगेन आई एम टेकिंग द सेम नेम फॉर द सेकेंड टाइम, पुलर देशपांडे,
0: वाह वाह
1: हाँ
0: वाह,
1: क्योंकि ही वॉज इन द फाइनल कमिटी, द मेजर कमिटी, मास्टर कमिटी जो थी टेलीविजन का पूरा वो करने वाली, सब रवैया तो वो थे, और उन्होंने कहा अरे सही तू कदी अली सा, ये बड़े खुश हुए मुझे देख कर, क्यों ना से हमारी पहचान थी आकाशवाणी से।
0: जी
1: तो फिर उन्होंने मुझे पूरा घुमाया, वो छोटा सा स्टूडियो था तब आकाशवाणी भवन में, नन्ना सा स्टूडियो, और उसमें वो तीन कैमरा, और हर कैमरा का अलग क्या उसका ये है, हर एक का की ड्यूटी क्या है वगैरह वगैरह, यंत्रणा पैनल पे कैसे पेश किया जाता है, लाइटें कैसी, वह सब उन्होंने मुझे सिखाया। और तब मुझे जरा भी मतलब एक इतना भी नहीं ये हुआ लगा कि एक दिन अपन यहाँ आने वाले हैं,
0: क्या बात है,
1: कि
0: ये
1: हाँ
0: ख्वाब भी नहीं था
1: ख्वाब
0: कि
1: भी नहीं
0: अब
1: था,
0: ये जगह
1: हाँ
0: जिंदगी ले
1: ये
0: जाने वाली है।
1: मेरी कार्यभूमि बनने वाली है 8 साल के लिए।
0: जी
1: और तब ये इश्तहार पढ़ा, जब मैं ये फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी, तो फिर उधर अगेन अप्लाई किया कि देखते हैं क्या होता है, एंड तो वहाँ चुनी गई मैं। और पहले 6 प्रोड्यूसर जो थे भारत के, पहले 6 टेलीविजन प्रोड्यूसर्स, उसमें से मैं एक हूँ, ये मुझे बहुत नाज के साथ
0: क्या
1: कहने
0: शानदार बात है,
1: कह
0: वाह वाह
1: बहुत
0: वाह।
1: नाज के साथ मैं कहती हूँ। और मेरे साथ थे ए प्रताप करके थे, फिर एक वासुदेव थे,
0: पी
1: कुमार
0: कुमार
1: वासुदेव,
0: वासुदेव
1: पी
0: जी,
1: कुमार वासुदेव, जिसने अच्छे कुछ सीरियल्स पेश किए, और एक स्वदेश कुमार करके थे, और शमा जहदी थी,
0: ओहो
1: और हबीब तनवीर थे।
0: क्या बात
1: हाँ,
0: है, वाह वाह
1: लेकिन
0: वाह।
1: हबीब और शमा जल्द ही कुछ महीनों बाद छोड़ गए, तो हम 4 रह गए, लेकिन ये हम 6 लोग थे पहली पलटन में।
0: वाह
1: तो विच
0: वाह,
1: इज वंडरफुल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, एंड सो इट वॉज फैबुलस, 8 मैजिक ईयर्स इन टेलीविजन। और वहाँ ऐसा कुछ तो था ही नहीं कि कैसा करना है क्या करना है, जो मर्जी करो, क्योंकि देर वॉज नो एग्जाम्पल, यू नो, कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। हमें सिखाने जरूर आए थे, एक बहुत मशहूर ये BBC से आए थे, वॉरन ये करके, तो उन्होंने सिखाया अच्छी तरह, लेकिन ये हम बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते रहे,
0: जी
1: हाँ, और बहुत कुछ कर पाए टेलीविजन में, और मज़ा भी बहुत आया।
0: वहां आपने बहुत अलग अलग तरह के काम किए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई,
1: जी
0: अबू अवार्ड जीता।
1: हाँ, यस, एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, हाँ,
0: जी
1: तेहरान में।
0: वो चाय की टपरी वाला जो
1: हाँ जी, वो
0: वाली
1: छोटी सी
0: डॉक्यूमेंट्री,
1: फिल्म थी 10-11 मिनट की, वो मेरी पहली फिल्म कह सकते हैं, हाँ,
0: जी
1: टेलीविजन में। और वो क्या थी कि एक सीधी सी एक छोटी चाय की टपरी हाईवे पे, दिल्ली आगरा हाईवे, हाँ, उसके एक किनारे, और वो एक सिर्फ एक औरत चलाती थी वो टपरी, चाय वही बनाए, कप वही धोए, वही पेश करें, पैसे वही गिने, झगड़ा वही करे ग्राहक के साथ वगैरह। और
0: बिल्कुल
1: वो छोटी सी औरत, ये तगड़े वहाँ ट्रक वाले रुकते थे, वो उनसे अच्छा निपटती थी, और बिल्कुल वो मज़े से उसका चल रहा था, और इट वॉज वंडरफुल, ये अनपढ़ औरत कैसे चला रही है अपना काम और धंधा। तो इट वॉज वेरी इंस्पिरेशनल कि ये हमारे देश में एक अनपढ़ औरत भी कुछ कर दिखा सकती है। सो आई थॉट दैट वॉज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो इट वॉज, इट डिडन्ट हैव एनी डायलॉग, नथिंग, तो एक 10 छोटी सी फिल्म थी, लेकिन उसको ये अवार्ड मिल गया, और हाँ, मैं दंग रह गई, अरे ये ऐसा भी होता है। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, फिर टेली फिल्म्स बनाई, मतलब ड्रामे ही कहो, टेली फिल्म तो क्या हुआ, ड्रामा ही हुआ ना एक तरह से।
0: जी जी
1: हाँ,
0: पोस्टर बनाने वालों पर काम
1: पोस्टर,
0: किया
1: हाँ, तो दैट वाज आल्सो, दैट वाज अ डॉक्यूमेंट्री।
0: जी।
1: तब ये फिल्मों के पोस्टर्स ये बनाते थे, हाँ, एक पूरा
0: हैंड
1: उनका
0: पेंटेड पोस्टर्स,
1: हैंड पेंटेड, हाँ, उनका एक जत्था होता था, तबका होता था उनका, और वो बेचारे कहीं गैराज वैराज नुमा जगह उनको मिलती थी, वहाँ वो अपना ढेरा लगाते थे, ढेर लगा सगा पोस्टर्स पड़े हैं, और वो अपने कच्छे पहने, बनियान पहने, रंग सब लगा हुआ, ऐसे वो बनाने में मशगूल होते थे। और वहाँ हम पहुँच गए, तो क्या बात करें वो लोग, और जा मतलब पूरी दिल्ली की स्काईलाइन इनके पोस्टर्स से भरी हुई है ना। तो उनसे फिर बातें की, तो मुझे इतना अच्छा याद है कि एक वो सीढ़ी पे चढ़ के एक पोस्टर में किसी की आंख, मेरे ख्याल से शर्मिला टागोर की आंख बना रहा था, और वो ऐसे नीचे देख के बात कर रहा था, हम ऐसे ऊपर देख के उसको सवाल पूछते थे। तो उसने कहा कि भाई, हमारी ये असली लोक कला है,
0: वाह
1: इसको लोक कला कहो, क्योंकि और लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते हमारी कला देखने को।
0: क्या बात
1: तुम
0: है,
1: लोग जाते हो बड़े बड़े उसमें एग्जीबिशन हॉल में, यहाँ वहाँ पैसे देके टिकट खरीद के देखते हो, और हमारी कला तुम्हारे पास आती है हाँ, और मुफ्त में वगैरह वगैरह। और एक को पूछा मैंने कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये तुम ऐसे भड़कीले पोस्टर बनाते हो, कोई बंदूक ताने हुए है, कोई नाच रही है, इसका घाघरा जो हवा में उड़ रहा है वगैरह वगैरह, तो ये बच्चे भी देखते हैं, उन पे असर होगा, बुरा असर, ऐसे नहीं तुम्हें लगता? तो उसने कहा अजी हम ये पोस्टर बनाते हैं, अब ये शत्रुघ्न ये देखो, और वहां सब ये थे हाँ पोस्टर, ये बंदूक ताने हुए हैं, लेकिन इससे गोली नहीं छूटेगी,
0: वाह
1: और ये मुमताज नाच रही है गोल गिरकी मार के, उसका घाघरा और नहीं ऊपर जाएगा, बस यहीं रुकेगा, लेकिन अंदर तुम फिल्म देखोगे तो क्या धुआंधार ये गोलियां चलेंगी, बारिश गोलियों की और तूफान ये, और नाच एक से भद्दे एक तुम देखोगे, खुश हो जाओगे, और वो चलता है, वो नहीं बच्चों की नीति बिगड़ जाती, हमारे पोस्टर देख के नीति उनकी बिगड़ती है वगैरह वगैरह, इतने चाव से वो बोला। मैंने कहा कान छुए मानती हूँ, और चलने दो, आपका काम बढ़िया हो रहा है, चलने दो। तो इट वॉज, अब ये पूरी दे आर नो मोर, पूरी गायब हो गई है,
0: पूरी
1: पूरी
0: वो, क्योंकि
1: वो
0: अब तो
1: कॉम
0: पोस्टर सब
1: कॉम ही
0: डिजिटल हो
1: गायब
0: गए
1: हो
0: हैं
1: गई।
0: ना। एम एफ हुसैन मिले थे जी,
1: हाँ, अरे सॉरी, अरे एन एफ हुसैन इस डॉक्यूमेंट्री में थे ना, थैंक यू, मुझसे ज्यादा आपको मालूम है। क्या है, किसी ने बताया कि अरे एम एफ हुसैन स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोस्टर पेंटर, ऐसे
0: महाराष्ट्र में एक बड़ी
1: तोबा,
0: परंपरा थी
1: हो
0: जी।
1: तोबा तोबा। मैंने कहा अरे तब तो उनको पकड़ना ही है, और इत्तफाकन मेरी एक दोस्त के वो बहुत अच्छे करीबी थे, तो उनसे मिले, और वो बहुत ही, ही वॉज अ वेरी वेरी सिंसियर, वेरी वेरी जेनरस, वेरी काइंड हार्टेड मैन, तो बहुत खुशी से वो हाँ हाँ मैं बिल्कुल पोस्टर पेंटर करके शुरुआत की, और बहुत बढ़िया बोले हो। उन्होंने कहा कि मुझे याद है मेरा पहला पोस्टर था जब दुर्गा खोटे का पाया की दासी, पायाची दासी करके मराठी फिल्म थी, वो पोस्टर मैंने बनाया, और क्या कहूँ, जब दुर्गा खोटे की होठों की लाइनें मैं खींच रहा था,
0: जी
1: तो जो मैं बेहोश था, मतलब नशा जैसे चढ़ा, और कहता है हमको कितनी बिदागी मिलती थी, अठन्नी दिन की,
0: अरे अरे
1: अठन्नी, ये तो मेरे 50 रुपए से भी बदतर है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने उस दौर में एक बड़ा ही कठिन काम किया, और वो था एक डॉक्यूमेंट्री जो आपने पंकज मलिक पर बनाई।
1: हाँ,
0: ये
1: यस,
0: ख्याल कैसे आया था, और ये कठिन काम क्यों था? मैंने कठिन कठिनाई का जिक्र किया क्योंकि इसको
1: कठिन,
0: तोलो तो ये नाराज
1: यह
0: वाला जो
1: हाँ
0: मामला था
1: नहीं,
0: वो
1: वो
0: बताइए।
1: कठिनाई आई और फिर उनको निपटते भी गए हम
0: जी
1: बड़े चाव से। तो
0: ये
1: ये
0: आइडिया कहां से आया?
1: आइडिया ऐसे आया कि उस साल उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड डिक्लेयर हुआ था पंकज दा को,
0: जी
1: हाँ, तो फिर मैंने कहा इन पर फिल्म बनाई जाए, तो फटाफट मैंने, मैं इस मामले में बहुत तेज थी, मैंने एकदम से वो बना के दिया हमारे स्टेशन डायरेक्टर को, वो तो बहुत खुशी से मान गई, हाँ हाँ वेरी गुड आइडिया, जाओ जाओ तुम कलकत्ता जाके ये फिल्म करो। फिर छोटा सा यूनिट बनाया, कैमरामैन ये वो, और कलकत्ता, अच्छा कलकत्ता जाके दादा ना माने पंकज मलिक, नहीं नहीं नहीं नो फिल्म, वो ऐसे बड़ी आवाज थी उनकी बुलंद,
0: हाँ
1: कहते नो नो आई डोंट वांट एनी फिल्म, ऐसे नहीं नहीं दादा ऐसे कैसे वगैरह वगैरह, खूब फिर मैंने अपना इतना चार्म का जैसे ये लगाया दांव पे, मैंने कहा नहीं प्लीज ये यू हैव टू डू इट, ये देश के लिए जरूरी है, ये फिल्मों के लिए जरूरी है, हमारे लिए जो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बकवास किया, लेकिन आखिर में बेचारे मान गए और राजी हो गए, और मुझे इतना याद है वो मुझे माय डियर सिस्टर
0: हाँ
1: करके
0: वो इसी तरह बोला
1: पुकारते
0: करते थे
1: थे।
0: और खरजदार आवाज में,
1: हाँ
0: रुक
1: बिल्कुल,
0: रुक के बोलते
1: माय डियर सिस्टर करके, फिर हम भाग के जाते थे पंकज दा के पास। तो एनीवे, और उन्होंने एक, मुझे इतना अच्छा याद है कि टेरेस पे हमने शूटिंग किया, और उनका वो गाना दो नैना
0: मतवारे
1: मतवाले, हाँ
0: तिहारे
1: हाँ
0: हम पर जुल्म
1: और
0: करें।
1: मैंने कहा अब यहाँ मेरा डायरेक्टर जाग गया, मैंने कहा दादा हम भाभी को खड़ा करेंगे, वो अनाज बिन रही है कुछ चावल लेके थाली लेके, और आप गाना गाओ, तो ये, और हम पूछेंगे उस हिसाब से गाना गाओ कि कौन सा गाना वगैरह, फिर आप गाना शुरू करो, और दीदी पास सुन रही होंगी। तो उन्होंने कहा उनको अच्छा लगा आइडिया, तो हमने शुरू किया, और फिर दादा उसमें रंग में आए और वो फिर भाभी जी को देख के दो नैना वगैरह वगैरह आंखें मटक के ये वो, और फिर भाभी जी भी देखे हाँ, उन्होंने कहा
0: वाह वाह,
1: वैसे क्या बताऊं मैं, सब हमारा पूरा यूनिट उछल गया। तो ये ऐसे ऐसे किया, और फिर मैंने कहा अच्छा दादा अब ये तो सब हुआ हंसी मजाक के, वो उन्होंने किससे सुनाया ये करिया। फिर अब राय चंद बुराल जी का इंटरव्यू लेना बनता है, समकालीन म्यूजिक डायरेक्टर। और रायचंद बुराल के बारे में कहते थे कि फिल्म म्यूजिक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो दादा ने कहा नहीं। हाँ मैंने कहा नहीं, वो आदमी ये वो जो भी, उनसे उनका था झगड़ा सालों से,
0: जी जी
1: हमारी बातचीत नहीं है। मैंने कहा आप बेशक बात ना करो ना, बात हम करेंगे, आप क्यों बात करोगे उससे, लेकिन बोलेंगे तो जरूर उनको बोलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, फिर बहुत उनको सकती, ये एक इतिहास का हिस्सा है और ऐसे नहीं मना कर सकते हम, फिलहाल आपकी फिल्म पूरी नहीं लगेगी अगर उनको नहीं लिया। फिर आखिरकार मान गए, फिर बुराल साहब के पास गए, बुराल जी ऐसा नहीं पंकज से उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहा अरे वो फिर उनको वही इतिहास और ये अब तो मुझे अच्छी तरह प्रैक्टिस भी हो गई थी।
0: कैसे
1: मैंने कहा नहीं नहीं बोराल साहब ऐसे कैसे कह सकते हैं फलान का ये वो, फिर वो भी मान गए बहुत अच्छी तरह। और फिर इतना अच्छा अच्छा बोले पंकज दा के बारे में कि पूछो मत, बहुत तारीफ की।
0: एक और शख्स को
1: हेमंत कुमार बिल्कुल, और हेमंत दा का भी यही, उनसे भी बात नहीं थी, ये पता नहीं दादा किस किस से साथ झगड़े थे, लेकिन हेमंत कुमार से बातचीत बंद थी, लेकिन हेमंत कुमार भी फिर राजी हो गए, उन्होंने भी गाना गाया और उन्होंने भी बड़ी तारीफ की। इस तरह हमारी फिल्म बन गई, लेकिन अफसोस कि इस फिल्म की एक फ्रेम भी नहीं अभी बची है।
0: ओहो हो हो,
1: एक आर्काइवल फिल्म देखो ना पंकज मलिक जैसे। और जब उनको ये अवार्ड मिला ना, तब जो अवार्ड लेने गए तो उनका ही गाना हमने साउंड ट्रैक पे बजाया, आई बहार आई बहार,
0: डॉक्टर फिल्म का गाना। क्या बात है, 40s की फिल्म है शायद, 41 की फिल्म है आई बहार। लेकिन मुझे लगते हैं यहाँ दो नए नाम मतवारे तिहारे ये गाना सुनते हैं।
1: अरे है आपके पास,
0: बिल्कुल
1: क्या
0: बिल्कुल।
1: बात है।

0: अब साज की तरफ आते हैं। आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है और मुझे लगता है आप अपने आप ही बताएं इस फिल्म के बारे में, कोई भी एक स्टेटमेंट देना गलत हो जाएगा।
1: मुझे अगर कोई फिल्म बनाते वक्त मजा नहीं आया हो तो दैट इज साज।
0: ऐसा क्यों?
1: पता नहीं, कुछ बात ही नहीं बनी। जहाँ इसके पहले हर फिल्म में एक कुछ जोश होता था, चाहे पपीहा हो, चाहे दिशा हो, कथा हो, कुछ भी, लेकिन इस बार ऐसे नहीं लगा। एक वो जो यूनिट का एक अपनापन होता है वो नहीं था किसी के भी बीच। एक को खोया खोया सा कुछ लगा। लोग बहुत गुस्सा हुए मुझ पर, बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि दे वर कन्विंस्ड दैट आई हैड स्क्रीन्ड द स्टोरीज ऑफ लता एंड आशा,
0: विच
1: इज नॉट एट ऑल ट्रू। आशा और लता दोनों बहने, दूसरे को बेहद चाहती है, बेहद प्यार करती है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धी राइवल्स करके एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं तो उनका रवैया क्या होता होगा, है ना? तो ये हमेशा मेरे ध्यान में ये था, तो उसको लेके फिर वो ये बात बनी। और शबाना हैड कम टू मी कि कुछ वुमन बेस्ड फिल्म करो, प्लस चैनल को चाहिए कि तुम फिल्म डायरेक्ट करो वगैरह वगैरह। तो दिस केम अप एंड वी सिलेक्टेड दिस टू डू अ फिल्म ऑन आशा भोसले, बट अ फिक्टिशियस फिल्म, टेकिंग द इंस्पिरेशन ऑफ आशा स्टोरी।
0: जी
1: हाँ, तो ना उसमें कोई उनका जरा भी, लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म द मदर डाइज ऑफ द सिस्टर्स, हालांकि माई मंगेशकर वॉज टोटली देयर टू सी द यू नो सक्सेस ऑफ बोथ हर डॉटर्स राइट टिल द एंड, एंड शी डाइड एट अ वेरी राइप एज। देन इन माई फिल्म द लव स्टोरी ऑफ बोथ द सिस्टर्स हैव द सेम कनेक्शन विद द म्यूजिक डायरेक्टर, विच इज अगेन नॉट ट्रू फॉर आशा एंड लता एज फार एज आई नो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस। इन फैक्ट इन द फिल्म द ओल्डर सिस्टर हरसेल्फ अरुणा ईरानी डाइज, यू नो, इन द फिल्म। सो अगेन एंड लता जी वॉज विथ अस फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो देयर वॉज नथिंग, रियली नथिंग, इट वॉज नॉट एट ऑल
0: जबरदस्ती
1: बायोग्राफिकल फिल्म नहीं थी। हाँ, ये जरूर था कि दोनों प्लेबैक सिंगर्स, दोनों बहने वगैरह वगैरह, और दो किस्से जो एक्चुअल थे वो मैंने जरूर इस्तेमाल किए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग नथिंग नथिंग इज फ्रॉम देयर लाइव्स। बट आई सेड दिस एंड टोल्ड दिस एंड टिल आई वाज ब्लू इन द फेस, पर लोग मानने को तैयार ही नहीं है। दे आर कन्विंस कि नहीं, ये तुमने ओके बाबा बनाई तो बनाई।
0: पर अब राकी साहब को कैसे राजी किया?
1: वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, झट से मान गए, बहुत माने। He gave good music, but I had 4 music directors.
0: जी, पहली बार ऐसा हुआ?
1: Yeah, क्योंकि ये फिल्म ही प्लेबैक सिंगर्स की थी, तो मैंने कहा लाजमी है कि अलग अलग ये हो ना म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक ही का कितना भी चाहे वो वैरायटी लाने की कोशिश करे, इट विल मेक अ डिफरेंस इफ यू हैव 4 डिफरेंट पीपल। सो वी हैड राजकमल, वी हैड यशवंत देव, जाकिर हिमसेल्फ एंड भूपेन हजारिका,
0: जी,
1: 4 पीपल। एंड अगेन द सैड स्टोरी ऑफ साज वॉज दैट बाय द टाइम इट एक्चुअली प्लस चैनल हैड स्टार्टेड दिस वेरी एक्साइटिंग आइडिया दैट दे गॉट टूगेदर 8 सो कॉल्ड गुड फिल्म डायरेक्टर्स, पैरेलल सिनेमा डायरेक्टर्स, नॉट द कमर्शियल यूजुअल पीपल, हाँ, उनसे एक एक फिल्म बनवाई, ऐसे उनका इरादा था और उस हिसाब से किया। बट आई वॉज थ्रू आउट बिजी एंड आई वॉज ओनली फ्री एट द एंड ऑफ दिस चेन, एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज एट द एंड। तब तक बासु चैटर्जी हुए, अरुणा राजे हुई, सुधीर मिश्रा हुए, और भी ऐसे 7-8 लोग हुए, एंड एवरी फिल्म फ्लॉप्ड। एक भी फिल्म 2-3 दिन से ऊपर नहीं हुई, दे ऑल फ्लॉप्ड आई थिंक, एंड विद द रिजल्ट दैट थिएटर्स took out proclamation saying that Plus Channel will not get any theatre to show any film because they have not paid their dues. So, Saaz didn't have a theatre.
0: अरे अरे अरे.
1: Television पे दिखाई.
0: जी जी जी.
1: तो ऐसा ऐसा हुआ. So bad luck all the way. So it's not been a जो एक happy ये होता है ना experience. So unfortunately, Saaz was not a happy experience for me.
0: जी. थोड़ा सा पीछे चलते हैं. यहाँ कुछ चीजें जो हैं उनका जिक्र मैं जरूरी तौर पर करना चाहता हूँ. एक तो ये लाल अडवाणी की प्रेरणा जो एक तथ्य आया, लेकिन इस फिल्म के लिए मूल रूप से जिन लोगों का आपने चुनाव किया था, मतलब यहाँ संजीव कुमार या फिर वो अमोल पालेकर वाला क्या किस्सा है, वो सब मैं जानना चाहता
1: हूँ. अभी वो क्या है, मैंने कहा ना कि बहुत लंबा किस्सा है
0: जी,
1: तो
0: थोड़ा थोड़ा टच करते हुए आगे बढ़ते हैं.
1: अच्छा, तो जब ये फिल्म लिखी मैंने पटकथा, तो प्रोड्यूसर तो चाहिए ही। फिर
0: जी
1: मैंने कहा प्रोड्यूसर से पहले एक्टर्स तय करते हैं, और एक्टर सोचूं तो अमोल मेरा अच्छा दोस्त था,
0: जी
1: मेरे घर दिल्ली में, मतलब रह भी चुका था आके। मैंने अमोल का टेलीविजन में इंटरव्यू करवाया था, तब वो बिल्कुल ही उभरता सितारा था, मतलब उभर गया था। हाँ, तो मैंने कहा अमोल तो है ही, अपना दोस्त है और वो बढ़िया ये रोल करेगा। फिर मैंने फोन किया अमोल को कि अमोल ऐसा ऐसा है, तब अमोल ने कहा अभी देखो सही मैं तो बहुत बिजी हूँ, तुम समझ सकती हो। मैंने कहा हाँ वो तो जाहिर है, लेकिन वो कहा कि शाम को आज ही मुझे अवार्ड मिलने वाला है, फिल्म मिरर करके एक पत्रिका थी, तो उनका मुझे अवार्ड मिलने वाला है, पार्टी है। मैंने कहा इत्तेफाक से मुझे भी इस पार्टी में बुलाया है, तो वहां ले आओ स्क्रिप्ट। मैंने कहा ठीक है, मन में कहा कि पार्टी में स्क्रिप्ट देना, लेकिन खैर कह रहे हैं तो क्यों नहीं। तो आई वेंट विद द स्क्रिप्ट, और पूरी शाम फिर मुझे ये एक बहुत मजे का ये रहा कि मैं अमोल को स्क्रिप्ट देने जाऊं और वो कुछ उसी वक्त अरे हाँ हाँ आया आया करके किसी और को दूर देख के वो इशारा करके एकदम से निकल जाता था। ऐसे 5-6 दफे हुआ, और मेरे साथ तब एस एन मूर्ति भी थे, वो हम साथ साथ घूम रहे थे पार्टी। तो फिर मूर्ति साहब ने मुझे कहा कि सही मुझे लगता है वो तुम्हें टाल रहा है, और तब मैं एकदम ऐसे बुत जैसे खड़ी रही। और मैंने कहा हाँ ये तो है ही, और मैं इतनी बेवकूफ कि मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये मुझे टाल रहा है, मुझे ये कर रहा है। और क्योंकि ये कैसे मुमकिन है, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मेरे यहाँ रह के गया है, ये वगैरह वगैरह, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन हुआ। तो फिर मैंने अमोल का ये छोड़ दिया, और तब तक अलकनंदा समर्थ करके एक बहुत बढ़िया मेरी एक दोस्त बन गई। अलकनंदा वॉज अ फैंटेस्टिक एक्ट्रेस, जो सत्यदेव दुबे के साथ बहुत काम कर चुकी थी, अलकाजी साहब की वो नंबर 1 हीरोइन थी, और अलकनंदा ने बहुत ही अच्छे अच्छे रोल्स किए थे। वो लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में सीखी थी, पढ़ी थी, तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी। और उसकी मौसेरी या कोई बहन थी तनुजा, ये तुम इत्तेफाक जरूर कह सकते हो, क्योंकि जब मैंने लिखा ना पटकथा, जब लिखी तब मेरे कैरेक्टर्स आते हैं सामने, है वो हवा में नहीं लिखा जाता,
0: जी
1: लेकिन कोई ठोस नजर के सामने होता है। वैसे संजीव कुमार और तनुजा ये मेरे सामने थे दोनों, और वो बोलते जाते और वो संवाद मिलते, तो तनुजा, और तो मैंने कहा ये तो कमाल है तनुजा, तुम कह क्या रही हो। कहते हाँ मेरी बहन है, लवली पर्सन, जरूर मिलो उसको वगैरह वगैरह। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तनुजा के साथ मैं मिली, और तनु मुझे संजीव कुमार के पास ले गई, और संजीव कुमार का बिल्कुल ही मन नहीं था सुनने को, लेकिन तनुजा ने किसी तरह उनको चुप करवा के सुनवा ही दिया, और फिर वो उनको बहुत पसंद आई कहानी।
0: लेकिन वो शेव बना रहे थे।
1: अच्छा, तो जब हम पहुंचे तो बिल्कुल ही ऐसे जाहिर हो रहा था कि उनको जरा भी खुशी नहीं हुई है, और तनुजा ने बहुत जबरदस्ती से उनको ये पकड़ा है। तो खैर उन्होंने कहा कि देखो अपॉइंटमेंट है और मैं सिर्फ आपको 20 मिनट दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें। और फिर उन्होंने कहा कि देखो मैं दाढ़ी करते करते सुनूं तो आपको एतराज तो नहीं। अब फिर वही बात, अब मैं कैसे कहूं कि हाँ हाँ मुझे इतराज है। मैंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, आप दाढ़ी बनाते जाइए, मैं पढ़ते। तो खैर मैं पढ़ने लगी, और वो अपना साबुन लगा रहे हैं, सुन रहे हैं, और धीरे धीरे क्या, मैं अच्छा पढ़ती हूँ यूनुस, इसमें कोई मॉडेस्टी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बचपन से ही आपको बताया था नाना के साथ माँ के साथ मैं पढ़ती रही।
0: ओरेटरी वाला
1: फिर
0: सारा
1: आकाशवाणी पुणे की एक सीख थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की सीख थी, तो मैं अच्छा पढ़ती थी। बहरहाल तो वो मैं पढ़ने लगी, और धीरे धीरे उनका दाढ़ी का ब्रश का हाथ रुकता गया, धीरे धीरे धीरे नीचे आ गया हाथ, और अब बॉडी लैंग्वेज तो अपन लोग इस माध्यम में है तो समझ ही लेते। मैंने मन में कहा कि अच्छा आई हैव कॉट द फिश नाउ। तो फिर सुनते सुनते सुनते फिर वो आगे झुक के सुनने लगे, एवरी साइन की जो जिससे जाहिर हो रहा था कि वो बिल्कुल उसमें आ। तो और 20 मिनट हुए और मैं रुक गई, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ पढ़िए। मैंने कहा नहीं 20 मिनट तो हो गए। इसे नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो अब खत्म करते हैं। मैंने कहा नहीं अब मुझे कहीं जाना है, मुझे भी एक अपॉइंटमेंट है। और तनुजा मुझे आंखें फाड़ के देखे कि ये पागल तो नहीं होगी, इतना अच्छा मौका मिला और ये क्या कह रही है कि मेरा अपॉइंटमेंट है वगैरह वगैरह। लेकिन मन में मैं कुछ नाराज सी हो गई थी उनके बर्ताव से, और ये भी मुझे समझ में आया था कि उनको अच्छा लग रहा है जो भी कुछ सुना। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम स्क्रिप्ट छोड़ के जाओगे क्या। मैंने कहा जरूर। तो स्क्रिप्ट फिर छोड़ के गए, 2 दिन बाद तनु का फोन आया कि ही हैज लव्ड द स्क्रिप्ट, और वो जरूर चाहते हैं करना, और फिर मिलते हैं, फिर हम मिल गए, और उसके बाद फिर इतने दरवाजे खटखटाए, बीआर चोपड़ा और राजश्री प्रोडक्शंस और जीपी सिप्पी वगैरह वगैरह तब के जो जो, लेकिन कहीं बात कुछ नहीं बनी। फिर बाशु भट्टाचार्य से मुलाकात हुई और बाशु ने कहा कि मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ, और तब फिर प्रोड्यूसर मिल गया। तो फिर मैं इनके पास जब गई संजीव कुमार को मिलने, उन्होंने कहा था कि हाँ जब तुझे प्रोड्यूसर मिले तो मैं अपना टाइम निकाल के जैसा भी हो, कुछ भी मेरा चल रहा हो काम, मैं तुम्हें डेट्स दे दूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। लेकिन एकदम से उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और इसकी वजह ये थी कि बाशु भट्टाचार्य के साथ पहला उनका जो था अनुभव, उन्होंने फिल्म जो बनाई थी वहाँ उनको बहुत बुरा ये उनका ये रहा एक्सपीरियंस। तो उन्होंने जब सुना कि बाशु इसका प्रोड्यूसर है तो वो हट गए, और जैसे वो हट गए तो किसी ने मुझे बताया कि नसीर को क्यों नहीं तुम पूछती हो, तो नसीर तो स्कूल ऑफ ड्रामा के थे, तो नसीर से जब मिले, नसीर ने बहुत खुशी खुशी स्क्रिप्ट पढ़ा, ही लव द स्क्रिप्ट, एंड देन शबाना नेम, बिकॉज तनु एंड नसीर वुड नॉट मेड अ गुड कपल यू नो। तो फिर शबाना को अप्रोच किया और शबाना वॉज थ्रिल्ड टू बेस्ट, और फिर शबाना और नसीर तय हो।
0: क्या बात है, शबाना और नसीर तय हो गए। नसीर और शबाना का जब जिक्र हुआ तो मेरे जहन में एक बात ये आती है कि कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ आपने दो दो फिल्में की हैं, चाहे नसीर हो, शबाना हो, दीप्सी हो और फारूक शेख। मेरे ख्याल से ये चार लोग तो मुख्य रूप से हैं। आपके डायरेक्शन के अम्ब्रेला के नीचे ये कलाकार दो दो बार आते हैं, जाहिर है कि उनसे एक खास आत्मीय रिश्ता आपका नजर आता है। तो इन चारों से जुड़ी कुछ कुछ बातें हम छोटी छोटी करते हुए आगे चलते हैं। मुझे यहाँ खासतौर पर जो मैं नसीर का जिक्र कर रहा हूँ,
1: एक और भी कलाकार रह गया इसमें, ओमपुरी।
0: ओमपुरी जी जी बिल्कुल, तो ये पांच हो गए। नसीर का जिक्र क्यों, क्योंकि एक बहुत बड़ी मजेदार घटना है जब उन्होंने अपनी बायोग्राफी मराठी में अनुवादित करने के लिए आपको अप्रोच किया, तो वो ड्रामा के डायलॉग में बात हुई थी।
1: ड्रामा के नहीं, वो नॉवेल,
0: नॉवेल के डायलॉग में बात हुई थी,
1: और चार्ल्स डिकेंस जैसा नॉवेलिस्ट। हाँ, और नसीर, तो नसीर की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, वो एक महान कलाकार तो है ही, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, विच इज सो रेयर इन आवर इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली। कोई ज्यादा ये अच्छे मतलब क्लासिक्स पढ़ा हो या कुछ जानकारी जिन्हें हो लिटरेचर के बारे में, ऐसे कम ही नजर आते हैं लोग, लेकिन नसीर ऐसा था जिसकी बहुत ही जानकारी फैंटास्टिक थी। और इसका श्रेय मैं नसीर को नहीं है जो मुझे पूछा ट्रांसलेशन के लिए, बल्कि रत्ना को है। नसीर की बीवी रत्ना ने नसीर को बताया कि सई को क्यों नहीं पूछते हो, सई विल डू अ वेरी गुड जॉब, एक तो शी विल अंडरस्टैंड तुमने क्या लिखा है, और तुम्हारे बिल्कुल जो बारीकियां और जो उसमें से जो सटल चीजें हैं वो समझ पाएगी, तो सही को पूछ लो। नसीर को अच्छा लगा सुझाव, और फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं कब आऊं, तुम कब फारिग हो, और मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है नहीं बताया, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैंने कहा नसीर को मुझसे क्या बात करनी है, मैंने कहा कभी भी आओ फलाना, वो तय हो गया। तो फिर वो आ गए, नसीर आ गए, और उन्होंने कहा ऐसी मेरी आत्म कहानी है और मैं चाहता हूँ कि इसका मराठी तुम करो। तो मैंने कहा मुझे कुछ वक्त दे दो और मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, तो फिर कहते मिसाल के तौर पर मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ, और बदमाश इतना नसीर की वो चैप्टर स्पर्श के बारे में उन्होंने जो लिखा था वो चैप्टर नेचुरली वो ले आए, जिसमें मेरी तारीफ वगैरह थी। तो उसका ये एकदम जो चाहते थे वो उसका हो गया इफेक्ट, और मैंने सोचा कि हाँ ये तो करना ही है, दिस इज रियली अ मेजर कॉम्प्लीमेंट। मोटी किताब थी, हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो थोड़ा सा मैं डर गई थी क्योंकि मेरे और काम भी, एंड देन वन डे, एंड देन वन डे। लेकिन फिर मैंने उनको एक मैसेज भेजा
0: जी, हाँ? जी,
1: और मैसेज था कि वो डेविड कॉपरफील्ड में कैरेक्टर है, गाड़ी जो चलाता है, हाँ? उसका नाम है बार्किस,
0: बार्किस
1: बार्किस, और एक मुटल्लो औरत मेड उस घर में काम करने वाली, खूब मोटी, और वो सदियों से दोनों वो हैं, और वो दोनों का कुछ इश्क तो नहीं कह सकते लेकिन एक दूसरे को चाहते हैं दूरी से थोड़ा सा, और पेगटी बिचारी चाहती है कि ये कभी ना कभी तो पूछे मुझे शादी के लिए। तो लेकिन बारकेस बड़ा घुन्ना आदमी, वो कुछ बात बात नहीं करता,
0: चिकनी
1: चिकनी
0: चुपड़ी।
1: चुपड़ी। हाँ, लेकिन एक दिन फिर ऐसा आता है कि वो सिर्फ इतना ही कहता है कि बारकेस इज विलिंग, मतलब
0: वाओ।
1: बारकेस राजी है। राजी किस लिए? शादी के लिए। और तब पेगटी जो खुश हो जाती है, इतनी खुशी से वो फूली नहीं समाती। तो मैंने सिर्फ नसीर को ये एक सेंटेंस भेजा, बारकेस इज विलिंग,
0: वाओ।
1: और मुझे मालूम था कि ये तो डेफिनेटली उसको मालूम है 100% कि ये बारकेस क्या बला है, क्या है।
0: हाँ
1: हाँ, तो
0: हाँ
1: फिर फट से नसीर का जवाब आया, पेगटी इज डिलाइटेड।
0: क्या बात है, इसको कहते हैं
1: नहले
0: नहले पे दहला।
1: पे दहला, बिल्कुल बिल्कुल। तो
0: जी
1: फिर काम शुरू हुआ, एंड ही वॉज थ्रिल्ड विद द ट्रांसलेशन, एंड इट वन एन अवार्ड साहित्य
0: यस,
1: अकादमी का।
0: बिल्कुल।
1: हाँ,
0: और नसीर ने काफी तैयारी की थी स्पर्श के लिए।
1: अरे बाबा, काफी नहीं, कुछ जरूरत से ज्यादा कहो।
0: जी
1: उसका किस्सा मुझे सुनाने दो
0: जी
1: कि शूटिंग जाने से पहले नसीर को ये तो पता चला कि ये मेरी जो कहानी है, ये इसका इंस्पिरेशन अजय मित्तल है। हाँ, उनसे मुझे ये इंस्पिरेशन हुआ, उनका पूरा काम देख के। उन्होंने कहा, नसीर ने, कि सही, मैं चाहता हूँ कि मेरे रोल के लिए बहुत मदद होगी कि एक तुम लोग आओगे उसके पहले मैं एक 8-10 दिन जाके थोड़ा मित्तल साहब के इर्द गिर्द रहूंगा, उनको देखता जाऊंगा और परेशान नहीं करूंगा, उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन उनका मैं देखना चाहता हूँ रवैया और ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ उनसे, ऑब्वियसली आई कांट से कि हाँ जाओ, आई हैव टू आस्क हिम। तो मैंने फिर मित्तल साहब से पूछा, और मित्तल साहब वॉज वेरी फ्लैटर्ड नेचुरली कि एक इतना अच्छा इंपॉर्टेंट स्टार अपने को स्टडी करना चाहता है। उन्होंने कहा हाँ, अरे जरूर, ये भी पूछने की बात है वगैरह वगैरह। तो फिर नसीर साहब पहुंचे, और उनका हमारे पहले ही पहुंचे, फिर हम लोग सब यूनिट, ये वो कैमरामैन फलान ढिमका, सब हम लोग शूटिंग के पहले 5-6 दिन पहुंच गए। और जैसे ही हम ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में पहुंचे, तो गेट के पास ही मित्तल साहब भागे भागे भागे आए, सही जी प्लीज सुनिए सुनिए। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा परेशान है, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि प्लीज अपने हीरो को जरा हटा दो, अब ऐसी नौबत आई है, वो इतना मेरे पीछे पीछे पीछे, मैं क्लास जाऊं तो नसीर पीछे है, मैं प्रार्थना ले लूं बच्चों की, नसीर साथ में खड़े हैं, मैं बच्चों का खेल देखूं तो नसीर मेरे साथ हैं, खाने पे जाऊं तो नसीर मेरे टेबल पे बैठे हैं। इसे अब ऐसा वक्त आ गया कि मैं बाथरूम भी नहीं जा सकता। मैं बहुत डर गया हूँ, प्लीज आप अपने हीरो को जरा सा थाम लीजिए। फिर मैंने नसीर को कहा कि नसीर अब बस भी हुआ, बहुत हो कर रहा है। ऐसा नहीं, नहीं हो गया हो गया। मैंने कहा बिल्कुल हट जा, डोंट डिस्टर्ब हिम ना। तो और फिर जो नसीर ने किया है, मैं क्या उसकी तारीफ करूँ, वो तो पर्दे पे है, सबने देखा है, उनको अवार्ड भी मिला नसीर को, बेस्ट एक्टर
0: नेशनल
1: अवार्ड,
0: अवार्ड।
1: नेशनल अवार्ड मिला, और क्या कहना है, लेकिन बेहतरीन। और हाँ, एक मजे की बात ये, जब नेशनल अवार्ड जाहिर हुआ, तब नसीर बंगलोर में थे किसी और शूटिंग के लिए, और उस फिल्म में और कौन मौजूद थे? संजीव कुमार। तो जैसे ये सबने कहा, अरे नसीर तुमको अवार्ड मिला, वाह वाह वाह वाह, तो संजीव कुमार ने वेरी स्वीटली ही सर, अरे ये तो पार्टी बनती है और पार्टी मैं दे दूंगा। बड़े जिंदा दिल थे, तो संजीव कुमार ने पार्टी बड़ी डिक्लेयर की, नसीर को अवार्ड मिला। देन ही सर कि नसीर क्या आखिर क्या ये रोल किया क्या तुमने, ऐसी क्या तोप डाली? तो नसीर ने फिर बताया कि ऐसा ऐसा अंदर, फिर वो चुप हो गए। अरे शायद ये रोल मैं करने वाला था, इसे मुझे भी शायद अवार्ड मिल ही जाता। बट दैट वाज अ वेरी
0: जिंदगी
1: स्वीट।
0: की ना

0: गीता का कोई मुकाबला नहीं है,
1: जब बताइए जरा कितना ये सब दाद किया था। ओ नहीं, इसलिए ये स्पर्श जो है ना मेरे जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन के रह गई है कि मैं कह नहीं सकती हूँ। इट्स वंडरफुल।
0: तीन अवार्ड्स मिले थे
1: जी, एक पटकथा के लिए मेरी अपनी पटकथा, एक बेस्ट हिंदी फिल्म और एक बेस्ट नेशनल अवार्ड एक्टर का।
0: बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड बासु ले गए।
1: वो प्रोड्यूसर थे बाबा।
0: एक अमृता प्रीतम का कनेक्शन है,
1: हाँ
0: वो बताइए।
1: वो वहाँ बासु का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गजब का था, बल्कि मेन वजह ये है कि मैं जो इतनी फिदा हो गई इस कैरेक्टर पे बासु भट्टाचार्य, इट वॉज सच अ डिलाइट। इतना बोलते वक्त मतलब कहीं मेरे मन में अभी भी एक छोटी सी जगह अच्छी है बासु के लिए।
0: क्या बात है।
1: यस, एंड ही हैड अ टेररिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर। पहले जब मैंने उनका भाषण सुना, वो तब एक थे फिल्म हिस्टोरियन जिनका नाम अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदी फिल्म्स पर उन्होंने कुछ मोटी सी किताब लिखी और बासु के हाथ से लॉन्च हुई किताब, फिरोज रंगूनवाला।
0: जी हाँ,
1: फिरोज रंगूनवाला की किताब। तो बासु बात कर रहे थे और मैं आई गॉन टू हियर दैट फॉर द लॉन्च आई वाज इनवाइटेड। तो बासु ने कहा कि लोग कहते हैं कि स्टार वैल्यू हो तो फिल्म चलेगी खूब, अच्छे स्टार है। कहता ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने फिल्म बनाई शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना, और दोनों उस वक्त अपने अपने फील्ड में चोटी पे थे। महिलाओं में शर्मिला के साथ में कोई नहीं था और इधर राजेश खन्ना तो टॉप था ही था, और दोनों को लेके कहता है मेरी फ्लॉप वैल्यू इतनी महान थी कि मैंने फ्लॉप करके दिखाई फिल्म। कि ये दोनों को लेकर भी, तो ये बहुत गलत है कि स्टार हो तो, इसलिए बासु मुझे लगा कि ये बिल्कुल फैंटास्टिक बंदा है, अपना खुद का मजाक उड़ा सकता है जो आदमी, मुझे बहुत पसंद है। और फिर हमारी दोस्ती बन गई। अमृता प्रीतम की उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, she was a very good friend of Basu's। और हमारे फिल्म को unfortunately कहो, क्योंकि वो सारे पैसे मैंने बासु को दिए, लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बकुल पटेल, उनकी मदद से, मेहरबानी से, और विजय मर्चेंट जैसे लोगों की मदद से हमें बहुत अच्छे अच्छे ये फंडिंग मिला। हाँ, और वो सब मैंने चेक बासु को दे दिया जो उन्होंने गृह प्रवेश में डाल दिया अपनी दूसरी फिल्म। एनीवे, लेकिन वो प्रोडक्शन के लिए हमें उन्होंने कहा कि अमृता प्रीतम करेंगी इसका हिसाब किताब ये सब, और हमारा जो मैनेजर था सुदेश स्याल, दोस्त ही था मेरा, सुदेश को कहो कि जैसा जैसा खत्म होगा, जब तुमको नया वो चाहिए होगा अमाउंट, तो अमृता जी को पहला हिसाब किताब देना, उनको बताना कि किस लिए चाहिए आगे का, और फिर उनसे ये ले लेना अगला। तो फिर वैसा ही हमने किया। फिर बासु कहता था कि देखो, एक बढ़िया बेहतरीन कवियत्री को तुमने, तुम्हारी फिल्म के लिए बिचारी अकाउंटेंट बन गई। सेंस ऑफ ह्यूमर तो गजब का था ही बासु का।
0: यहाँ मुझे लगता है तो अनुभव का गाना सुन लेंगे।
1: हाँ हाँ, अरे वो तो गाना बहुत ही सुन, वो मुझे जान कहो
0: मेरी जान मुझे जान कहो,
1: क्या बात है, कनू रॉय।
0: हाँ,
1: अरे वो तो इतना गाना सुंदर है। जी जरूर जरूर।
0: क्या बात।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी यादों।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagaur@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagaur@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

चोटियां रो पड़ी देखकर वो मंजर, जब सीने पर खाए वीरों ने खंजर। माइनस डिग्री की उस कड़कती ठंड में लहू उबल रहा था हर धड़ प्रचंड में। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं युवाणी, मैं हूँ कंचन रोशन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात से, कारगिल विजय दिवस। जी हाँ दोस्तों, वो हमारे अमर शहीद जिन्हें हम निश्चित रूप से आज के दिन पुष्प सुमन अर्पित करते हैं। दोस्तों, कारगिल विजय दिवस केवल एक तारीख ही नहीं, बल्कि उन 527 अमर वीरों के अदम्य साहस, सर्वोच्च बलिदान और आंसुओं की वह दास्तान है जो हर भारतीय के दिल को झकझोर देती है। 26 जुलाई 1999 को हमारे जवानों ने माइनस तापमान, बर्फीली चोटियों पर तिरंगा लहराकर दुश्मनों को खदेड़ा था। फ्रेंड्स, द्रास और कारगिल की बर्फीली ऊंचाइयों पर जब सांसें जमती थी, तब हमारे जवान विक्ट्री साइन के साथ आगे बढ़ रहे थे। विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया जैसे वीरों ने हंसते हंसते अपनी जान देश पर कुर्बान कर दी, पर मां भारती के मस्तक को झुकने नहीं दिया। फ्रेंड्स, हम अच्छे से जानते हैं कि अमर हो गए वो शहीद जिन्होंने जीत दिलाई। जीत के पीछे उन माताओं की सुनी गोद और उन पत्नियों की सुनी मांगे हैं जिनका सिंदूर देश के नाम हो गया। आज हम सुरक्षित सांस लेते हैं तो उन रणबांकुरों के खून की एक एक बूंद की बदौलत। जी हाँ दोस्तों, निश्चित रूप से हमें उनके प्रति गौरवान्वित होने के साथ साथ हमेशा इस प्रकार का नज़रिया, इस प्रकार का सम्मान, इस प्रकार का आदर्श रखना होगा और आने वाली पीढ़ियों को भी इसी प्रकार के आदर्श और प्रेरणा के रूप में आगे बढ़ाना होगा। यहाँ हम सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

वह करगिल की बर्फीली पावन माटी चिल्ला उठी थी जब लहू से सनी घाटी। एक तरफ था दुश्मन घात लगाए बैठा, एक तरफ था भारतीय कफन सजाए बैठा। विक्रम सौरभ ने जो कसम उठाई थी माँ भारती की लाज उन्होंने बचाई थी। तिरंगा तो लहराया उस ऊंची चोटी पर, परमातम छा गया कई घरों की रोटी पर। जी हाँ दोस्तों, कारगिल युद्ध में हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की एक ऐसी गाथा लिखी जो आज भी हर एक आंख को नम कर देती है। इस युद्ध के कुछ ऐसे भावुक पहलू जो इसके दर्द और गौरव को बयां करते हैं हम अच्छे से जानते भी हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, उन्होंने देश के लिए मुस्कुराते हुए अपनी जान दे दी। उन्होंने इतना जज्बा उनकी आखिरी शब्दों में झलकता था कि अगर हम उस सारे शब्दों को सुने और महसूस करें तो निश्चित रूप से हमारे रोम रोम पुलकित हो उठे। मेजर पद्मपाणि आचार्य हो या कैप्टन विजयंत थापर, मात्र 22 वर्ष की आयु में शहीद होने वाले इस वीर ने अपनी आखिरी खत में लिखा था, अगर मैं दोबारा इंसान बना तो फिर से सेना में शामिल होकर देश के लिए लड़ूंगा। इतना जज्बा, इतना समर्पण देश के लिए उन वीरों में था। उन वीर माताओं का दर्द असहनीय है जिन्होंने अपने बेटों को खो दिया, लेकिन उनका ये गर्व आज भी अमर है कि उनके लाल ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए थे। जी हाँ दोस्तों, उन्हें हम सत्सत नमन वंदन करते हैं। अब हम यहाँ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला सॉन्ग।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले?
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़ी गई।
2: जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: दोस्तों, भारतीय संस्कृति और आधुनिक जीवन शैली के बीच संतुलन का अर्थ है प्राचीन जो नैतिक मूल्य हैं, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, सह अस्तित्व, तथा जो आज की वैज्ञानिक सोच और तकनीकी प्रगति है उसको सही तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ना। ये संतुलन परंपराओं की मजबूत जड़ों को खोए बिना आधुनिकता के लाभ अपनाने में मदद करता है, जो हम सब के लिए बहुत ही जरूरी भी है और जिसका द्वंद हमें हर दिन सहन करना होता है, या हम यूँ कहें कि उसका आमना सामना करना होता है। हर एक व्यक्ति, हर एज ग्रुप का व्यक्ति, नागरिक, उसे इन सब द्वंद्वों से गुजरना होता है, क्योंकि जिस परिवेश में हम रह रहे हैं वहाँ हम ना तो संस्कृति को छोड़ सकते हैं और ना ही जो वैज्ञानिक सोच है उसको तिरस्कृत करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, संतुलन किस प्रकार बनाया जा सकता है? पूजा पाठ व संस्कारों के साथ हम डिजिटल उपकरणों का सही प्रयोग करें। भागदौड़ भरी जिंदगी में भी बुजुर्गों का सम्मान और परिवार के लिए समय निकालें। फास्ट फूड के बीच पारंपरिक और पौष्टिक घरेलू भोजन को अपनाएं। पुरानी रूढ़ियों को छोड़कर तार्किक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और अपनी माटी से भी जुड़े रहें, अपनी जमीन को ना छोड़ें।

इस प्रकार के हमारे छोटे छोटे प्रयास निश्चित रूप से हमें इन द्वंद्वों से निकलने में मदद करेंगे। आज के एकल परिवारों में भी माता पिता और बुजुर्गों के साथ नियमित संपर्क रखना, संकट के समय एक दूसरे का संबल बनना निश्चित रूप से एक समझदारी भरा एक बीच का रास्ता कहा जा सकता है। बच्चों को आधुनिक शिक्षा और निर्णय लेने की आज़ादी देना, साथ ही उन्हें बड़ों का आदर, विनम्रता और त्योहारों का महत्व भी सिखाना, ताकि इन दोनों के बीच हम संतुलित जीवन जी सकें। आज की व्यस्त डिजिटल दुनिया में भी घर आए मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करने की परंपरा को भी जीवित रखना, निश्चित रूप से इससे हमारा मन मानसिक स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही, साथ ही जो हमारे आसपास का वातावरण है वो भी बहुत ही स्वस्थ रहेगा, अच्छी वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरा रहेगा और हम भी अच्छे से दूसरों को खुश रखने वाले बन सकेंगे। दोस्तों, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से हमारे इस प्रकार की जो तरीका या शैली है उसका असर देखने को मिलेगा। आधुनिक मशीनी कसरत के साथ साथ ध्यान और योग को अपनाना, ये शरीर के मानसिक शांति में भी प्रबल बनेंगे। पिज्जा बर्गर जैसे फास्ट फूड के युग में भी मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स, दाल रोटी और आयुर्वेद के नियमों को प्राथमिकता देना, कॉरपोरेट लाइफ के तनाव को दूर करने के लिए प्राचीन भारतीय दर्शन, गीता के उपदेशों और संगीत कलापस को सहारा बनाते हुए जीवन में आगे बढ़ना निश्चित रूप से एक बीच के रास्ते के रूप में आज वैज्ञानिक और तकनीक की दुनिया में हम यूँ कहें कि सटीक निर्णयों में साबित हो सकता है। दोस्तों, हम यहाँ सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारतीय संस्कृति और आधुनिक जीवन शैली में किस प्रकार से संतुलन स्थापित किया जा सकता है। आधुनिक कॉरपोरेट कल्चर में वर्क एथिक्स और उत्पादकता बढ़ाना, इसके साथ ही ईमानदारी और जो न्यायप्रियता जैसे पारंपरिक मूल्य हैं उनको बनाए रखकर हम संतुलन जीवन बना सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और उपभोक्तावादी संस्कृति के बीच भारतीय आदत बचत यानी कि सेविंग और संतोष की भावना को नहीं भूलना और बनाए रखना अगर हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से ही हम बैलेंसिव बन सकते हैं। अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज के कमजोर वर्ग या परोपकार के यानी कि चैरिटी के लिए निकाला जा सकता है, जो हमारी संस्कृति का मूल भी कहा जा सकता है और आज के समय की हम यूँ कहें कि प्रोग्रेसिव सोच भी। दोस्तों, दूर रहने वाले रिश्तेदारों से वीडियो कॉल पर जुड़ना, सोशल मीडिया का उपयोग रील बनाने के बजाय ज्ञान और संस्कृति फैलाने में करना भी एक काफ़ी हद तक हम यूँ कहें कि डिजिटल पहल हो सकती है। पश्चिमी परिधानों को सुविधा के लिए अपनाना, इसके साथ ही विशेष अवसरों और त्योहारों पर पारंपरिक खादी साड़ी या कुर्ते को गर्व से पहनना भी काफ़ी हद तक जो वेशभूषा है उसको लेकर हमारी अच्छी समझ का परिचय हो सकता है। दोस्तों, हम बात करें संतुलन के फायदे क्या हो सकते हैं, तो व्यक्ति को आधुनिक विज्ञान तकनीक और शिक्षा का लाभ मिलता है जिससे कि आर्थिक समृद्धि आती है। भागदौड़ भरी जो कॉरपोरेट जिंदगी के बीच योग ध्यान और आध्यात्मिक जो मूल्य हैं वो तनाव को कम करते हैं और वास्तव में हम इन सब चीज़ों को महसूस भी कर सकते हैं। पश्चिमी देशों की तरह अकेलापन हावी नहीं होता क्योंकि परिवार और समाज का भावनात्मक सहारा बना रहता है। व्यक्ति आधुनिक दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलता है पर अपनी जो जड़ें हैं, अपना जो मूल है और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है उन्हें भी नहीं खोता, बनाए रखता है। आधुनिक सोच से जातिवाद, लिंग भेद और अंधविश्वास जैसी पुरानी सामाजिक बुराइयाँ खत्म होती है और प्रगतिशील वैज्ञानिक सोच का विकास होता है। अगर हम नुकसान की ओर नज़र डालें तो पश्चिमी

0: सभ्यता की अंधी नकल करने से युवा न तो पूरी तरह आधुनिक बन पाते हैं और न ही अपनी संस्कृति से जुड़ पाते हैं, और वही द्वंद वाली स्थिति यहाँ क्रिएट होती है। एकल परिवारों के बढ़ते चलन से बुजुर्ग अकेले पड़ रहे हैं और उनका मार्गदर्शन नई पीढ़ी को नहीं मिल पा रहा, जो आज हम यूँ कहें कि सबसे बड़ा हमारा लो फॉल्स हो सकता है। पारंपरिक खान पान छोड़कर सिर्फ फास्ट फूड और गतिहीन जीवन शैली अपनाने से मोटापा, शुगर और डिप्रेशन जैसी न जाने अनगिनत बीमारियां हम हर दिन, हम यूँ कहें कि उन्हें बुला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और दिन ब दिन उनके, हम यूँ कहें कि जाल में फंसते जा रहे हैं। साथ ही भौतिकवाद और पैसे की जो अंधी दौड़ है, उसके कारण रिश्तों में स्वार्थ, असंतोष और धैर्य की कमी देखी जा रही है। अंग्रेजी के अत्यधिक प्रभाव के कारण स्थानीय भाषाएं, लोक कलाएं और पारंपरिक ज्ञान जो है वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमें फ़ायदे और नुकसानों को ध्यान में रखते हुए संतुलित जीवन जीने की आवश्यकता है। यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए।
1: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582401168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
0: दोस्तों, घर पर आसानी से किए जाने वाले अगर हम बात करें योगासन और व्यायाम की, तो नाम आता है तारकासन, जो कि सीधे खड़े होकर हाथों को ऊपर खींचना, लंबाई और संतुलन के लिए किया जाने वाला एक आसन है। इसके साथ ही पेट के बल लेटकर छाती को ऊपर उठाना कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी के लिए किया जाने वाला भुजंगासन है। इसके साथ अगर हम बात करें पेट की सांस से जुड़ा प्राणायाम, जिसे हम कपालभाति कहते हैं, जो पेट की चर्बी और ऊर्जा के लिए काफ़ी हद तक फायदेमंद है। दोस्तों, सुबह खाली पेट अभ्यास करना सबसे अच्छा माना जाता है। किसी भी दर्द या स्वास्थ्य समस्या में जबरदस्ती इस प्रकार के आसनों को करना उचित नहीं है। अगर हम बात करें इनकी आवश्यकताएं और फ़ायदों के बारे में, तो वजन घटाने के लिए ये व्यायाम काफ़ी हद तक अच्छे हैं, जिनमें नाम आता है कपालभाति प्राणायाम का। उठक बैठक यानी कि पैरों और कूल्हों की चर्बी कम करने के लिए बेहतरीन माना जाने वाला व्यायाम। इसके साथ ही जंपिंग जैक्स एक बेहतरीन कार्डियो व्यायाम है, जो तेज़ी से कैलोरी को बर्न करता है। इसके साथ ही प्लैंक पेट के कोर हिस्से को मजबूत कर बेली फैट को कम करने वाला एक प्रकार का व्यायाम है। कमर दर्द से राहत के लिए भी भुजंगासन को अच्छा माना जाता है। मार्जरी आसन पीठ की मांसपेशियों को धीरे धीरे स्ट्रेच कर तनाव को कम करने वाला आसन माना जाता है। शशंकासन, जिसे पूरी पीठ और कंधों को आराम देकर दर्द में तुरंत राहत ली जा सकती है। दोस्तों, ये तो बात हुई हमारे इस प्रकार के आसन जो हम घर बैठे कर सकते हैं और काफ़ी हद तक बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब समय हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का। आपकी दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

बालवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को अपनी मंजू दीदी का जय हिंद। और सुनाइए बच्चों, आप कैसे हैं? बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे, क्योंकि आज ही हमारी स्कूल की छुट्टी जो थी, है ना। छुट्टी के दिन तो हम वैसे ही बहुत खुश होते हैं, है ना। तो भाई स्वस्थ और मस्त होना भी चाहिए। इसके साथ ही आपको पता है बच्चों, आज जो हमारा कार्यक्रम होता है बालवाड़ी का, इसका हमें काफ़ी इंतज़ार भी रहता है ना बच्चों, क्योंकि इस दिन हमारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम खूब सारी ढेर सारी बातें करते हैं, नई नई जानकारी लेते हैं, है ना। तो देखो बच्चों, आज हम कुछ इस तरह से बात करेंगे मौसम से संबंधित, है ना। इसके अलावा और भी नई नई जानकारी भी हम लेंगे। बच्चों जैसा कि आप जानते हो, अभी मौसम चल रहा है बारिश का, है ना। और बारिश के मौसम में हमें ये चाहिए कि हम नए नए पेड़ लगाएं, ताकि हमारी प्रकृति जो है वो बहुत ही स्वस्थ रह सके, है ना। और जब प्रकृति स्वस्थ रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हम और प्रकृति दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्रकृति स्वस्थ रहेगी तभी जब हम खूब सारे पेड़ होंगे हमारी प्रकृति में। और आजकल देखा जाता है कि भाई अब तो चलो देखते हैं कि पेड़ बहुत कम मात्रा में काटे जा रहे हैं, बाकी कुछ दौर ऐसा आया था बीच में कि पेड़ों की संख्या कम होती जा रही थी, वन कम हो रहे थे, पेड़ हरे हरे पेड़ काटे जा रहे थे। लेकिन कुछ सालों में जो है लोगों में जागरूकता आई और सरकार भी इसके लिए कई यूँ कहें कि योजनाएँ चला रही है कि नए नए पेड़ जो है हमें लगाने चाहिए, ताकि हमारी प्रकृति शुद्ध रहे, वातावरण शुद्ध रहे। और बच्चों आप जानते हो ना, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं तभी हम जो है सांस ले पाते हैं, और हम जो गैस निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो पेड़ लेते हैं ताकि वो भी अपना जीवन जी सके, है ना बच्चों। तो बस कहने का तात्पर्य ये है कि इस मौसम में जितना हो सके हम पेड़ लगाएं, और उनकी यूँ एक संकल्प लें कि जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तब तक हम इसकी देखरेख करेंगे। कहते हैं ना बच्चों कि एक बच्चे का पालन पोषण करना और एक पेड़ की देखरेख करना, उसे बड़ा करना, दोनों में बराबर सी ही मेहनत होती है, है ना बच्चों। तो हमें बस पेड़ लगाने में और दूसरों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। बच्चों आपको भी स्कूल से तो पौधे मिले ही होंगे ना, क्योंकि अभी बहुत सारी या यूँ कहूँ कि सभी संस्थाओं में ये कार्यक्रम चल रहा है कि हरियालो राजस्थान, या यूँ कहूँ कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम, है ना बच्चों। तो बस यही इसी योजना में, या यूँ कहूँ कि इसी आंदोलन में हमें भी भरपूर अपना सहयोग देना है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, वाकई सही है बच्चों। ये केवल नारा ही नहीं है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। जिस धरती पर रहने वाले हर एक इंसान को समझना चाहिए कि जिस धरती पर हम रह रहे हैं उसे हमें स्वस्थ रखना है, पर्यावरण को शुद्ध रखना है और धरती को हरी भरी करना है। देखिए ना बच्चों, आज की आधुनिक दुनिया में पेड़ों को बचाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि औद्योगिकरण जो है वह बहुत ही बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग देखिए आप, तेजी से बढ़ रहा है। वहाँ पेड़ ही है जो अपना कार्य पूर्णतया ईमानदारी से कर रहे हैं, और पेड़ ही दूसरों के लिए जीते हैं। पेड़ ही क्यों बच्चों, भाई मैं तो यही कहूँगी पूरी प्रकृति

है दूसरों को देती ही देती है, हमें सब कुछ देती है, हमसे लेती कुछ भी नहीं है। पेड़ पे फल लगते हैं तो वो दूसरों के लिए, फूल, ईंधन, पेड़ की हर एक चीज हमारे काम आती है, नदी पानी वो हमारे लिए है ना। तो बस यही कहूंगी, प्रकृति जब हमें बहुत कुछ देती है बच्चों, तो क्यों ना हम भी उनकी केयर करें, उनकी देख रेख करें और प्रकृति को खूबसूरत बनाए रखें, उसकी खूबसूरती को बनाए रखें, है ना बच्चों। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि धरती को स्वस्थ, पर्यावरण को शुद्ध रखना है ना, और पेड़ लगाना है। जितने पेड़ हम अभी इस मौसम में लगा सकते हैं उतने पेड़ हमें लगाना है। अगर हमें लगता है कि भाई हमारे घर के आसपास जमीन भी नहीं है, तो आप अपनी छत के ऊपर गमले में भी छोटे छोटे फूलों के पौधे लगा सकते हैं, या अगर हमारे घर के पीछे की ओर थोड़ी बहुत जमीन कच्ची है तो वहाँ हम पेड़ लगा सकते हैं, है ना बच्चों। क्योंकि एक पेड़ बिना कुछ वापस लिए मानवता की बहुत सालों तक सेवा करता है ना, और हवा को शुद्ध रखता है और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखता है। मिट्टी के कटाव को रोकने का कार्य भी पेड़ ही करते हैं बच्चों। तो पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, है ना। और देखिए भाई जब, और इसके अलावा हम देखते हैं कि भाई पेड़ों को लगाने के लिए या प्रकृति को शुद्ध करने के लिए हर साल लोगों को जागरूक करने के लिए जुलाई माह के आखिरी रविवार को राष्ट्रीय वृक्ष दिवस मनाया जाता है, ताकि सभी लोगों को इसका महत्व समझ में आए। जो देश का सबसे बड़ा एक सामुदायिक वृक्षारोपण कार्यक्रम है, पेड़ लगाने, स्थानीय प्राकृतिक वातावरण की देखभाल करने और महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयासों के बारे में जानने के लिए ये कार्यक्रम रखा जाता है। क्योंकि बच्चों आने वाली जो पीढ़ियां हैं ना, उनके लिए एक हरित और स्वस्थ ग्रह बनाने के इस आंदोलन में जो है लोगों को सचेत किया जाता है कि पेड़ लगाइए, ताकि आगे भी प्रकृति स्वस्थ रहे और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी स्वस्थ रह पाए। बच्चों राष्ट्रीय वृक्ष दिवस जीवन में वृक्षों के महत्व को समर्पित एक जीवंत उत्सव है। ये आयोजन जो है ना पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके लिए हमें कई कदम उठाने होते हैं, है ना, छोटे छोटे कदम हम उठा सकते हैं। जैसे हर व्यक्ति एक पौधा लगाए, हर बच्चा एक पौधा लगाए, है ना, और कहीं जहाँ भी जगह मिले वहाँ पे जिस तरह की अनुकूल वातावरण है वहाँ वैसा, अगर ज़्यादा बड़ी जगह है तो आप बड़े पेड़ लगा सकते हैं, जो छाया भी देंगे, फल भी देंगे, ईंधन भी देंगे, दवाई भी देंगे, है ना, दवाई जिनसे बनती है वो जड़ी बूटियाँ भी देंगे। या यूँ कहें कि नीम का पौधा एक ऐसा है, बहुत ही आसानी से यूँ कहें कि वो उग जाता है। जितना जहाँ जैसा भी हो वहाँ हमें वैसा पौधा लगा देना चाहिए, अगर ज़मीन खाली है तो। इसके अलावा टी पार्टी का आयोजन आप जब करें तो प्रकृति के समीप जाकर ही करें, ताकि प्रकृति का महत्व समझ आ सके। प्रकृति शुद्ध तो हम स्वस्थ, पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और प्रदूषण नियंत्रण रखते हैं, और वन्य जीवों का घर होते हैं पेड़। तो हमारे साथ साथ बच्चों जो जंगली जीव है, पक्षी है, उनको भी अपना घर मिल जाता है, यानी वहाँ वो पेड़ों पर अपना घोंसला बना सकते हैं। तो बच्चों बहुत सारी बातें कर ली हमने आपसे, लेकिन अब चलते हैं मनोरंजन की ओर, सुनते हैं प्यारा सा गीत।

देखिए बच्चों, अभी अपने वाकई सही बात है, बहुत प्यारा सा गीत सुना, और गीत के साथ ही हम वापस आते हैं हमारी चर्चा पर। बच्चों, आज मैं आपको ये एक नई जानकारी देती हूँ कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, कैसे हुआ। जानने की इच्छा होती है ना कितनी बार, तो आज हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों, भाप के इंजन के आविष्कार का जो श्रेय है ना, वो स्कॉटिश जेम्स वोट को जाता है, जिन्होंने 1765 और 1776 के दौरान इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि इससे पहले थॉमस सेवरी, जो 1698 और थॉमस न्यूकॉमन 1712 ने भी शुरुआत की थी इसकी डिज़ाइन की। और भाप का इंजन एक प्रकार का ऊष्मीय इंजन है जो कार्य करने के लिए जल वाष्प का प्रयोग करता है। और भाप के इंजन जो है ना, अधिकांशतः बाह्य दहन इंजन होते हैं, जिसमें रेकाइन चक्र नामक ऊष्मा चक्र काम में लाया जाता है, और कुछ वाष्पयान और सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, और इसके अलावा और भी जो कई यूँ कहें ऊर्जा से संचालित होते हैं। इस तरह से बच्चों, ये भाप का इंजन जो है इसमें अपनी मूर्त रूप में आया। इसके अलावा बच्चों और भी बातचीत करेंगे, फिर से सुनते हैं एक की दूसरा गीत।

और बच्चों इसके साथ ही हम सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। बच्चों कहानी सुनेंगे? मुझे भी कहानी बहुत पसंद आती है। जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग मेरे पास बैठता है या मुझे अवसर मिलता है उनके पास बैठने का, तो मैं उनसे एक कहानी जरूर सुनती हूँ। तो आज मैं भी आपको एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है बच्चों, जैसे को तैसा। ये तो बात सही है बच्चों, टिट फॉर टैट। जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करिए, है ना। देखो एक कहानी के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ कि एक व्यक्ति था और वो उसने बहुत ही वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था बच्चों। तो उसने सोचा कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये एक लोहे का तराजू है, इसको मैं अपने किसी के वहाँ गिरवी रख देता हूँ, जो उससे पैसा मिलेगा उससे मैं बाहर कमाने के लिए जाऊँगा। बच्चों उसने ऐसा ही किया, किसी अपने पहचान वालों के साथ में उसने गिरवी रख दी वहाँ पे तराजू, जो पैसा मिला उसको लेकर वो बाहर कमाने के लिए चला गया। कुछ सालों बाद वो जब वहाँ से कमा के अपने वापस घर लौटा, तो वो वहाँ उसके पास गया कि आप अपने पैसे ले लीजिए और मेरी तराजू दे दीजिए। उसके मन में लालच आ गया था, क्योंकि तराजू बहुत ही अच्छे लोहे की बनी हुई थी, बहुत भारी तराजू थी। तो वो उसके मन में लालच आ गया, तो उसने मना कर दिया कि तराजू जो है चूहों ने खा ली। अब आप सोचिए बच्चों कि चूहे कभी लोहे की तराजू खाते हैं क्या? नहीं खाते ना, लेकिन बस लालच आ गया उसको, तो उसने ये बहाना लेके उसको मना कर दिया। उसके दिमाग में बड़ा यूँ विचार आया कि चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं कुछ दिन बाद समझाऊंगा। उसने क्या कहा बच्चों कि एक बार यूँ अब उसके बेटे के लिए बोला कि मैं नदी पर नहाने जा रहा हूँ और तुम भी अपने बेटे को मेरे साथ नदी पर नहाने के लिए भेज दो, वो भी नहा लेगा। वो सेठ मान गया और उसने अपने बेटे को उसके साथ में भेज दिया, क्योंकि उसने अपना व्यवहार नहीं बदला था। जिसने उधार लिया था उसने तराजू गिरवी रखी थी, उस व्यक्ति ने अपना व्यवहार नहीं बदला था। वो उसके बच्चे को लेके गया, सेठ के बच्चे को, और वहाँ पे उसने क्या किया, एक गुफा के अंदर उसके बच्चे को छुपा दिया और वो वापस आ गया। तो सेठ ने पूछा, भाई मेरा बच्चा भी तेरे साथ नहाने के लिए गया था, वो कहाँ है? तो उसने जवाब दिया कि भाई उसको तो चील उठा कर ले गई। तो उसने बोला कि चील इतने बड़े बच्चे को उठा के कैसे ले जा सकती है? तो उसने बोला कि जब लोहे की तरह जो चूहा खा सकता है, तो क्या बच्चे को चील उठा के नहीं ले जा सकती, है ना। फिर बात इतनी बढ़ गई कि राजा के सामने दोनों पेश हो गए। राजा ने सारी इंक्वायरी करी, तब फिर उसने बताया कि मैंने इस तरह से मेरे मन में लालच आ गया था और मैंने जो इसकी तराजू देने से मना कर दिया ये बहाना लेकर। तभी उसने बोला कि मैंने इनको सबक सिखाने के लिए ही ये सारा जो है योजना बनाई, और उसका बच्चा वहाँ रखा है मैंने, और उसने उसका बच्चा ला के, उसने जब तराजू दी तो उसने भी उसका बच्चा ला के दे दिया। तो इस कहानी से बच्चों हमें सीख मिलती है कि जैसे के साथ में तैसा व्यवहार करो, ताकि अगले आदमी को कुछ समझ में आ जाए कि भाई मेरी कहाँ गलती थी, मैं कैसा हूँ, है ना। तो बच्चों ये हुई कहानी, और कहानी के साथ ही हम आते हैं हमारी चर्चा पर और हम बात करते हैं खिलाड़ी के बारे में। बच्चों आपको पता है ना कि खेलों में हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है और पूरे विश्व में नाम कमा रहा है, है ना। तो जब हम बात करते हैं एक खिलाड़ी की, वो है पीवी सिंधु। बच्चों पीवी सिंधु, इनका पूरा नाम है पुसरेला वेंकट सिंधु। यह एक प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, जिनका जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ। वे ओलंपिक खेलों में लगातार 2 पदक और बैडमिंटन विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इनके पिता

वी रमणा और माता पी विजया दोनों राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हुए हैं। और पुलेला गोपीचंद की सफलता से प्रेरित होकर ही पीवी सिंधु ने 8 वर्ष की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू किया और एक महबूब अली और बाद में पुलेला गोपीचंद की एकेडमी में इन्होंने कड़ा अभ्यास किया। है ना बच्चों, कहते ना चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो वो मेहनत मांगती है। इन्होंने मेहनत करी, लगातार अभ्यास करती रही और काफ़ी दिनों तक वो इस अकेडमी में अपने गांव से, जो उस अकेडमी की काफ़ी दूरी थी जहां वो रहती थी, वहां वो अपने पिता के साथ लगातार जाती थी और पूरी मेहनत करती थी। कहते ना कि मेहनत रंग लाती है, एक दिन वाकई मेहनत रंग लाती है बच्चों। तो इसी मेहनत के द्वारा उन्होंने कई पदक प्राप्त किए, कई सम्मान प्राप्त किए। जैसे बात करते हैं उनके पदक के बारे में बच्चों, तो ओलंपिक पदक रियो 2016 में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया और टोक्यो 2020 में इन्होंने एक कांस्य पदक भी जीता। 2019 में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने जब विश्व चैम्पियनशिप हुई थी, और राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में भी इन्होंने कई पदक प्राप्त किए। 2013 में बच्चों इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2015 में पद्मश्री और 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अभी जो नाम है वो बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, और 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। अब देखिए ना बच्चों, कौन सा ऐसा सम्मान है जो इन्होंने अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया, है ना। अभी छोटी सी उम्र में ही इन्होंने इतने पदक और इतना सम्मान इन्होंने प्राप्त किया और खेल की दुनिया में अपना इन्होंने नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया। तो बस बच्चों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि चाहे आप पढ़ाई में हो, चाहे आप खेल में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप नृत्य में हो, है ना, या म्यूज़िक में हो, जिस क्षेत्र में आपको रुचि है उसी क्षेत्र में आप, यूँ कहूँ कि तन मन लगाकर आप उसमें मेहनत करिए ताकि आप आगे बढ़ सकें, है ना। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अपना खुद का भी ख्याल रखें, क्योंकि अभी मौसम चल रहा है बारिश का, तो जब भी आप बाहर निकलें थोड़ा सा ध्यान रखें, केयर करके आप बाहर निकलें। जहाँ नदी नाले हैं वहाँ आप बिल्कुल भी ना जाएं, पानी से दूर रहें, है ना बच्चों। ये काफ़ी बातचीत हमारी हो चुकी है और इसके अलावा समय समय पर हम आपको बहुत सारी नई नई जानकारी भी देते हैं, है ना। और अब घड़ी की तरफ देखते हैं ना बच्चों, तो घड़ी हमारे इस बालवाड़ी कार्यक्रम को यहीं समाप्ति की ओर इशारा कर रही है। तो समय का महत्व समझते हुए हम हमारे इस कार्यक्रम को बच्चों यहीं समाप्त करते हैं और करते हैं आप सभी से जय हिंद।

बालवाड़ी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है, शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो

0: देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक हैं, देश के अन्य भागों से उनका लगाव निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
0: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: कैच दी रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रही अवैध वसूली में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डी डे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 193 रन का लक्ष्य दिया है। हरारे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 192 रन बनाए। और ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, ये है आकाशवाणी नागौर का चिरमीय चैनल। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज है 26 जुलाई 2026 और आज का दिन है हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का विषय है, गौरवान्वित करने वाला दिन है। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं आज ये दिवस की, आज है कारगिल विजय दिवस और फिल्म संगीत डिपेंड है, आधारित है इसी श्रृंखला के अंदर विजय दिवस के रूप में। श्रोताओं, 24 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है ये दिवस। ऑपरेशन विजय, जो कि हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है,

ये जोश भरी आवाजें थी शंकर महादेवन और साथियों की फिल्म मणिकर्णिका में। प्रसून जोशी के बोलों को संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने। बात कर रहे हैं आज के दिवस की, आज है कारगिल विजय दिवस। केवल दिनांक नहीं, केवल तारीख नहीं, ये है गौरव देने वाला दिन। बात करते हैं बलिदानों की, तो भारतीय वीरों ने अपने जीवन का बलिदान किया और राष्ट्रीय यज्ञ में अपनी आहुति दी देश को बचाने के लिए। हमारे जवानों ने माइनस डिग्री तापमान पर भी बर्फीली चोटियों पर तिरंगा लहराया और दुश्मनों को खदेड़ा। दोस्तों, बात द्रास और करगिल की बर्फीली ऊंचाइयों की है, जहां पर हमेशा तापमान रहता है माइनस में, वहीं पर विक्ट्री साइन की थी हमारे देश के सैनिकों ने।

लीजिए सुनिए उदित नारायण कैलाश खेर, अलका याग्निक और साथियों को फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में। शब्द रचना समीर की, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है आज का दिन। और बात करते हैं ऑपरेशन विजय की। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान घुसपैठियों को खदेड़ कर विजय प्राप्त की थी, और ये जो मिशन था बहुत कामयाब रहा। हम सभी भारतीय लोग हृदय की गहराई से अपने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं। श्रोताओं, आज का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, और ये गौरवशाली दिन हमेशा याद रहेगा। धन्य है भारत भू जहाँ ऐसे वीर हुए जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया।

अभी आप सुन रहे थे शंकर महादेवन, सोनू निगम और साथियों को फिल्म लक्ष्य में। जावेद अख्तर के बोलों को संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। श्रोताओं, FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे विनोद राठौड़ और सीमा मिश्रा के युगल स्वरों में ये देशभक्ति गीत, जिसे लिखा था राजस्थान के प्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल सेठिया ने। श्रोताओं, कार्यक्रम आरटी के स्वर का अब समय यही पर संपन्न होता है। FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 6:28 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात होंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Chiaro.
1: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रही। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी, कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉयड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
2: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
3: ओह लवली, वेल डन,
2: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट,
4: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
3: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
4: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
3: आप कौन?
5: RBI कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ये सही है बेटा।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत राजस्थान सहित देश भर के प्रतिभागियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान कैच द रेन का जिक्र करते हुए इसमें लोगों की भागीदारी को सराहा। करगिल विजय दिवस पर देश प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वीर शहीदों को नमन किया गया। और राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 144 नई बसें शामिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के हीरापुरा टर्मिनल से हरी झंडी दिखाई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम बहुत विशेष है। इसके माध्यम से हमारे देश के युवाओं को सीमावर्ती गांवों की संस्कृति और वहां की चुनौतियों तथा रहन सहन के बारे में जानने का मौका मिलता है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती गांवों में स्थानीय लोगों में देश प्रेम का विशेष जज्बा देखने को मिलता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री से संवाद किया और अपने अनुभव सुनाए। राजस्थान के जालौर से माय भारत वॉलंटियर सुनील कुमार ने भी अपना अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
11: बड़ो आभार व्यक्त कर रहा कि आपने हमारे जरा कितना ही युवा ने सीमावर्ती गांव में जान लो देखन लो खाली चीज महसूस करने का अवसर देना। मैं राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से हिमाचल प्रदेश के धार चांगू उपरेला गांव में गया था और इसका जो अवसर है मुझे माय भारत पोर्टल से मिला। जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो मेरे सीधे मेल आईडी और फोन पे मैसेज आया कि एक विकसित वाइब्रेंट विलेज नाम का प्रोग्राम होने जा रहा है जिससे आप सीमावर्ती गांवों का दौरा कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसमें मेरे लिए और मेरे जैसे अनेक युवाओं के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वहां पे जाए और अपने भारत को गहराई से समझे। दोनों जगह पे एक चीज समान थी, वो अपने देश के प्रति प्रेम का जज्बा, वहाँ के लोगों की बहादुरी जो हम राजस्थान में देखते हैं।
10: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रतिभागियों को भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, सांस्कृतिक विरासत और विकास की आकांक्षाओं से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराता है। साथ ही सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के रणनीतिक महत्व की गहरी समझ को बढ़ावा देता है। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया। ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर आज वीर सैनिकों का स्मरण किया और कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
0: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
10: प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि मॉनसून का समय जल संरक्षण के लिए सर्वोत्तम है। सरकार द्वारा विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कैच द रेन अभियान का जिक्र किया और लोगों द्वारा इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने के प्रयास को सराहनीय बताया।
0: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
10: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। वहीं पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने हस्तकला को प्रोत्साहित कर बुनकरों को सम्मान देने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है, ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है, इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
10: प्रदेश में भी मन की बात कार्यक्रम को लेकर उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सांगानेर में आदिवासी महिलाओं के बीच मन की बात के 136वें एपिसोड को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर मन की बात कार्यक्रम सुना। मौके पर कई जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद, राज्य के अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक सुना गया। ये समाचार आकाशवाणी अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कारगिल विजय दिवस पर आज देश में वीर शहीदों को नमन किया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर सैनिकों को नमन करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प, देशभक्ति, सशक्त लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कारगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। इधर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि कारगिल विजय दिवस केवल सैन्य विजय का स्मरण नहीं बल्कि राष्ट्र की अस्मिता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारतीय सैनिकों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान और अदम्य साहस को नमन करने का पावन अवसर है। श्री बागड़े कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जोधपुर में क्रीड़ा भारती की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर 16 वीर सैनिकों और वीरांगनाओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इन वीर जवानों की शहादत और निष्ठा पर हर भारतीय को गर्व है। इधर जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति पर अमर सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा में कारगिल शौर्य वाटिका में निर्मित स्मारक स्थल पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल उन्हें नया शिक्षा मंत्री बनाया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने नई जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के हीरापुरा बस टर्मिनल से रोडवेज की 144 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए सड़क सुरक्षा अग्रदूत महिलाओं को हेलमेट भी वितरित किए। उन्होंने प्रदेशवासियों से यातायात नियमों का पालन करने और दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की अपील की। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जन कल्याण से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में लगातार सार्वजनिक परिवहन सेवा का विस्तार किया जा रहा है ताकि आमजन को सुविधा हो सके।
12: राजस्थान की जनता को जो हमने वायदा किया था, लगातार उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की दूरियां बहुत हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में सबसे बड़ा प्रदेश, यह लोगों के आवागमन के लिए आवश्यक है कि हमारी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छी रहे। जब से हमारी सरकार बनी है, हमने जनता के हर विषय को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, और ये अभी तीसरा मौका है जो रोडवेज की बसों को हम लगातार संख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
10: कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और सांसद मंजू शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जालौर जिले के सांचौर में आज बस और ट्रक की टक्कर में बस में सवार दो लोगों की मृत्यु हो गई और 12 यात्री घायल हो गए। घायलों को सांचौर के ट्रॉमा सेंटर में उपचार के लिए भेजा गया। ये बस सांचौर से गुजरात जा रही थी। प्रदेश के कई जिलों में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। भीलवाड़ा में आज सुबह से ही हल्की बारिश का दौर जारी रहा। जालौर में भी रुक रुक कर बरसात होती रही। बाड़मेर में आज बारिश का दौर जारी रहा। झुंझुनू जिले में दोपहर बाद कई स्थानों पर बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। राज्य में कई स्थानों पर हो रही बारिश से जलाशयों में पानी की आवक बनी हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भागों में हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने 28 जुलाई से एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक राज्य के अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत राजस्थान सहित देश भर के प्रतिभागियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान कैच द रेन का जिक्र करते हुए इसमें लोगों की भागीदारी को सराहा। कारगिल विजय दिवस पर देश प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वीर शहीदों को नमन किया गया। और राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 144 नई बसें शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के हीरापुरा टर्मिनल से हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं बंशी लाल। आज कारगिल दिवस है। इस मौके पर जिले के पतासर गांव के कारगिल शहीद भीकाराम मूड की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कारगिल के सभी शहीदों की शहादत को नमन करते हुए देश की एकता और अखंडता की शपथ ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों बालोतरा जिले के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। लगभग 79,000 रुपए की लागत से तैयार यह परियोजना राजस्थान की न केवल पहली रिफाइनरी है बल्कि देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। रिफाइनरी का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान की इस धरती से भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस मौके पर श्री मोदी ने रिफाइनरी कंट्रोल रूम के कर्मचारियों से तकनीकी जानकारी ली और रिफाइनरी की महिला कर्मचारियों से बात करके उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। इस रिफाइनरी के उद्घाटन से अब क्षेत्र में नए औद्योगिक विकास और निवेश के द्वार खुलेंगे, साथ ही रिफाइनरी से जुड़े डाउन स्ट्रीम उद्योग लगने से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बीते दिनों जिले में गर्भवती महिलाओं की सघन स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा प्रत्येक गर्भवती महिला को सुरक्षित मातृत्व सेवाएं उपलब्ध कराना था। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए गए इस 5 दिवसीय विशेष अभियान में जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों तथा शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें परामर्श और उपचार उपलब्ध कराया गया। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को सर्वे के दौरान एनीमिक की 100% स्क्रीनिंग करवाने, HPV टीकाकरण 100% करने और जननी सुरक्षा और लाडो प्रोत्साहन योजना के बकाया मामलों का भुगतान करने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्कूलों में HPV टीकाकरण 100% करने को कहा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से भ्रष्टाचार के विरुद्ध विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में ACB कार्यालय बालोतरा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का स्थापना दिवस मनाया गया। आमजन को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर आमजन से अपील की गई कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी वैध कार्य के बदले रिश्वत मांगता है तो उसे रिश्वत नहीं दें और तुरंत इसकी ACB से शिकायत करें। शिकायत मिलने पर ACB द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और आम जन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को लेकर ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर ही समस्याओं का समाधान करते हुए पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। शिविरों में राजस्व, पंचायतीराज, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा और स्वास्थ्य, महिला तथा बाल विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जलदाय, विद्युत तथा शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ मौके पर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले दिनों राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा की ओर से नगर विकास न्यास बालोतरा के सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। रेरा के डिप्टी रजिस्ट्रार पुनीत कपूर ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, रियल एस्टेट निवेश को मानकों के अनुरूप बढ़ावा देना, परियोजनाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाना, विवादों का प्रभावी समाधान तथा परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा कराना था। जिले में देर से आए मानसून की बारिश ने राहत दी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर बना हुआ है। अच्छी बारिश होने से किसानों ने खरीफ की फसलों की बुआई की है। ग्रामीण इलाकों में तालाबों और टाकों में पानी की आवक बढ़ने से पेयजल की समस्या का भी समाधान हो रहा है। इसी के साथ बालोतरा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
14: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेशे सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत राजस्थान समेत देश भर रा प्रतिभागियों साथ बतल करी। प्रधानमंत्री आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण सारू चलाया जा रहा अभियान कैच द रेन रो जिक्र करता इनमें लोगों की भागीदारी ने सराया। कारगिल विजय दिवस माथे देश प्रदेश में न्यारा न्यारा कार्यक्रमों री मार्फत वीर शहीदा ने नमन करी जो और राजस्थान रोडवेज रा बेड़ा में 144 नवी बसा भेड़ी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रा हीरापुरा टर्मिनल नु हरी झंडी दिखाई। समाचार साथ है मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम घणो खास है। इनरी मार्फत देशरा नौजवाना ने सरहदी गांवारी संस्कृति और वठारी चुनौतियां और रहन सहन रा बारा में जानन रो मौको मिले है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसरी मार्फत विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 रा प्रतिभागियां साथ बतल करता है प्रधानमंत्री कहो कि सरहदी गांव में वठारा लोगों में देश प्रेम रो खास जज्बो देखने मिले है। एक कार्यक्रम री मार्फत देश रा सगला राज्यां और केंद्र शासित प्रदेशों री नुमाइंदगी कर रिया 432 नौजवानों साथ प्रधानमंत्री बतल करी और मारा अनुभव सुनिया। राज्य रा जालोर में भारत वॉलेंटियर सुनील कुमार आपरा अनुभव साझा करता प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दियो।
11: घणो घणो आभार व्यक्त करा हा कि आपने मारे जरा कितना युवा ने सीमावर्ती गांव में जानो देखनो खाली चीज रो महसूस करने अवसर दिनो। मैं राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से हिमाचल प्रदेश के धारचांगली उपरेला गांव में गया था और इसका जो अवसर है मुझे माय भारत पोर्टल से मिला। जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो मेरे सीधे मेल आईडी और फोन पे मैसेज आया कि विकसित वाइब्रेंट विलेज नाम का प्रोग्राम होने जा रहा है जिससे आप सीमावर्ती गांवों का दौरा कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसमें मेरे लिए और मेरे जैसे अनेक युवाओं के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वहां पे जाए और अपने भारत को गहराई से समझे। दोनों जगह पे एक चीज समान थी, वो अपने देश के प्रति प्रेम का जज्बा, वहां के लोगों की बहादुरी जो हम राजस्थान में देखते हैं।
14: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रतिभागियों ने भारत रा सरहदी हल्का रा सामाजिक आर्थिक दिखाव सांस्कृतिक विरासत और विकास री आसों सीधा पिछाण करावे है। साथ ही सामुदायिक भागीदारी राष्ट्रीय एकता और सीमाई गांवारा रणनीतिक महत्व री गहरी समझ ने बढ़ावो देवे है। ध्यान जोग है कि ये कार्यक्रम स्वरूप प्रतिभागियों रो चुनाव देश भर में ऑनलाइन क्विज होल्डरी मार्फत करीजियो जिनमें 3,32,000 नौजवाना हिस्सों लियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि भारत रक्षा निर्यात राजनीतिक मदद और दोस्त देशों रा मामला में बरोबर नवी ऊंचाइयां छू रियो है। आज आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कहो कि भारत आपरा तकनीकी भूता ने बरोबर बधारियो है। दुनिया रो भरोसो भारत रा हिफाजती उपकरण और तकनीक माथे बधरियो है। वणा कहो कि लाडला दीतवार ने विक्रम वनरा कामयाब प्रक्षेपणों हर भारतीय रो मान बध्यो है। वो भारत रा निजू हल्का रो पहलो रॉकेट है। प्रधानमंत्री कारगिल विजय दिवस माथे आज वीर सैनिका ने याद करिया और कहो कि वो दिन देशवासियों ने आपरा बहादुर सैनिका री असाधारण ताकत ने याद दिरावे है।
0: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
14: प्रधानमंत्री पानी बचावन रो जिक्रो करता कहो कि मानसून रो बगत जल संरक्षण सानू सब चौखो है। सरकार कान्यो खास अभियान ई चलाए जावे है, वरना कैच द रेन अभियान रो जिक्रो करियो और लोगों री इणमाय बढ़ चढ़ने हिस्सों लेवन री कोशिश ने श्रवण जोग बताया।
0: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
14: प्रधानमंत्री कहो कि कुछ दिन पहला ग्लासगो में शुरू हुआ राष्ट्रमंडल खेला में भेड़ा खिलाड़ियों रो पूरो देश साहस बधारियो है। श्री मोदी गणेश उत्सव रे दौरान सगलाओं पीओपीओ बनी मूर्तियां री ठोड़ माटियों बनी गणेश मूर्ति री पूजा करन री अरज करी। प्रधानमंत्री कहो कि देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनायो जायला। वो दिन देश रा बुनकरा रा हुनर और रचनात्मकता रा सम्मान रो प्रतीक है वना हस्तकला ने बधावो देर बुनकरा ने सम्मान देवन री अरज करी। प्रधानमंत्री 15 अगस्त ने मनाया जाने वाला स्वतंत्र दिवस रा बारा में बात करी और कहो कि ओ दिन हर भारतीय सारू मान रो दिन है।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है, ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है, इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
14: प्रदेश में मन की बात कार्यक्रम में लेर उमा निजर आयो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर और सांगानेर में आदिवासी महिलाओं रे साथ मन की बात रा 136वीं कड़ी ने सुनिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पाली में मन की बात कार्यक्रम ने सुनिया। ई मौके न्यारा न्यारा जन नुमाइंदा और लोग मौजूद रिया। राज्य री दूजी ठोड़ा माथे मन की बात कार्यक्रम ने उमाव रे साथ सुनी जिया। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेरू सुन रहा हो। कारगिल विजय दिवस माथे आज देश प्रदेश शहीदा ने नमन करे। ई मौके 1999 रा कारगिल युद्ध में देश री हिफाजत करता ठाव बलिदान देने वाला भारतीय सैनिका ने श्रद्धांजलि अर्पण करी जावे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वीर सैनिका ने नमन करता सोशल मीडिया पोस्ट में कहो कि सैनिका री अद्भुत ताकत अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बल री ठावी परंपरा री मिसाल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहो कि कारगिल युद्ध भारतीय सेना रा इतिहास रो सोनाउ मंडियो पाठ है। अठी ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कहो कि कारगिल विजय दिवस फगत फौजी जीत री याद नहीं है बल्कि देश री अस्मिता अखंडता और संप्रभुता री हिफाजत सारू भारतीय सैनिका कानियों करीजा ठावा बलिदान और अदम्य साहस ने नमन करण रो पावन मौको है। श्री बागड़े कारगिल विजय दिवस रे मौके जोधपुर में क्रीड़ा भारती कानियों विया कार्यक्रम में बोल रिया हा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई जन नुमाइंदा मौजूद रिया। अठी ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वीर सैनिका ने श्रद्धांजलि देवता कहो के आ वीर जवाना री शहादत और निष्ठा माथे हर भारतीय ने मान है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज शिक्षा मंत्री रो कामकाज संभालियो। धर्मेंद्र प्रधान रे इस्तीफो देवन रे पछे काले वाने नुआ शिक्षा मंत्री बनाई जाहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी नुवी जिम्मेदारी सौंपण सारू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार प्रकट करियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुरा हीरापुरा बस टर्मिनल रोडवेज री 144 नुवी बसा ने हरी झंडी दिखा रवाना करिया। ई मौके मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा सारू जाग जगाउन रो संदेश देवता सड़क सुरक्षा अग्रदूत महिलावां ने हेलमेटी बांटिया। वणा प्रदेशवासियों यातायात कानून री पालना करण और दुपहिया वाहन चलावती बगत जरूरी हेलमेट पहरण री अरज करी। मीडिया साथे बतल करता मुख्यमंत्री कहो कि सरकार जन कल्याण जुड़िया हर हलका माए तेजी काम कर रही है। श्री शर्मा कहो कि प्रदेश माए बरोबर सार्वजनिक परिवहन सेवा रो पसारो करो जावे जीणु लोगों ने हिफाजती सरल या सुविधापूर्ण यात्रा मुहैया वे सके।
12: राजस्थान की जनता को जो हमने वायदा किया था लगातार उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की दूरियां बहुत हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में सबसे बड़ा प्रदेश है। यह लोगों के आवागमन के लिए आवश्यक है कि हमारी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छी रहे। जब से हमारी सरकार बनी है हमने जनता के हर विषय को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और ये अभी तीसरा मौका है जो रोडवेज की बसों को हम लगातार संख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
14: ई कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सांसद मंजू शर्मा समेत कई जन नुमाइंदा मौजूद रिया। और अब मौसम। प्रदेश रा कई जिला में मानसून सक्रिय बनियोड़ो है। भीलवाड़ा में आज सवारों हल्की बिरखा रो दौर चालतो रियो। जालोर में रुक रुक ने बिरखा वहती रही। झुंझुनू जिला में दोपहर पछे कई थोड़ा बिरखा होवणो मौसम सुहावणो वह गयो। वठे राज्य में कई थोड़ा वेरी बिरखाऊ जलाशय में पानी री आवक बनियोड़ी है। मौसम केंद्र मुजब आज राज्य रात दिखनाद आथोणी हल्का में हड़काऊ मजला और कठे कठे तेज बिरखा होण री आस है। महकमो आवती 28 तारीख को एक और फेरू बिरखारी गतिविधियां माए बडवार होवण और उत्तर अगुणी हल्का माए कठे कठे भारी बिरखा होण री आस जताई है। 29 जुलाई 2 अगस्त तई राजेरा घणकरा ठोड़ा हल्काऊं मजला और कटे कटे भारी बिरखारी आस है। जालोर जिला रा सांचोर माए आज बस और ट्रक री टक्कर माए सवार बस माए सवार दो लोगों री मौत वेगी और 12 यात्री घायल वे गया। घायला ने सांचोर रा ट्रोमा सेंटर माए इलाज सारू भेजी गया है। आ बस सांचोरू गुजरात जा रही ही। भारतरी अनाथ सिंह विश्व स्क्वास जूनियर चैंपियनशिप जीत ने इतिहास रच दियो है। कनाडा माए महिला सिंगल्स फाइनल माए मिस्र री रुकैया सालेम ने हरार वना खिताब जीतियो। ये जीत रे साथे अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वास खिलाड़ी बन गई है। ने अबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फेरों सुन दे रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 रे तहत राजस्थान समेत देश भर रा प्रतिभागियां साथे बतल करी। प्रधानमंत्री आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण सारू चलाया जा रहा अभियान कैच द रेन रो जिक्र करता इन माए लोगों की भागीदारी ने सराया। करगिल विजय दिवस माथे देश प्रदेश माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम री मार्फत वीर शहीदा ने नमन करी जियो और राजस्थान रोडवेज रा बेड़ा माए 144 नई बसा भेली मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रा हीरापुरा टर्मिनल हरी झंडी दिखाई। नई साथ ही समाचार रो बुलेटिन अठे पूरो यो मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 7 बजे है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेतीबाड़ी।

खेतीबाड़ी सुनने वाला सगला भाया ने बहना ने नारायण भाई की तरफ घणे मानु राम राम। देखो माया पिछले अदितवार आप मिलिया जना उड़ीक कराया कि भाई बरसात है को नीर चना कानी सुकरी स्थिति ही जे ट्रिबड़ी बाजरिया हाँ मूंग है जगह बढ़ रिया। लेकिन अब खुशखबरी है कि नागौर घणकरे एरिया में लगभग पूरे एरिया में बरसात होगी है। कटी घनी हुई है तो कटी थोड़ी हुई है लेकिन बरसात जरूर हुई है। आप भगवान प्रार्थना करा कि सब जगह बरसात।

भी में नागौर, वो नागौर री जकी पट्टी है, बट खारो पानी है, घणकरो खारो पानी है। तो बट है पीऊ जमीन है जकी कम है, और जठे पीऊ जमीन है बट है जको किसान भाई खेती करे। अभी देखो आप बरसात में निर्भर हाँ, फिलहाल चौमासे री खेती है, बीर बाद में जठे ट्यूबवेला है या जठे ठीक पानी है, और कई लोग है जगह डिग्गियां भी बनावे कि भाई बरसात रो पानी डिग्गी में फुलम फुल जावे, और बाद में है जको टपक सिंचाई रे हिसाब में आप री खेती कर ले। तो बीर मायने सियाले री फसल करे, बीर बीच रे मायने जको गैप है, जको समय बचे, बिन आप जायद री फसल के वहाँ कि भाई आप है जको आ खेती आप है जको सितंबर लास्ट तक आप ले लिया, पच अक्टूबर यानी कई लोग है जको आजकल है जेठ री बाजरिया है, तो आप सितंबर पहली पहली ले ले हाँ। तो ऐ जगह 2-1 महीना बीच में बच्चे आप कने रबी री खेती हूँ पहली, और रबी और खरीब री खेती हूँ पहली। रबी री फसल है जकी आप मार्च अप्रैल में ले ले वहाँ, और मार्च में जकी खेती ले ला आप जून और जुलाई, यानी अप्रैल मई जून जुलाई इम अपन 2 महीना मिल जावे, अप्रैल और मई, जून आधे तक मान लो पच मानसून री बरसात यानी स्टार्ट हो जावे, और पच आप प्री मानसून है जो आतो रहे। तो ए जगह 2-2 महीना है बिना आपा के वहाँ जायद की फसल, और बीच में आपा यदि सब्जियां की फसल बोला तो किसान भाई है जको जको खेती माते निर्भर है, मेरे लिए बहुत फायदो है। और आजकल देखो सब्जी तो हर आदमी खरीदे, बिना सब्जी तो कोई है को नहीं, और सब्जी री जकी मांग है वो भी ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा जनसंख्या रे हिसाब हूँ, और आजकल वैज्ञानिका रो युग है, तकनीकी रो युग है, तो हर सब्जी हर ऋतु में आप लगा सका, चाहे खरीब और रबी रे बीच में लगाओ, और चाहे भले आप जकी खरीब रे बाद में है जकी लगाओ तो आप लगा सका। और इरी कई विधियाँ हैं, इन जलवायु रे अनुसार आप जकी खेती करा तो अपन बहुत बड़ो फायदो हुए। जी मान लो टमाटर है, गोभी है, खीरा है, मिर्ची है, ऐ जकी आनी उन्नत किस्म है, ऐ आप लगा सका। जी जायदरी फसलों में लौकी है, तुरई है, करेला है, खीरा है, भिंडी है, काकड़ी है, इरी बहुत मांग है, क्योंकि आऊँ पौष्टिक आहार भी मिले और लोग है जो आप सब्जी भी खरीद ले। तो इर मायने का ही है कि गर्मी के मौसम में तो आप तोरू है लौकी, करेला, खीरा, भिंडी, काकड़ी लगा सका, लेकिन बरसात रे मौसम में कई लोग है जो खेती पूरी, मैं तो बात करी जायदरी फसल री, कई लोग है जो खरीब री फसल में भी आप खेता में पूरी सब्जियां उगा दे, बे लोग है जका बरसाती टमाटर, फूल गोभी, बैंगन और बेल वाली जकी भी सब्जियां हैं। जी हाँ मान लो करेला है, तो अन्न है जो आप लगा सका, आप फायदो ले सका। और किसान भाई देखो बढ़िया किस्म री सब्जियां लगावा और आप देखभाल करा तो यूं बहुत अपन फायदो वह रहे, जो कि सब्जियां मांग है और सब्जियां जो की कमाई है वह बहुत ही अच्छी कमाई है। और आप यदि बा में बहुत ज़्यादा कीटनाशक नहीं डाल और बढ़िया आप खेती करा तो अपनी सब्जी भी मांग भी ज़्यादा बढ़े और सब्जी का भाव भी अच्छा मिले। और सर्दी जो कि आप बात करा रबी रे फसल में कई लोग है जो सब्जी लेनी चाहे भी अपन तो सब्जी री खेती करा, तो बे लोग है जो पालक, गाजर, मूली, मटर, पत्ता गोभी और ब्रोकली, जका गोभी रो एक प्रकार है ब्रोकली, जो को हरी हरी आवे भी में कहे पौष्टिकता ज्यादा आवे तो वह आप लगा सका। देखो इरे लिए अपन पहली तैयार करनो पड़े खेत, हर चीज री पहली तैयारी करनी पड़े, इरे लिए अपन समतल जगह जका में मेड़ बना लेनी चाहिए जके में आप पानी भर सका। यूं कहीं है कि जड़ बराबरी समस्या कौन हुआ, कटी ढाल है, कटी ऊंचाई है, नीचाई है, देखो एकदम समतल खेत हुए कौन, आप जे ट्रैक्टर बावा तो बहाँ थोड़ी बहुत ऊंची नीची हो जाए, पानी ने तो थोड़ी सी ढाल होता ही, वो कहीं अभी पौधे हूँ दूसरे पौधे में जाते रहे जना आपने वो जो पौधा में पानी रो संतुलन है वो रहे कौन, बिर लिया अपन मेड़ बनानी जरूरी है ताकि वो पानी है जो दूसरी जगह नहीं जा, बट ही शौक लहर भी नमी बनी रहे। देखो सब्जियां लिए कई लोग पॉली हाउस भी लगावे, जगह तिरपाल लगाया करे, जगह प्लास्टिक रहा ऊपर लगा भी हूँ पानी नमी बनी रहे, थोड़ा थोड़ा तावड़ो भी लागतो रहे, भी हिसाब हूँ भी आप लगा सका। और यूं का ही वह कि सिंचाई रे पानी री बचत हुए मेड़ कर दा जना, और निराई गुड़ाई भी आसान हो जावे, आप क्यारियाँ रे हिसाब निराई गुड़ाई कर ला, रहता हूँ भी आप पाड़ सका।

0: एक या करे मचान विधि जके ने आप बोलिया करा ट्रिलिस या पेंडल सिस्टम बा कहीं वे के आ बेल वाली सब्जियां में आप करा जिया करेला है लौकी है खीरा है लौकी जके ने आप घिया बोलिया करा हमारी भाषा में खीरा है तोरू है। अब बरसात रे मौसम में मचान माते चढ़े मचान रो मतलब है जको भी सारो मिल जाए चाहे दीवार मिलो चाहे पेड़ मिलो कुछ भी वो इन्हें डोरे बांधर भी आप ऊपर कर सका तो ए बेला ऊपर तक बढ़ती रहे। तो बीर माई ने आप कहीं करा कि जमीन पर रहन और फल यदि जमीन पर आप बढ़ावा नहीं तो ए जकी ऊपर लागण वाली चीज़ा है जिया घिया है तोरू है करेला है तो नीचे लाग जन ए खराब होने की ज़्यादा संभावना जठे भी मिट्टी पर आप पड़ी है तो बस सड़ गड़ खराब हो सके इसलिए आप मचान विधि के रूप में या तो कोई सारे करनी चाहिए या पछे आप मारे बैठे बहुत मोटो पोल रोप पर और भी मैं डोरी लगा भी मत आप ऊपर टांग सका जके बे ऊपर बढ़ती रहे और बेल नीचे आवे फिर वापस ऊपर बढ़ जाए तो इस तरीके आप मेरी खेती कर सका। एक आप क्या करा इंटरक्रॉपिंग जके ना आप बोला अंतर फसली खेती आ कहीं हुआ करे के मुख्य फसल रे बीच जकी खाली जगह हुए जी आप आस पास हमारे सीमा रे हारे हारे जो ट्रैक्टर बिल्कुल नज़दीक नहीं आ सके एक कई जगह एडी हुए जी आप खेती कर दी तो भी बीज बीजियो है तो भी मैं थोड़ा शौक आप बीज रे बीच में जगह गैप रही हो दूरी रही है बोरो जमीन रो आप उपयोग कर सका और बीर बीच बीच में आप भी सब्जियां उगा सका और कम समय में और आगे ही मेहनत में तैयार हो जाए क्योंकि वो खरपतवार भी पचे भेड़ो ही निकल जाए। एक ही ध्यान रखना है कि खाद और उर्वरक प्रबंधन है वो अपन सही होना चाहिए। खेत की तैयारी करते समय अपन ने 3 या 4 टोली पूर्ण रूप गोबर की जगह खाद है वह प्रति एकड़ में अवश्य डालनी चाहिए क्योंकि जैविक खाद मिली जन आप पौधों हुई जो को निरोग हुई और अपन यूरिया DAP के डालने कौन पड़े आपारो देश है आप भी सब्जी खावा और आप सब्जी उगावा भी दूसरा लोग भी खावे तो अपन चाहिए कि बिना काम रो कीटनाशक अपन नहीं डाला। ज़्यादा उत्पादन रे कारण लोग बहुत ज़्यादा जहरीली चीज़ें डाल दे तो भी वह जो अपन बहुत ही आप कह सकें खराब फसल मिले तो इस वास्ते अपन बीती चीज़ डालनी है जितनी आवश्यकता हुए और अपन उत्पादन भी अच्छो हुए। इस बाद में बेसल डोज रे रूप में DAP आप थोड़ी मात्रा में डाल सका 30-40 किलो प्रति एकड़ बहुत कम मात्रा में आवे ताकि हमारी फसल रही जगह वृद्धि हो सके और अच्छी फसल और अच्छी बढ़वार खातर अपने समय समय में आते सूक्ष्म जगह पोषक तत्व है मारे छिड़काव करते रहना चाहिए। और देखो मैं यदि आप यहाँ मानना कि भाई कचरो ज़्यादा हुए निदान ज़्यादा हुए जगह खरपतवार बोला बीरे वास्ते और नमी ने नियंत्रित करने वास्ते आप एक मेड मंदी वह भी माते मल्चिंग रो प्रयोग कर सका वो बेहतरीन एक वैज्ञानिक तरीको है और यूं कहीं वह कहे जो आपने निदान हुए कम और एक जो आप टपक सिंचाई प्रति जो प्रणाली अपना ला तो भी यूं कहीं वह चट्ठे जरूरत है बट ही वो पानी रो टपको पड़ी भी पौधे माते आस पास ज़्यादा पानी नहीं जाए खरपतवार कम हुई और आपने करनो यही चाहिए कि आप कम से कम खरपतवार माते कीटनाशक उपयोग करा तो बहुत ही अच्छा हो सके क्योंकि ब्यू हमारी फसल माते बहुत फर्क पड़े। तो ये हिसाब में आप देखो सब्जियां की बात करी तो आप सब्जियां अच्छी तरह उगा सका और हमारी ये जो हर तरीके में आप लाभ ले सका। अब बयान देखो सुना काम की बात
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल किराना स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं पहले बजट बनाओ फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
0: देखो भैया आप बातचीत करी सब्जी यानी बात करी क्योंकि किसान ने जगह धरती पुत्र है 365 दिन लागू रहे तो वो बेलो नहीं रहे इसलिए आप वैज्ञानिक विधि आपन पूर्ति कर सका और अच्छा व्यवसाय सब्जी रू कर सका। अबे देखो भैया आप हर दिन कोई न कोई किसान बात करा तो आज मैं जगह किसान बात करी वह आप तय करा पूर्ति। देखो भैया घूमता घूमता कटई में है कटई कोनी रे गांव पहुंचा रे बैसी खेली नीचे बैठा है रोटी जिमे है अरे तावड़ियो कल्लो है पसीने रे गाड़ू गया जमी बाप देवे है रे कसी में जुड़ी रे देखानी पूछा देखानी राम राम शाह
7: राम राम शाह राम राम शाह राम राम शाह
0: किसो गांव है शाह
7: गांव डेर हुए शाह
0: ओ यमगी रोटी जिमी आओ गई
7: अब देखो खेत में निदान करे अब रोटी जिमा सर आओ थे जिमो भोजन करो
0: बस भोजन कर रहे यहाँ भगवान गणी देव कड़ी है फसल
7: ठीक ही है
0: मन फसल खासी डंगरी दी सी मूंगा में हाव ज्यादा लगी
7: मूंगा में हवा है पहला प्रसाद कोई नहीं प्रसाद होगी तो हवा
0: जानी बड़कर ही हो
7: देखो कहे थे ऐसा लोग कह रहे हैं मानसून आउड़ो है मन प्रसाद कम हुआ है
0: थोड़ा शोक प्रभाव है वैज्ञानिक कह सकी बात सही है पर जाना भी प्रभाव है तो यहाँ हमने काम चलाओ वो ग्रजी तो ठीक ही है वो
7: हाँ काम चलाओ वो ठीक है सर।
0: कितनी खेती करो
7: खेती तो है आम कने 100 बीघा है
0: ओ हाँ उठी करो घर घर ही कर लो
7: हाँ घर घर ही करा गणी गणी तो
0: चौको चौको तो घण करो कहीं बीजो
7: मूंग बाजरी मोट
0: हाँ साला में मैं देखिया है इमताराम जी नाम बताया थारो
7: हाँ सर
0: इमता राम जी हाँ शाला में देखिये मूंगा मत लोगों का जोर ज्यादा है रुकाई कारण है कोई बाजरिया पहली बीज था बाजरिया कम बीजे
7: बाजरिया तो कहीं सा के एक तो भाव कम है तोड़ाई कटाई कटाई घनी लागे में एकदम एक आदमी काम है जो को पूरा कर दे
0: जगह कट जाए
7: हाँ
0: बात तो सही है इनमें थोड़ी खसाई कम है
7: मैं ज्यादा पड़े मजदूर ज्यादा लागे पैसा ज्यादा लागे बस भाव को नहीं
0: अरे एक बात इमता राम जी मैं देखी है कि बाजरी रही है जो को मंडी में कोई ग्राहक को नहीं
7: मंडी में ग्राहक को नहीं पर ज्यादा बाजरी वेजना 25-3 हजार रुपया माटे खरीद हुए 25-3 हजार में 500 रुपया एक आदमी ले कहीं बन सके नहीं बन सके हम ही लागे सर
0: भाव बाजरी रुकम है के वे के जगो मोटो अनाज है जगह आगे बड़ा और बाजरी बढ़िया मंडी रे मायने में भी पतो करियो सरकारी मंडी रमाई नहीं रो कोई तरह रो है को नहीं बेचा हुई
7: कौन सा
0: एक दिक्कत ही है
7: बहुत मामला दौर है
0: जन बाजरी दिया जो खेती कम ऊन रोगी
7: खेती कम ऊन लागी बाजरी अब खेती बाजरी तो आप घर जीवन ने कोई पशु रखे एक दो जगह कतर हो जाए वो मूंगा हो जाए क्या मदरी मैट कार्ड बना हुआ
0: सरकारी दाम माते टोकन भी कटा लो और मंडी में यूं जाओ तो ले ले
7: हाँ
0: सही बात है देखो आप आशा आई करा का पानी बाजरी नहीं जकी चीज में तो निधनो चाहिए वो जरूरी है क्योंकि आप देसी बाजरी बीजा रहो जो को पुरानो बीज है रहा बाजरी तो आप नहीं हुए बाकी देश में कटे नहीं हुए
7: नहीं बाजरी देसी हटी हुए और बाजरी हुए गणी है सर
0: तो बीज बचे देसी रखो तो
7: देसी देसी
0: का लाओ बाजार
7: नहीं नहीं देसी बीज ना कम बाजरी
0: बाजरी वो बड़े नो परंपरागत बीज है
7: हाँ
0: सही बात है मूंगालो और पसे ओ
7: मूंगारो तो बीज है लावा थे जा सा
0: अच्छा थे ने लिए और भी है साहब बीज लो
7: हां
0: अपन जमिया मन कटे कटे धोरा है बाकी तो पल्ले नहीं लागी धरती
7: हां पल्ले नहीं है एड़ा को धोरा कोई ना नाडी है निवाल है जो उन में बैठे तो वही है गौतम भूमि में वो धोरा कौन
0: नहीं बढ़िया जमी तो आपने पीऊ जमी है का कौन मन चुबे एक आधी देसी घनी को देसी
7: नहीं नहीं पीऊ जमी को नहीं पानी खारो है
0: ओ जमे माने कौन पानी
7: पानी माने कौन जमी
0: पानी कितना फुट मत आवे
7: पानी तो 3.5 फुट मत आ जाओ झरनो पर पानी खारो है खारो है आई समस्या है जन इतनी खेतिया है जकी यू ही पड़ी रहे हुआ थे तो हमें आ ले जर चौमासे फसल है।
8: हाँ बेटा एक

0: बाकी फसल कौन ले हो?
1: नहीं फसल लगाऊंगा एक ही,
0: धन बीत की तो ग्राह को
1: धन बीत रखा 2-4-5 हजार गया रखा नहीं खेत में खाद वैसा ये खाद के मोई धान हुए कौन सा।
0: हाँ तो आई खेत जो को थारे पूर्ति हुई जावे हूँ।
1: हाँ पूर्ति हुई जावे यूं कोई बड़े आजू बाजू में लिया वहां।
0: हाँ हमने डीएपी यूरिया रे कहीं ये तो कोला होने
1: नहीं नहीं आको ना कर रहा मैं तो पूरी देश खा दिए।
0: हाँ जनी देखो खान पान देसी रो राम ने वैज्ञानिक लोग आई कहे के भाई बारे रो तो घनी कोई दिक्कत हुई जावे तो ही नाको कम मात्रा में बाकी मत नाको।
1: हाँ नहीं धान धान दीजिए ना मूंग तकड़ा नहीं है
0: एक नंबर मूंग है बढ़िया बाजरी तकड़ी।
1: हाँ पूरे बाजरी में मारते सी खाद ना कुड़ी साथ।
0: आप कटी कटी तो मन निज रहे हो गंवार कम भाव है?
1: गंवार तो कम भाव है पर भाव कोई नहीं पहला एक भाव आया जा पर भाव आया को लोग कन पड़िया कोई 10 कुंटल 15 कुंटल ना बेबाण बंद कर दी।
0: ओ स्टॉक पड़ियो बिना भाव है जूं जाए।
1: हाँ स्टॉक पड़ियो लोग। हाँ
0: बात सही है बाकी क्यों माँ कह भाई आप फोर फोर खेती बीजा नहीं।
1: हाँ बात तकड़ी रहे
0: बात तकड़ी रहे गंवार एक साल बीज दिन तो पचकाण हो गए।
1: हाँ गंवार बीज दिन बाजरी गणी हुए साल बट हाँ गंवार का भाव कौन नहीं
0: गंवार का भाव कौन भाव की समस्या है।
1: हाँ पर नीरो गंवार जो कोंटार काम हो या गया बेशर काम हो कौन हो गुना रहे गुना रहा कौन नहीं।
0: हाँ बात तो सही है जी थारे ज्यादातर है जो की बाजरी मूंगा की खेती हुए।
1: हाँ
0: मोटा ने भी कम हुआ मूंगा बीच
1: कम हुआ ऐसा भाव कौन
0: मूंग है जो को मांग ज्यादा है
1: ज्यादा है।
0: बढ़िया बढ़िया देखो मूंग बीज लो तो खैर धान तो सब समान है बढ़िया थारा आमदनी उजावेर उजावे थारे बढ़िया मेहनत री पूर्ति।
1: हाँ उजावे सा बीज बड़ा मेहनत पूरा पूरा सेट उजावे।
0: तो ए ट्रैक्टर दिस है थारा ही है
1: ए ट्रैक्टर आ पा रही सर।
0: अच्छा घर घर वो खेती कर लो और गांव में भी कर दो।
1: हाँ खेती करी कर ला गम कर दा चले
0: अटे अबे जो मान लो खेती थे कर ले दियाले ताई मान लो तो बीर बाद में जका है छह हाथ आठ महीना रह वे बीर मां पच काई मजदूरी वे
1: मजदूरी काई वे की कोई नहीं टेक रहे थे कोई गेड़ लिया वे इंटारो और कोई पानी टैंकर ना दार अड़ शोक वे।
0: हाँ गम ही थे थारो कर लो काम
1: गम ही वे गांव बार को जाते
0: नहीं नहीं हाउल है थारे मजदूरी हट जावे धन भी थे जके हूँ थारी पूर्ति हो जावे काम।
1: हाँ हो जावे
0: कि डेरी दे लो।
1: हाँ डेरी देवा की
0: तो कुछ अट आवे एक देनो पड़े है
1: नहीं आवे आम घर कन गई गया।
0: अच्छा सुविधा है
1: सुविधा है
0: बहुत बढ़िया
1: बहुत
0: बढ़िया। अबे तो मन लाइयो और नाडिया नो पानी नाडिया भरी है अबे तो घनी तो कौन पण की भरी है अबे पानी पी लो और बाद में पानी री पछकाई व्यवस्था है अटे थे खारो बताओ पानी नीचे तो
1: पच तो पानी गम है कोई नेड़ो और कहीं कहीं गम आ जाओ नेरल पानी रीतन हुए सर
0: जी नेरल काम चलाना पड़े।
1: हाँ
0: नहीं जो टांका मोटा है जगह पूर्ति हुई जाए नहीं जगह नेर रो पीनो पड़े।
1: हाँ
0: अच्छा अड़ाई आवे हमने पानी।
1: हाँ अड़ाई और अड़ाई खड़काली हो रहा पर आवे सर
0: कहो के पानी तो ठीक ही आवे
1: पानी तो आवे ठीक।
0: हाँ काम चलो है कोई फिल्टर उड़ो तो आवे कौन नहीं पड़ो चलो ठीक ही है
1: ठीक है दंडित ने हर दिन चल जिया वायरस को।
0: हाँ कम के मैं मीठो पानी है वो।
1: हाँ मीठो पानी है।
0: अरे देखो तार गांव में मन हरियाली खासी लगी है बारे नो आयो जना मिंदर में बाग लगवड़ा आगे पीछे रहो कहीं गांव रही करियो कहीं
1: गार्डन बनाया गोगा गार्डन है तेजा गार्डन है कन्नी वाटी है कहीं है गांव रसियो को कहीं है पौधा लगवाया
0: बहुत ही बढ़िया गांव है। देखो कितना युवा समझदार आदमी है कहते इतनी हरियाली बनाई है हरियाली जुड़िया है जका आदमी जुड़ पर आ रही है साहब लगे हो बंद निवाद है साहब
1: धन्यवाद साहब। वो पौधा तकड़ा लागूड़ा था पूरे गांव में हरियाली होगी।
0: हाँ बहुत फूट पौधा लागूड़ा देखने में ही जोर हो गया देखो लोग कितना जागरूक है गांव की शोभा देखी मैं जो बड़ी फूट लगी
1: सही बात है साहब।
0: आप रहते जो आप बातचीत करा के आप डेर वो गांव है रनु बेहता बेहता हूँ आयो हंकवासी ऊपर और पर जानकारी मिली के शंकवासी मायने की हिमता राम जी बंबू है।
1: हाँ है सर
0: हर नाम राशि है जकारो अट मैं बहु बातचीत करी दिन की ओसा मारे अट नाने रो डेर भी हो।
1: हाँ हो सा लोड़ा में।
0: हाँ अट हूँ मान प्रेरणा मिली रे तो बढ़िया है जो को पद्म श्री पुरस्कार मिली हो राष्ट्रीय स्तर में तैर के मैं हाथ 8 लाख पौधा तो मैं लगा चुकिया जगामू 5 लाख पौधा तो पेड़ बन गया आप रो खेत है जगह नहीं पूरो वन विभाग रो बनार लोग देख ना वे इतना सऊदे जार के भी पौधा लगवड़ा पूरे देखो ना जाने।

0: पूरे देश में बड़ी धन्यवाद है
1: ना नहीं लगोड़ा का।
0: देखो आटे रा भांड जाहिर करने ही हंकवासी गांव और अपन देखो ते गांव में रह की तो बड़ो नाम करियो है
1: बहुत बढ़िया काम करियो
0: मैंने पुजार तीर बढ़िया जागरूक गांव है तो देखो कितना ठोर ठोर हर आदमी आगे वे गांव रो सहयोग वे जनी देखो इतना रूंगड़ा और बड़ो फूटो लगे
1: हाँ सहयोग वैसा रूंगड़ा निकदारती राखनी पड़े हर आदमी एक पौधा लगा उनका नहीं वे रूंगड़ा
0: हाँ मोटा करना दोरा पौधा लगा ही काम चाले
1: मोटा करना दोरा अबे तो आमन गांव में देर में सा घने पौधा लगुड़ा है अर्थ प्रकार टाली है घने पौधा अलग अलग किस्म का पौधा है बढ़िया लगुड़ा है बात
0: थारे हूँ देखू अट घर कनेर खेड़े मेर पेड़ बड़ा फूटो लगुड़ा
1: हाँ सा लगुड़ा ना परी
0: थे आप ही लगाया
1: नहीं आप ही लगाया सर
0: यार पूरा मोटा कर दिया
1: हाँ मोटा दसार हो गया साइमी अब मैं तो किस्म लगा देखो तेरा अनार रो पौधा लगोड़ो है पर पपीता रे केले रे भी लगे आम रो पौधो आम मोटूड़ो
0: जन आप बात करता है तो बारह हो बारह का ही आप लगा तो आप ही लगे
1: बिल्कुल लगे सर
0: सही बात
1: 3 साल सेवा करो फिर बात जरूरत ही कौन थी सर
0: बिल्कुल सही बात है इंतर राम जी बहुत जोर हुई देखो तो बातचीत कर परार किता जागरूक और किता पोटरी बात करी राम राम शाह
1: राम राम शाह।

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: पहले का बातचीत सुनी रबे, देखो आप बातचीत करा, आप पानी की केस देने की बात करा, तो अब बरसात हो रही है, आपने ज्यादा ज्यादा पानी है जो बचाना है, वो एक अभियान चल रही है, आप जागरूक हाँ, क्योंकि जल है तो कल है। और देखो आप शाम रो टेम है तो सुना एक चौको शोक गीत।

देखो बया गीत सुनियो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश ओ केसरिया रंग है जको राजस्थान रे वीरता रो और पूरे देश रे वीरता रो प्रतीक है। और राजस्थान रो इतिहास तो चवो इतिहास है यार। देखो करगिल दिवस भी हो आज रे दिन आपा करगिल माते पाछी विजय प्राप्त करी और दुश्मना ने है जको वापस लौटने माते मजबूर करिया। और देखो भया आज रो जको कुंतीड़ो टाइम है वो अठाई हो रियो पूरो, तो आप रे नारायण भाई ने दिराओ सिख करा। राम राम।

खेती बाड़ी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम श्रोताओं आकाशवाणी नागौर का, ये चिरमी चैनल है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं RJ माधुरी के साथ फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की अगली पेशकश इस ब्रेक के बाद।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले?
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: लीजिए सुनिए मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वरों में फिल्म हातिम ताई का ये गीत। हसन कमाल के बोलों को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लीजिए सुनिए किशोर कुमार और साथियों को फिल्म सत्ते पे सत्ता में। गुलशन बावरा के बोलों को संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने कुछ इस तरह से।

लीजिए सुनिए किशोर कुमार को फिल्म कटी पतंग में। आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने।

लीजिए सुनिए, अलका याग्निक, सपना मुखर्जी और साधना सरगम को फिल्म त्रिदेव में।

ये फिल्म संगीत की अगली और आखिरी पेशकश फिल्म स्वयंवर से गुलजार के बोलों को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने और इसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है, रात्रि के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे लोक गीतों पर आधारित फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो गोरबंद।

0: ਪਾ ਸਕਾਂ ਦਇਆ ਬਿਨਸ਼ਾ ਨੇ
1: ਆਈ ਸੀ
0: ਉਹ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ
1: ਓਹੋ
0: ਕਿਤੇ ਟਾਮ ਆਵੇ
1: ਆ ਬਰਸ਼ਾਤ ਕੋ ਪਾਣੀ ਆਏ ਦੇਖ ਬੇਟਾ ਆਵੇ ਬਰਸ਼ਾਤ ਆਮ ਜੀ ਜੀ ਕੋ ਘਣੀ ਕਰੀ ਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਤ ਕਰ ਦੂੰ
0: ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਉਲਾ ਬਚੇ
1: ਆਈ ਤੂੰ ਨਾ ਤੋ ਰੀ ਜੀ ਦੋ ਤੋ ਰੀ ਜੇ ਪਣੀ ਦੇਖ ਬੇਟਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾ ਪਾਣੀ ਹੋਤਾ ਹੈ
0: ਹਾਂ
1: ਆਈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਇਕਟਾ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਖੇਤ ਹੈ ਤੋ ਦੇਖੋ ਭਈ ਖੇਤਾਂ ਕੀ ਮੇੜ ਕਰ ਲੈ ਆਪ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਬੇਲੋ ਜੇ ਤੋ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਕਾਮ ਆਵੇ
0: ਇਹ ਨੰਦਰੇ ਜਿਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟਾਟਾ ਬਤਾਉਂ ਦੇ
1: ਅਜੋ
0: ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ
1: ਓ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ
0: ਓ ਪਾਣੀ ਬੇਲੋ ਟਰੋ ਓ ਟਾਮ ਲਿਓ
1: ਓ ਹੋ
0: ਤੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਤੋ ਨਾ ਟਾਟਾ
1: ਆ ਜੋ ਕਾਸ਼ਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਿਓ ਬੇਟਾ ਤੋ ਪਾਣੀ ਕੀ ਬਚਤ ਕਰੋ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ
1: ਨਾ ਜਲ ਕੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬਚੋ ਅਬਾਰ ਜੀ ਕੋ ਜੋ ਰਾਮ ਜੀ ਬਰਿਸ਼ ਜੀ ਹੋਏ ਤੇਰੋ ਫਾਇਦਾ ਲਿਓ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਚਾ
1: ਆਈ ਸਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਐ ਜੋ ਅੱਗੋ ਫੋਨ ਕਰੇ ਪੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ ਬੁੱਝੇ
0: ਓ ਲੱਸਾ
1: ਐ ਲਿਓ
2: ਐ ਲਿਓ
1: ਏ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸ਼ਾ
2: ਰਾਮ ਰਾਮ ਸ਼ਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸ਼ਾ ਕਾਕਾ ਰਾਮ ਰਾਮ
1: ए आबरो न्याऊ भिजो कोकी नीर गाँव भिजो
2: हिता बोलूंगा था
1: ए हिता भाई की जगह बोलो
2: जाकन से
1: ओ हो जाकन के ना आयो भाई
2: ओन में गाइल करनी
1: ओ हो ए जाकन थानो हारो एक बीर है भाई
2: जाकन हारो
1: पीर की जगह भाई
2: पीर गोरो
1: ए पावना खाई के रे भाई
2: पावना ओ खेती बड़ी करे
1: ए भाई मान की कटा भाई
2: तीन
1: ए भाई मान की पटावे तू
2: हाँ पड़ा एक ग्यारह पड्डे मोटो डीर एक सातीन पड्डे एक दो तीन पड्डे
1: अरे वाह मारी बेजा झोका पड़ो टाबरा ने झोका ली को ए तेने प्रोग्राम के शोक लागे मारी भाई
2: प्रोग्राम बजे जोरदार लागे मन काका संगलो
1: ए जोरदार लागे जी एक ध्यान राखी काकू के जी की बाजरो बेटा ए खेतम फिरू जी थोड़ा हाँ भरी जा रो कांटा बीजू ध्यान राखी जो भाई
2: गर्मी पड़े बरसात कम हुए
0: अने अजा है ना नेचर आटो भगवान पर विश्वास रातो
2: विश्वास तो रखा
0: हाँ भजन करो भजन टाई सुनो मैं
2: संतारा दास
3: काका राम राम
1: ए राम राम शाही राम राम शाही अभ्रोन्याओ भिजो कोकिनीर गाँव भिजो
3: मार मार मुनु छोटू काटी बनू काका
1: आओ हो छोड़ जियो
3: काका
1: ए मुड़वा गनी मैं पानी गिड़ो गियो
3: बढ़िया काका
1: ए खेती बढ़िया ठीक है
3: एकदम बढ़िया है
1: अरे वाह शिवा और बेटो गांव में परिवार में हगले किया नियो
3: सब बढ़िया काका तंगा पुनो
1: ए प्रोग्राम कैसी लगे
3: प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगे काका
1: अरे वाह शिवा ए भाईयो
3: हाँ काका
1: एक ही हाक बाबरियो कही हो
3: हाँ कौन बाबरियो
1: ए भाईयो
3: हाँ काका
1: एक बरसात दूजा जना टांका भर लीजियो मीठे पानी का
3: हाँ टांका भरी जन काका
1: हाँ सही है पी रहा हूँ अब काका तुमसे एक सवाल करता बात करता है तो क्या जवाब देना पड़ेगा
3: देखो कोई आए तो बताऊंगा काका
1: ऐसी कौन सी चीज है जो सोने की है पर उसको सोने से बहुत सस्ती है
3: सोने से पत्ती काका कौन है
1: ए जगलू रे
0: हाँ चाचा
1: ए कहीं चाचा चाचा करे तू समझदार नहीं है भाई का फोन है हमने भाई को हिरा दिया जवाब नहीं है तुमको आउटा ही गई
0: आउटा है मैं तो
1: ए क्या आउटा जवाब क्या होता बताओ
0: माचो है माचो
1: हाँ छोड़ दियो
3: ओ
1: मानचो है बच्चे जो सोने की चीज है पर सोने से महंगी नहीं है ये भाई से ठीक करो
0: हेलो
3: हाँ देख लो भाई राम राम
0: राम राम पटेल
3: हाँ जी हूँ सारे
0: ओ टाइम हाल चाल है टाटा
3: ओ ठीक है
0: टाटो मैंने तो डरा रहा टाटा से टाइम तो बताओ
3: काको उल्टी उल्टी पूछ है
0: हाँ अपन आवे नहीं जेती पूछ ले और बरसात पानी हुई है टाटा
3: हाँ जानो
0: नया तो नया थे
3: नहीं करना हूँ मैं दुकान लगा रहा
0: मतलब ओवा ना लियो हाँ जान

0: मैं हूँ संता गोदास।
1: टाटा मैं तो उनरे संतारो दास।
2: अरे जो भजन जाऊं जो मैं अग्रिबीटी खेलूं।
1: अच्छा है।

0: हेलो काका जी, राम राम।
1: ए राम राम शाही मीठा घना बोलो थोको जाओ भीजो खोकी नीर गौ भीजो।
0: काका जी मेरा नाम रेखा है।
1: ओ रेखा, जब से तुमको देखा तुम कहाँ रहते हो?
0: बोल रही भाई का फाटक पे।
1: अजो काई करी बेटा तू?
0: काका जी मैं तो पढ़ाई करूँ।
1: ए कितनी मारी बेटी?
0: पांचवी में।
1: ओ धारे आपके के नहीं पांचवी का बोर्ड का पेपर बनी भाई?
0: हाँ काका जी।
1: ए तू छोकी पढ़ी हो? गर्मी परिवार में हगले क्या नहीं मारी बेटा?
0: काका जी ठीक है।
1: ए मैं आऊँ ना लो हमें तू डांका साफ बिया कौन करिया?
0: करिया।
1: ओ वेरी गुड, थैंक यू। ए तेरी प्रोग्राम कैसी होगी लागे?
0: मिश्री जी तो मिस्टर लागे काका जी।
1: आज ये तो काको एक सवाल करता उसका जुबा बनवेगी कहीं?
0: हाँ काका जना बना देवा।
1: आज ये तो सुन मारी बेटा।
0: हाँ।
1: खाली पेट बड़ी मस्तानी लोग है उसे पानी की रानी क्या होती है?
0: तो मछली होती हूँ।
1: अरे वाह मारी बेटा डगलू रे। हाँ चाचा। हाँ चाचा करी तू भाई मन धारे को नहीं सही जवाब करी तू बात कर बोल। हेलो
2: हेलो
0: हेलो डगलू भाई जी। राम राम।
2: राम राम भाई। राम राम। पढ़े
0: गणी करा पढ़े तो।
2: हाँ स्टूल जाओ जरा बरसात आवे ना छतरी लेर जानू। अरे नानो ही नानो अपन तो मैं तो नहु हाल है। और ना पढ़ाई कर जो पांच में फसे टाणु है थाने।
0: हाँ फसे टाणु है।
2: हाँ मन चार सब्जियां का नाम बता दे जल्दी जल्दी।
0: चार सब्जी का? भिंडी। हाँ, भिंडी काचरा मतीरा तोरू।
2: थाने तीसी सब्जी भावे ज्यादा?
0: भिंडी भावे।
2: हाँ तय सुना थान प्रोग्राम में।
0: नहीं तो सुना सर डब्लू भाई।

0: काका राम राम।
1: ए राम राम जाई आपरो नाम वीडियो को के नीर गाँव वीडियो
0: पूनम चंद बोलू रोहिणी।
1: ओ पूनम भाई रोहिणी में कोई करी तो
0: पढ़ू काका।
1: ए गीजी मारे बेटा
0: आ तुम।
1: ओ अब के न्या के घर बोर्ड का पेपर बनी रे।
0: हां
1: ए तू कीजो बड़े काके ने हाजी हाजी बता
0: कनाई पढ़ू काका।
1: ऐ जोका पड़ो जोका अली को माई डाकार भिजवार का नाम ऊंचा घर बेचारी।
0: हाँ काका।
1: ए बेचारी।
0: हाँ।
1: ए थारो लाड कौन राखे पापा राखे धारा मम्मी राखे रे।
0: मम्मी।
1: अच्छा ए गीता भाई बहनो छे।
0: है।
1: ए भाई।
0: हाँ।
1: ए मारो पोचो आवड़े थोड़ो इनू तो जिने लोरी ने बात करी गई तू।
0: हाँ।
1: ए जगलू रे।
2: मैं नावने जाऊं टाटा।
1: आई नावने जाऊं काका नाऊं जाऊं तो आज नावे जुजो फेंको।
2: आई दो।
1: ए भाई रो फोन है बोल। हेलो।
0: अगलो भाई राम राम।
2: राम राम छा राम राम छा ओ टाई हाल चाल है।
0: ठीक है काका।
2: पड़े इटाई टरो ना थे।
0: आहा
2: तो मने आ बताओ थे ये सवाल बताओ आदी चालू टेडी चालू चालू टम्बल टस ई आदी अद बता दे रुपया देऊं थाने 10
0: जाडू हुआ।
2: बिल्कुल सही होशियार होते तो आई सुना
0: मायरो सुना दो
2: टाटा।
1: आ बिजो
2: मायरा मैं चालू ला
1: आई तू जाली जाली कर गीत रु जाऊं दे
2: ओ चाहे।

0: काकू राम राम।
1: ए राम राम श्याई, राम राम श्याई, आप रो न्याओ भिजो खोने के गाँव भिजो।
0: नाम सुरदा राम गाँव वाला।
1: आओ हो हुर्जो जी वाला ही मैं कोई करो।
0: मैं कहा है काकू राम, खेती बाजार काम करा।
1: अरे वाह शिव वाह, खेती बाजार कैसी गयो?
0: ठीक है, बस बस दुखी फिर मैं सब है, बहुत बढ़िया है।
1: अरे वाह शिव राम जी राज जी, ए भाईयो।
0: हाँ साहब।
1: ए टांका अंका भर लीजियो।
0: हाँ तरह बढ़िया है, टांका भेज गया एक बार तो बढ़िया है, आपकी कृपा है।
1: ए राम जी की कृपा, ओ भूजे ने मोहन सम्मान दियो और बच्चों गांव में परिवार में हगले क्या दियो।
0: सब रेडी रहते बढ़िया है।
1: ए जानी फोगाम के शोक लोग हो।
0: बहुत ये सो लगे, बहुत मैं तो लगे रोज हो रहा, मैं तो अगला घर गई।
1: अरे वाह्य वाह, तो काको एक सवाल करता है उसका जवाब देना पड़ेगा।
0: देखा नहीं आएगा, देंगे नहीं तो वैसे
1: एक मुर्गो नीमड़े माटी

0: हाँ
1: एबो इंडो जेज नो नीचे पड़ी के ऊपरी रह जी यो
0: तो ऊपरी रह जी तो कहाँ पड़ी अगर रा
1: ए जगलो
2: हाँ टाटा
1: ए भाई के हम समझ में आया नहीं है जो तुम कहेंगे उतार हो
2: टाटा तो मुर्दो अंडा नहीं देता है
0: डगलो भाई आपका भाई
1: भाई को बोलो हेलो
2: हेलो
0: डगलो भाई राम राम
2: राम राम पटेल लड्डू सूर्य जी
0: हाँ खुशी रहो खुशी रहो खुशी रहो
2: थाने खेत में तीन चार मटी रहा हुआ मैंने छोई जो
0: हाँ अगलो पहले घुमा हाँ
2: मैंने टाइम हो भावे हो
0: हाँ सही बात बहुत है ले रहा हूँ मैं नागौरी
2: हाँ अजय जी जी अजय जी थाने स्वागत है
0: हाँ हूँ
2: और है ना गाँव में सब परिवार में सब बढ़िया है ना
0: सब राशि खुशी
2: हाँ बरसात आओ तो छतरी
0: ले आगे कर रहे
2: और टाटी तो बात ठेठ में जावे
0: ओ ताऊजी कल दा बरसात गनी हवा तो जान रहा किजो
2: हाँ मैं तो ना छतरी ले जाऊँ
0: हाँ बगीचा चरानी पड़े नहीं सिरों बगीचा करे करे
2: हाँ चरानी पड़े बचे दूर रावे जा मान तो नहीं दूर सही जा बचे
0: हाय पुत्र मते न मनी घनी लागे मिटा भाई अन्ना लागे
2: हाँ टाइम सुना रन प्रोग्राम में
0: हाँ तो ग्राम देवी रोग भजन बढ़िया
1: गाँव भिजियो
3: बाटसर से बोल रहे कौशल नाम है
1: आओ हो कौशल भाई बाटसर में कोई करो
3: बड़ा
1: ए जीजी मारी बेजा
3: नोयू
1: ओ नोयू बड़े आदेशवी आज पूरी पड़ी उजी तो छोकी पड़ी हो
3: आओ
1: ए जो पढ़ ली करी कहीं बनी मारी बेटी
3: फौजी
1: ओ फौजी साहब बनी छोकी बात दे भाई ए भाई ए गीता भाई बहन
3: चार बहन भाई कौन
1: आई कोई बात नहीं बेचा ए भाई तेरे भाई से कहीं करिए
3: पापा बाहर जावे
1: अच्छा
3: और मम्मी खेत का काम करते
1: अरे वाह बेटी वाह जो की बात ये बेटा है जो
3: दादी और करे खेत का काम
1: ओ हो ए भाई
3: हाँ?
1: एक आको एक सवाल करी उसका युवा बिनो बजो नोर नो गीता हूँ चाहे
3: 18
1: 18 में 5 और गाल दिया गीता हो गया
3: 23
1: ए 23 मु तेरा कट कम कर दे लारे की तेरे दे दा बेटा
3: तेरा
1: अरे वाह होशियार है ए जगलू रे
2: हाँ टाटा
1: ए भाई होशियार है भाई को बोल हेलो
2: हेलो
4: जगले भाई राम राम
2: भाई ओ रोटी खाओ ने दिया पराठे
4: हाँ रोटी खावा
2: टाइम टाइम सब्जी टाइम बनाई बताओ जल्दी
4: सांगरी की
2: सांगरी कहाँ लगती है बताओ
4: खेजड़ी के आप कहीं करो
2: मैं तो अबार है ना नहू बरसात आवे ना जन नहू
4: जुकाम तो लाग जलो
2: लाटे तो मैं धरू तो नहीं हो मन तो नानू चाटो लाटे
4: मानी लाटे
2: हाँ मैं तो ठाडा बरेड़ा वाली बैठे ने जाके और छपट छपट करू
4: काकी काई करे
2: नहीं आज
4: रामदेव जी का भजन है
2: टाटा
1: हाँ बेटा
2: बाबे रो भजन सुनी चावे
1: ए जी मैं अगर बेटी खाऊ जो तुम्हारे बेटा
2: अच्छा है

0: हेलो काका, राम राम।
1: जय राम राम जय अब्रोन्यों भिजो कोकिनीर गांव भिजो।
0: गांव जोगलसर है, गांव नाम ओम सिंह है।
1: आओ हो ओम सिंह जी, जोगलसर में कोई करो
0: काई करा काका? बेटा निंदा निंदा करे यार, कोई साना बड़ा वहां।
1: अरे वाह, छाना बनाओ निनान करो, जोगी बाद में पानी कैसे होगे?
0: मैं है तो करे मन मोड़ो ही है, कम ही है।
1: अरे राम जी गरी, अब हाउन लाग दी, देख लीजिए हाउन बरस दी निकली। राम जी गरी, राम जी मां ने
0: चो। हां करे तो राम जी।
1: हां आपा काई कर से अरदास कर से कर राम जी। हां और बजो घर परिवार में सब किया नहीं हो?
0: सब राजी खुशी मौज है, टमाटर दिया।
1: ए वाह यावा धानी, प्रोग्राम कैसो लागियो?
0: प्रोग्राम तो घणो सोको लागे काका, आज को 20 साल नु लागे, अपना 15 दो लागे।
1: ए हगली भाई, बात करने का काई करता बताओ?
0: हां फोन लागे।
1: हां और बजो गांव में हगला क्या नहीं हो?
0: सब दुफराजी।
1: ए जो काको एक सवाल करे उसका जवाब बनोगे काई?
0: हां बताओ दगानी।
1: ए हाउ सुन जियो, ए जंगल में पेड़ घनघोर,
0: अच्छा
1: रोज काटो चक चक, फिर भी उगे फटफट, क्या होता है?
0: भाई काका वो तो आयो कौन माने तो।
1: ए देखलू रे।
2: हाँ टाटा।
1: ए भाई को हरा दिया हमने, तुमको आउटा ही गई।
2: मैं हाथ ऊपर कर लिया, मैं ही हार दो।
1: ए तुम दोनों हार गए तो हम भी जावे गई।
2: जल्दी बताओ।
1: ए भाईयो।
0: हाँ सा।
1: आज ढांगाली डैडी हुए बजे।
0: ओ डैडी हुए।
1: हाँ डैडी हुए, जंगल में पेड़ घनघोर।

0: काटो जग जग फिर भी उगे फटफटे।
1: उगे उगे उगे तो।
0: ए भाई को बोले हेलो।
2: हेलो।
1: राम राम रघु भाई।
2: राम राम पटेल लड्डू सा।
1: खुशी रहो राम जी मरा मेरे को रखो। कब तक भाई करे गाड़ी वाला होना आई देर कराई क्या रही कराई क्या रही।
2: टाटू हुशियार हो टाई हाल चाल है टाटा।
1: बस जोरदार है।
2: बरसात पानी हुई टाटा बने।
1: कौन घनो चार चार पांच पांच आंगल ठंडा हुई है कर।
2: अजी अजी अब राठी पुण्य से बाहर बन रही हो।
1: सोको सोको हुई जना घनो जोरदार काम।
2: वे ना तो राठिया बनावा ना जना ऊंचाई।
1: हाँ हुई ना कहीं कर राम जी करे लो अड्डी का।
2: हाँ आता ही सुना टाटा प्रोग्राम में।
1: आज कोई बढ़िया भजन होना दियो।
2: टाटा
0: बढ़िया
2: भजन सुनने चाहे।
0: मैं अगर भी दिखाऊ जाऊ तुम्हारे बेटा।
2: अच्छा है।
3: अरे खमा भोमिया जलम्या जलम्या ओ खमा भोमिया जलम्या जलम्या ए चाने

0: हाय मारे बेटा, वो तो भयंगी बोयंगी सबकी पिसिन को पोगा मो।
1: हेलो डोरमैन,
0: ई पोगा में कोई भाई गीते बजने होना चाहता है, तुम कहीं क्यूता हो?
1: डटलिया तो फोन करना है।
0: आई राम राम राम राम राम। आज जो जो फेंकूक तू निमिर बजावे।
1: अब सही बताओ, रेडियो स्टेशन पर फोन करना डीट वाटर दिन 12 बजे 8 बजे।
0: हाँ, निमिर बजा
1: 015 82 200।

अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों पर आधारित फॉरेन फरवाइशी कार्यक्रम हेलो गोरबंद। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मासूम जहां को दीजिए इजाज़त। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब समाचार सुनिए।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
3: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
2: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
4: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
5: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।

0: राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
2: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंजीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
3: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193

0: रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वॉश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से ओडिशा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, ये है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के 9 बजे है। लीजिए, सुनिए सुगम संगीत।

सारी सारी रातें बरसाते हुई, उनसे जब जब भी मुलाकातें हुई। यह सुगम संगीत की पहली पेशकश हरिहरन के स्वर में।

तुमसे बिछड़ के जिंदा रहना कितना मुश्किल है, सब कुछ सुनना कुछ ना कहना कितना मुश्किल है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत की अगली पेशकश में हरिहरन के स्वर में ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे हरिहरन के स्वर में चंद गजलें कार्यक्रम सुगम संगीत में। श्रोताओं, ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम।

आइए अब सुनते हैं अनवर और मीना पटकी की आवाजों में दूल्हा बिकता है फिल्म का गाना। गीत गुलशन कानपुरी ने लिखा है, संगीत बप्पी लहरी का।

मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह को सुनिए। फिल्म का नाम है परवरिश, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आपने सुना परवरिश फिल्म का गाना मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है कर्म, गीत लिखा है राजकवि तुलसी ने, संगीत आर डी बर्मन का।

इस गाने के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की प्रीति शर्मा को दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

भारती के दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक संगीतकार की बातें। जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है अनूठे संगीतकार सुधीर फड़के पर।

भड़के का नाम लेते ही स्मृति में ज्योति कलश छलकने लगता है और संगीत के पवित्र सुरों से मन आंगन आलोकित हो जाता है।

सुधीर फड़के ने बहुत फिल्में तो नहीं की हैं, पर मराठी सिने जगत और गैर फिल्मी संगीत जगत में सुधीर फड़के एक शीर्षस्थ संगीतकार रहे हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने का असर मुंबई के फिल्म जगत पर बड़ा गहरा पड़ा था। मराठी क्षेत्रीय सिनेमा पर भी इसका झटका देखा गया। स्टूडियोज बंद होने लगे, इसलिए वो कलाकार जो कभी स्टूडियो के नौकरी पेशा कर्मचारी होते थे मुसीबत में पड़ गए थे। मजबूर होकर उन सबको फ्रीलांसिंग यानी स्वतंत्र काम करना पड़ रहा था। उन दिनों फिल्म निर्माण से जुड़ी चीजों के दाम इस कदर बढ़ गए थे कि मराठी सिनेमा ठप्प पड़ गया था। 1945 में मराठी में कोई फिल्म नहीं बनी थी। सन 1946 में सिर्फ दो मराठी फिल्में आईं, रुक्मणी स्वयंवर और सासू वास। फिल्म रुक्मणी स्वयंवर से सुधीर फड़के का मराठी फिल्मों में पदार्पण हुआ।

सुधीर फड़के ने संगीत की शिक्षा कोल्हापुर में पाध्ये गुरुजी से पाई थी। उनकी आवाज गजब की थी, उतार चढ़ाव ऐसे कि शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता मुग्ध हो जाएं। गायक और संगीतकार दोनों ही रूपों में सुधीर फड़के ने अपनी प्रतिभा का प्रकाश फैलाया।

आगे चलकर मराठी गीतकार माडगुलकर और निर्देशक राजा परांजपे और स्वयं गायक और संगीतकार सुधीर फड़के की एक त्रिमूर्ति बन गई, जिसने ऐसे कालजयी गीत दिए कि दुनिया चकित रह गई। आइए सुने ये गीत।

सुधीर फड़के ने 100 से भी ज्यादा मराठी फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता स्वयंवर, माया बाजार, पुढ़चा पाउस, जीवाचा सखा, लाखाची कोष्ट, इन मीन 3.5 और सुवासिनी वगैरह।

हिंदी फिल्मों में सुधीर फड़के को लाने का श्रेय जाता है वी शांताराम को। उनकी 1946 में आई फिल्म गोकुल सुधीर फड़के की पहली हिंदी फिल्म थी। सन 1959 में आई गोकुल का चोर।

सुधीर फड़के ने किराना घराने के ख्याल गायक पंडित भीमसेन जोशी से फिल्मों में गवाया और सिनेमा पारंपरिक किराना घराने की सुगंध से सुवासित हो उठा। सुधीर फड़के ने 1954 में राजा नेने की फिल्म पहली तारीख में भी संगीत दिया था। किशोरदा ने इस फिल्म में एक गाना गाया था, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। आइए अब सुने सुधीर फड़के का स्वरबद्ध किया ये गीत।

0: मराठी में गीत रामायण सुधीर फड़के का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसकी रचना मराठी कवि ग. दी. माडगुलकर ने की थी। संगीत और गायन स्वयं सुधीर फड़के का था।
1: तव मानसि आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व बोध शब्द

सुधीर फड़के अपनी सीधी साधी और सरल धुनों के लिए याद किए जाते हैं। उनकी धुनें आपकी जुबान में रच बस जाती हैं। उनमें ना तो कोई कलाबाजी है और ना जरूरत से ज्यादा वाद्य यंत्रों का प्रयोग।

0: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। श्रोताओं, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं। श्रोताओं, हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। कल सुबह ठीक 8:51 पर हमारी अगली प्रसारण सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।